आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

तुम अपना वादा भूल गए प्रकाश। तुमने कहा था कि हमारे प्यार की अधूरी कहानी अगले जन्म में जरूर पूरी होगी। बोलो प्रकाश, कहा था ना? मगर वो कहानी आज भी अधूरी है। मैं आज भी इस वादी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? जवाब दो प्रकाश, क्या तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे? बोलो प्रकाश, नहीं आओगे?

0: बंद करो ये गाना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों तड़पाते हो बाबू?
1: मैं तुम्हें क्या तड़पाऊंगा, मैं तो खुद तड़प रहा हूं।
0: तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते?
1: चला जाऊं कहां? चला जाऊं कैसे? चला जाऊं? ये तो वो वादी है जहां पर हम दोनों की मौत हुई थी। ये तो वो धरती है जहां पिछले जन्म के दो प्रेमी दफन हैं। ये तो वो जगह है जहां पर मरने से पहले हम दोनों ने जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई थी। तुम ही बताओ इस धरती को छोड़कर कहां चले जाऊं, कैसे चला जाऊं?
0: तुम्हारी बातें मेरी समझ में कुछ भी नहीं आती है। आखिर तुम चाहते क्या हो बाबू?
1: मैं तुम्हें वो कहानी याद दिलाना चाहता हूं जो चंदनगढ़ के राजमहल से शुरू हुई लेकिन पूरी होने से पहले खत्म कर दी गई।
0: ये झूठ है, मेरा उस कहानी से क्या संबंध है?
1: संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अगर तुम ना होती तो वो कहानी कभी शुरू ना होती। मेरा विश्वास करो, मुझ पर यकीन करो रत्ना। आज भी चंदनगढ़ के राजमहल में तुम्हारी तस्वीर लगी है।
0: तस्वीर?
1: हाँ।
0: मेरी तस्वीर?
1: हाँ।
0: नहीं नहीं बाबू, तुमसे जरूर कोई भूल हुई है, वो तस्वीर किसी और की होगी।
1: रत्ना, चंदनगढ़ यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं, तुम चलकर अपनी आंखों से देख लो और चलकर खुद ही फैसला कर लो। आज देखो देखो, ये चंदनगढ़ का राजमहल है, इसे देख के कुछ याद आया? जानती हो पिछले जन्म में तुम यहाँ की राजनर्तकी थी और मैं यहाँ का राजगायक। इसी शाही बाग में हम मिला करते थे जहां से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। कुछ याद आया? कुछ भी नहीं?
0: नहीं।
1: आओ आओ मेरे साथ।

0: ये वही राज दरबार है। वही दीवारें हैं, वही सतून है, इन पर की गई नक्काशी। बरसों बीत गए, कुछ भी तो नहीं बदला। इसे गौर से देखो, पहचाने की कोशिश करो। ये वही राज दरबार है, कुछ याद आया? आओ आओ मेरे साथ।
1: ये दीवाने खास है जहां पर नृत्य और संगीत की महफिलें जमा करती थी। याद करो, ये वही जगह है जहां पहली बार तुम्हारा हमारा सामना हुआ था। यहां पर महाराज बैठा करते थे और चारों तरफ दरबारी। उस तरफ गुरुजी का सिंहासन था और उस तरफ उस्ताद बंदे अली खां, और तुम गौरी के साथ मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। और जैसे महाराज का इशारा हुआ, मेरी उंगलियां सितार पर मचल उठी और तुम्हारे पांव बिजली की तरह थिरकने लगे।

ये वही जगह है जहां हम रहा करते थे। उस तरफ मेरा कमरा था और इस तरफ तुम्हारा। ये देखो,

0: मैं रत्ना
1: रत्ना

रेडियो गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

0: आजादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं,
0: बाय बाय।
1: सुनो तो,
0: मोना
1: सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए,
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।

झोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं वर्ड मस्ती आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल में सुनिए 1960 से लेकर 1985 तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: हाय, हेलो एंड नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दीवाने और दीवानियों। आ चुका हूँ लेकर आज का स्टार वर्ड मस्ती का ये मस्ती भरा शो। और आज के जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, वो है मैं, उसके बाद है तुम, आप, आपका, हम, हमारा, तुम्हारा, तू और तेरा, मेरा। यही शब्द गाने में होना चाहिए। एक शब्द से तीन तीन गाने प्ले होंगे, यानी कम से कम हो सकता है कि कभी, यानी कि अधिक से अधिक पांच ही प्ले हो जाए, ये कभी हो सकता है। लेकिन अभी तक तो जितना भी मैंने शो किया है तो हर शब्द से कम तीन गाने ही प्ले होते हैं। तो मैं जो मैं दो गाने प्ले करता हूँ वो इसमें नहीं होता है काउंट। इसके अलावा जब मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं एक शब्द से तीन तीन गाने ही लूँगा। अगर ये कोशिश रखे कि जिस गाने की फरमाइश आ चुकी है उस गाने की फरमाइश आप दोबारा ना करें, ओके, और किसी ने कर दिया है उस गाने की फरमाइश तो फिर आप उसे न करें, ओके, ये इसका ख्याल जरूर रखें। दूसरी बात यह है कि अगर ये एक शब्द से तीन गाने प्ले हो जाते हैं तो उस फिर आप उस शब्द से गाने बिल्कुल ना भेजें, ऐसा है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज को फॉलो करें और सबसे पहले मेरे पसंद के गाने को एंजॉय करें। आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने हैं।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और बता दूं कि बहुत से दोस्त जुड़े हुए हैं, सभी का वेलकम करते हैं। और मैं ये भी, हाँ, और मैं बता दूं कि सबसे पहले जुड़ने वाले हैं हमारे सरफराज साउथ अफ्रीका से। भाई सरफू भाई, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी, और वालेकुम सलाम। साथ ही साथ रंजीत जी जुड़े हैं, वेलकम है रंजीत जी आपका भी। नाहिद अंसारी जी, वेलकम है आपका भी। सर्वजीत सेठी जी क्या कहते हैं, इनकी सुन लेते हैं।
1: अमर सर जी,
0: जी
1: नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: मैं सर्वजीत सेठी फाजिलका पंजाब से। कैसे हैं आप
0: जी? बहुत अच्छा,
1: आप भी अपने स्थान पर ठीक हैं। हम भी आपके कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं, तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद आपका भी। और सुनीता गोप जी जुड़ चुकी हैं, वेलकम है सुनीता गोप जी सरायकेला झारखंड से। सर्वेश भगत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है सर्वेश भगत जी। और एमडी नाजिम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है नाजिम जी। आरिफ सिंधी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। सुनील कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है बांका बिहार से। और राम कुमार मिस्त्री जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। वीके पंत जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और भी बहुत से दोस्त हैं, सभी का वेलकम करते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, सबसे पहले आपको ले चलते हैं पटना बिहार, और वो है सरिता सिन्हा जी। सुनना चाहती हैं फिल्म खुदगर्ज का वो लाजवाब गाना, आपके आ जाने से सभी दोस्तों के लिए डेडिकेट भी करना चाहती हैं। सुनवा रहा हूँ ये गाना, एंजॉय कीजिए सरिता सिन्हा जी। और फटाफट अभी आप गाना भेजिए आपसे, क्योंकि मैं आप वाला पहले गाना प्ले कर रहा हूँ, इसलिए आपसे गाना भेज दीजिए जल्द से जल्द। और जिनका आपसे हो जाएगा फिर अगला देखा जाएगा। पहला शब्द आप चल रहा है।

बिल्कुल दोस्तों, दिल बहलता है मेरा आप सभी के आ जाने से। आप सब जुड़ते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, एक से बढ़कर गाने की फरमाइश करते हैं, सच में दिल खुश हो जाता है। आप लोग मेरा भी दिन बनाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बस मैं तो यही कहूंगा कि हमेशा यूं ही अपना प्यार, दुलार और आशीर्वाद बनाए रखिए।

वेलकम बैक। और यहाँ पे बिकअप पंजी लिख देंगे सर जी। बहुत नहीं, यहाँ नहीं भेजना है, मैसेज नहीं करना है, जो भी करना है वो सॉन्ग रिक्वेस्ट में करना है। ओके, सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से ही गाने इस समय प्ले होते हैं, मैसेज के थ्रू गाने नहीं प्ले होते हैं। तो प्लीज आप अपना इस समय का जो भी है वो फरमाइश सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से भेजे। और आप वाला कोटा फुल हो गया है, अब कोई और ट्राई करना पड़ेगा। फिलहाल अभी आप पर आप वाले गाने सभी आ चुके हैं जो मैं प्ले करने वाला हूँ। नाहिद जी लिखते हैं कि ओपनिंग गाना भी और सरिता जी की पसंद शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं। संतोष गौंडी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ और प्रोग्राम शानदार चल रहा है, धन्यवाद देते हैं आपको भी। रंजीत कुमार जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग का आगाज हुआ है सर जी, वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। अगले पसंद सुनवाता हूँ दीक्षा जी का, ये कुछ कहा आपने, बिल्कुल कुछ कहा आपने। और ये गाना तो क्या ही बताएं, मेरा मतलब फेवरेट गानों में से एक है, कुछ कहा आपने।

0: कुछ कहा।
1: आपने सच में, और फीडबैक भी आ गया है। और तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ नाम सुनील कुमार जी लिखते हैं कि सरिता सिन्हा जी के पसंद मुझे बहुत अच्छा लगा आपके आ जाने से जी। अशोक पाल जी लिखते हैं कि दीक्षा जी का पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू दीक्षा जी। इमरान अंसारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम इमरान अंसारी जी, लेकिन सॉन्ग रिक्वेस्ट आपको भेजना पड़ेगा, वहाँ से सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, मैसेज से नहीं शामिल कर पाऊंगा, सॉरी। एंड गजानंद जी लिखते हैं कि अमन जी नमस्कार, मैं भी जुड़ गया हूँ, सभी साथियों को भी प्यार भरा नमस्कार है, नमस्कार जी। राधा कृष्ण गोप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और इसी बात पर अगला गाना आरजे वंशिका जी का, आपके प्यार में हम समाने लगे, यानी आपका कोटा फुल हो गया है, तो अब आपसे नहीं, अब किसी और से। और अब जो शब्द बाकी है वो है मैं, तुम, आपका, हम, हमारा, तुम्हारा, तू, तेरा, मेरा, इन इन शब्दों पे गाने बजने होंगे।

इस कदर आपसे हमें मोहब्बत हुई, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई कि क्या ही बताएं। और मिराजुल जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है अमन सर जी। जी जी बिल्कुल है जी। नूर आलम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है एमडी नूर आलम जी। और लिखते हैं कि ये कौन सा प्रोग्राम चल रहा है जी? ये चल रहा है स्टार वर्ड मस्ती, और वर्ड है आज के जो यानी 10 जो शब्द दिए गए हैं वह है मैं तुम आप आपका हम हमारा तुम्हारा तू तेरा और मेरा। और जबकि इसमें से जो आप शब्द है वो कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद से अगला शब्द यानी कि प्ले होने वाला है वो होगा यानी कि तेरा या तेरी, जो भी समझ लें। तो इन शब्दों पे गाने भेजने हैं, और गाने तो हमारे पास करीब 2 आए हुए हैं, एक में और कोशिश करूंगा। तो इन शब्दों पर और भी बहुत सारे शब्द हैं, उन पर गाने भेज सकते हैं आप। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि आरजे वंशिका जी की पसंद मुझे ब्यूटीफुल लगी है, थैंक यू सो मच आरजे वंशिका जी। एंड आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि आरजे वंशिका जी बहुत ही प्यारा लाजवाब गाना सुनाया आपने, धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा गाने के लिए। एंड सुनील कुमार जी लिखते हैं कि आरजे वंशिका जी बहुत ही लाजवाब पसंद है आपका। एंड बीके पंजी लिखते हैं सर जी आरजे वंशिका जी की पसंद सुपर फरमाइश, मजा आ गया सुन के। और आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। राधाकृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद आरजे वंशिका जी। एंड प्रशांत अम्बुलकर सर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। इसी बात पर अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ ओ यानी प्रेरणा अरोरा जी का मैं गाना प्ले करने वाला हूँ, यानी तेरी सांसों में ऐसे बस जाऊं जुदा कोई ना कर पाए। एंजॉय कीजिए तुमसे।

वेलकम बैक। और बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं। अमित तपे जी जुड़ चुके हैं, राम राम जी कह रहे हैं सभी दोस्तों को, राम राम जी। और साथ ही साथ अंचल कुमार जी थे कि हम 11 बजे से जुड़े हैं। जी जी, बहुत बहुत वेलकम है भाई आपका। और उनके पास थे यहाँ पे अशोक पाजी जी थे, वाओ लवली सॉन्ग है। या निक्की पेंडा जी आपका थैंक यू सो मच लाजवाब गाने के लिए। एंड प्रशांत अमरुका सर जी लिखते हैं कि प्रोग्राम बहुत ही शानदार चल रहा है, थैंक यू सर जी आपका। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमन सर जी हम भी जुड़ गए हैं और बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। जाकिर खान जी लिखते हैं सर जी कौन कौन से शब्द बचे हुए हैं। जी जी, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से शब्द बचे हुए हैं अभी। तो बाकी है इन मैं, तुम, आपका, हम, हमारा, तुम्हारा, तू, तेरा और मेरा। अभी यानी कि 13 पे एक गाना हो चुका है अभी अभी, और एक गाना आया हुआ है। एक गाने का और इंतजार, शायद दो गाने आ

ओके, यानी कि 13 पर छोड़ दीजिए। हो सकता है कि और जो गाने, मतलब जो जो शब्द हैं, जैसे मैं, तुम, आपका, हम, हमारा, तुम्हारा, तू और मेरा, इन पर भेज सकते हैं। ओके, और यानी कि प्रेरणा अरोरा जी लिखते हैं कि थैंक यू डियर आरजे अमन जी, थैंक यू, आपका भी वेलकम है अरोरा जी। और अगला जो गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, और वो गाना किनका है जरा मैं देख लेता हूँ, ये गजानन जी का ग्रुप का गाना है, मैं तेरे प्यार में पागल। ओहो क्या बात है, क्या गाना लेके आए हैं, थैंक यू सो मच गजानन जी। ये गाना मुझे इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊं, मैं तेरे प्यार में पागल। एंजॉय कीजिए, सुनवाता हूं। फिल्म यानी कि प्रेम बंधन का ये बहुत ही प्यारा गाना है।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और बहुत सारे फीडबैक्स मेरे पास आ चुके हैं और यहाँ पे नाहिद जी लिखते हैं वाव ऑसम फरमाइश के लिए गजानन जी थैंक यू सो मच आपका। और नाजिम जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है। और जी अब तो ये तो हो सकता है कि अब कोई और गाना भेजना पड़ेगा आपको क्योंकि वो निकलने वाला है। और हमारे गजानन जी लिखते हैं कि आदरणीय अमर सर जी को प्यार भरा नमस्कार है, गीत प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रशांत अमरकर जी लिखते हैं कि मैं तेरे प्यार में पागल, गीत सुनकर सच में गजानन जी आपको धन्यवाद देने का दिल करता है। जी जी जी दे दीजिए जी। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि गुरु फरमाइश एकदम झक्कास लगी है। और बाबूलाल जी लिखते हैं हमारे दोस्त गजानन जी की पसंद बहुत बेहतरीन लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। राधाकृष्ण गोप जी लिखते हैं सुपर हिट लाजवाब पसंद के लिए बहुत शुक्रिया। और नाही जी हमें नंदिनी माजी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है माजी आपका भी। और यानी कि प्रेरणा अरोड़ा जी लिखते हैं कि सर जी आपकी आवाज बहुत लवली, ओ थैंक यू सो मच। और पता नहीं लेकिन आप सब कहते हैं तो मान लेता हूँ, है कि नहीं। और अगला गाना मैं जल्दी से प्ले करूंगा और किस दोस्त का मैं प्ले करूंगा देख लेता हूँ मैं जल्दी से। मुझे दिख रहा है यानी संतोष गौंड जी का गाना कि तेरा पल्लू सरका जाए, सुनवाते हैं इसी को।

और बचे हुए शब्दों को मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, वो है मैं, तुम, आपका, हम, हमारा, तुम्हारा, तू और मेरा। इन शब्दों पे गाने भेजने होंगे आपको, जल्दी करें। वैसे तो गाने की लड़ी लगी हुई है यहाँ पे।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं, शामिल करता हूँ मैं। अमित तपाई जी लिखते हैं कि इश्क की कोई मंजिल नहीं होती है, इश्क की कोई मंजिल नहीं होती है, बस एक हम सफर काफी होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने भाईजान। एंड अर्जवंशिका जी लिखते हैं कि गजानन जी के गुड फरमाइश मुझे बहुत ही पसंद आई है। संतोष गौड़ जी लिखते हैं, अमन जी धन्यवाद देते हैं मेरा गाना प्ले करने के लिए। और प्रेरणा अरोड़ा जी लिखते हैं कि आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से। जी जी मैं हूँ सिवान बिहार से। और मैं आपको बताता हूँ ये क्या कहते हैं, सुनते हैं इनकी।
1: आरजे अमन सर जी नमस्कार, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा। हम भी सुन रहे हैं सर, थैंक यू
0: जी, वेलकम जी आपका भी। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है। अगली पसंद में सुनवा रहा हूँ नाहिद अंसारी जी का, जिन्होंने भेजा है कि तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। सच में अजब सी चाहत झलक रही है तुम्हारी नजरों में हमने देखा। तो सुनवा रहा हूँ ये गाना, और ये गाना तो मुझे इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊँ। तो इंजॉय कीजिए नाहिद अंसारी जी, ये गाना तुम्हारी नजरों में हमने देखा, फिल्म यानी कि कल की आवाज का लाजवाब गाना।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, लेकिन हाँ ये तुम्हारे पर गाना एक ही था मेरे ख्याल से, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, दो गाने और भेज सकते हैं मेरे दोस्त, और तब तक मैं अगला गाना मैं प्ले करूंगा। और यहाँ पे नाही जी लिखते हैं थैंक यू सो मच, और आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि नाही जी की फरमाइश मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा है, थैंक यू नाही जी। एंड मिराजुल हक जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग नाही जी का, थैंक यू सो मच नाही जी, इतना प्यारा गाना सुनाया आपने। एंड बिला क्या नाम है, विठल चौहान जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है मनसा जी, ओके। गजानंद जी लिखते हैं कि तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है, बेहतरीन लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया है। एंड अशोक पाल जी लिखते हैं कि नाही जी की पसंद सुपर हिट। और नूर आलम जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार फरमाइश है ये, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत फरमाइश के लिए थैंक यू नाही जी। एमडी फैज आलम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका। इसीलिए अगला फरमाइश जब तक आप यानी तुम्हारा या तुम्हारी पर गाना भेजिए, तब तक मैं यहाँ पे कायनात जी का गाना प्ले कर रहा हूँ, तुम ओढ़ो मेरी जान दुपट्टा संभाल के, बिल्कुल संभाल के एंजॉय कीजिए।

0: अच्छा अरे करूँगा ना
1: अच्छे से जानती हूँ
0: क्या

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं। हमने नाजिम जी लिखते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपरहिट के लिए धन्यवाद देते हैं कायनात जी को। एंड एमडी फैज लिखते हैं वाओ क्या बात है कायनात जी, बहुत ही प्यारा गाना सुनाया आपने, दिल खुश कर दिया आपने। गोविंदा जी लिखते हैं मतलब गोविंदा खंडारते जी कि मैं भी जुड़ गया हूँ जी, वेलकम है आपका भी गोविंदा खंडारते जी। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये कायनात जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू। मिराजुल हक जी लिखते हैं कि कायनात जी का गाना बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच। और राधाकृष्ण गोप लिखते हैं कि सुपर फरमाइश के लिए थैंक यू सो मच। एंड रंजीत जी लिखते हैं बहुत ही झक्कास गाना, एकदम मजा आ गया जी। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि दुपट्टा संभाल के बहुत ही शानदार पसंद है, बिल्कुल अगली पसंद सुनाऊंगा मैं।
1: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं वर्ड मस्ती आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल में सुनिए 1960 से लेकर 1985 तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
0: ओके जी, तो अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो बीके पंत जी का है कि तुम पास आए यूं मुस्कुराए और तुमने न जाने क्या, वगैरह कुछ कुछ होता है ना, बिल्कुल कुछ कुछ होता है और होता ही रहना चाहिए। सुनवाता हूँ इस गाना, एंजॉय कीजिए।

इश्क किया जा थोड़ा जाता है, इश्क तो हो जाता है कि नहीं। वैसे फीडबैक भी बहुत सारा आ चुका है। नामदेव जालते जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है नामदेव जालते जी। मनीषा शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है मनीषा शर्मा जी। और नाही जी लिखते हैं कि सुपर ऑसम फरमाइश के लिए विज्ञापन जी, थैंक यू सो मच। और अमित तपड़िया जी लिखते हैं कि अच्छा ऐसा है, वो तो मुझे भी नहीं पता है। मिराजुल जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि बिल्कुल सर जी, कुछ कुछ होता है। थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। अगला गाना सुनवाता हूँ सर्वेश भगत जी की, हम तुम वाला का वो टाइटल सॉन्ग लेकर आए हुए हैं, हम तुम। इंजॉय कीजिए सर्वेश भगत जी। और जो जो ये शब्द बाकी है मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से शब्द बाकी है। अब बाकी है ये मैं, आपका, हम, हमारा और तुम्हारा का दो गाने, और तू और मेरा।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं, तो यहाँ पे कुंता बेनर्जी लिखते हैं गुड आफ्टरनून अमन जी। जी जी जी गुड आफ्टरनून, वेलकम है आपका भी कुंता बेनर्जी। और नाजिम जी लिखते हैं ऑल टाइम सुपर हिट सॉन्ग चल रहा है आज, मजा आ रहा है बहुत। और रंजीत कुमार जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन पसंद है, सुनकर अच्छा लगा। और बीके पंजी यहाँ लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। दोस्तों का भी धन्यवाद देता हूँ गाने को पसंद करने के लिए। और नाहिद जी लिखते हैं कि सर्वेश भगत जी की पसंद मुझे बहुत बेहतरीन लगी है, थैंक यू सर्वेश भगत जी। और बाबूलाल जी लिखते हैं सर्वेश भगत जी की पसंद बहुत ही प्यारी लगी है। और ये क्या कहते हैं सर्वेश भगत जी, सुन लेते हैं इनके भी।
1: आरजे अमन सर जी लाख लाख धन्यवाद, थैंक यू सर, हमारा फरमाइश अपने प्रोग्राम में जगह दे दी है, धन्यवाद।
0: ओके जी, अब जो यानी कि तुम्हारा पर छूट गया था तो वहाँ पे तुम्हारा पर मैं चलूंगा, लेकिन इस फीडबैक के बाद।
2: अमन सर जी नमस्ते।
0: नमस्ते।
2: कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है और सभी गीत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
0: जी जी बहुत बहुत वेलकम है सरबजीत सेठी जी। और हमारे इस्माइल खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं सरवेश भगत जी का गाना सुपर फरमाइश। अगली फरमाइश की तरफ मैं बढ़ूंगा, नूर आलम जी का है कि तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे सिर्फ तुमसे मोहब्बत करेंगे,

और एक गाना बाकी है वो तुम्हारा पर, और जो बात और जो बाकी वो है मैं आपका, हम हमारा और तू मेरा, इन सब गाना बाकी है।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो गजानन जी लिखते हैं कि आदरणीय सरोज भगत जी के पसंद का गाना मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा है, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। और एमडी फैजी लिखते हैं कि वाह लवली पसंद के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया इस गीत के लिए। नाहिद जी लिखते हैं वाह वंडरफुल फरमाइश है। और भाई नूरालम जी थैंक यू सो मच, आपका इतना प्यारा गाना सुनाया आपने। और राजेश कुमार लिखते हैं कि ब्यूटीफुल सॉन्ग की फरमाइश चल रही है। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि हार्ट टचिंग सॉन्ग है, अच्छा सच में का। और नामदेव जालदी जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। एंड मीना जी लिखते हैं कि नमस्ते, हम भी जुड़ चुके हैं यूएस से, बहुत बहुत वेलकम है मीना जी आपका भी। और मिराजुल जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गाना है, लाजवाब गाना है। जी बिल्कुल लाजवाब गाना तो यह है कि तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे। और यहाँ पे कुंता जी लिखते हैं दिल्ली से, बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग, अच्छा। और अकबर खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अकबर खान जी आपका भी। और लिखते हैं कि प्रोग्राम से मैं जुड़ गया हूँ, शानदार प्रोग्राम चल रहा है। बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमन जी मैं तो देखना पड़ेगा, देखिए वो जैसे जैसे यानी शब्द चेंज होते रहेंगे आप लोग गाने बेहतर रहेंगे, कोई बात नहीं है। बीके पंत जी लिखते हैं कि तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। अगली पसंद मैं ले रहा हूँ वो यानी सरफराज पटेल जी, ये साउथ अफ्रीका से इनका गाना है, हुआ है फिल्म इन गबन का, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, तो ये तुम्हारा।

ओके जी, और फीडबैक है मेरे पास। नूर आलम जी लिखते हैं कि मेरा गाना को प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमन सर जी। और एमडी फैजी जी, क्या लाजवाब गाना सुनाया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया देते हैं आपको, धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि वाह रियली ओल्ड इज गोल्ड वाला गाना मुझे अच्छा लगा है। बाबूलाल जी लिखते हैं सरफराज जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई। अगली पसंद मैं सुनवा रहा हूँ यहाँ पे शिवम जी का तेरा लिबास बन जाऊँ मैं, शायद इसमें इन मैं होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं सुनवाता हूँ, पहले गाना को सुनते हैं तब समझ में आएगा।

वेलकम बैक। और मेरे पास फीडबैक आ चुके हैं और यहाँ पे लिखते हैं कुंता बनर्जी की बहुत ही ब्यूटीफुल फरमाइश है, ये बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, दिल को सुकून मिल रहा है इस गाने को सुनने के बाद। और मोहम्मद यानी कौशल न्याजी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है कौशल न्याजी जी, गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों कह रहे हैं। सरफराज जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और मीना जी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत और शानदार गाना है, अच्छा लग रहा है सुनकर। एमडी फैज लिखते हैं कि बहुत ही सो लवली सॉन्ग है, अच्छा ये बात है। बाबूलाल जी लिखते हैं कि भाई साहब की पसंद मुझे बहुत पसंद आई। और नूर आलम जी लिखते हैं कि एक से बढ़कर एक गीत चल रहा है अमन जी, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। अगला मैं गाना जो सुनाना जा रहा हूँ वो ये है सुनील कुमार जी बांका बिहार से, ये सुनना चाहते हैं मैं दीवाना पागल तेरा हो गया। सुनवा रहा हूँ, इस पसंद को एंजॉय कीजिए,

वेलकम बैक ऑल फीडबैक। मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं और सबसे पहले तो मोहम्मद कौशन है जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। मोहम्मद जी नाम से जल्दी जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपर गाना है ये। और सर्वजीत जी लिखते हैं कि लाजवाब गाना प्ले हो रहा है। और नूर आलम जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल गीत, आनंद आ गया सुनकर। और मिराजुल जी लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर सॉन्ग सुनकर दिल खुश हो गया है। कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है ये। इसी बात पर अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ अशोक कुमार जी का मैं सुनवाने जा रहा हूँ, मैं तेरा तोता। इंजॉय कीजिए इस गाने को, मैं तेरा तोता। और अब जो शब्द बचे हुए हैं वो है आपका, हम, हमारा, तू और मेरा। इन इन शब्दों पे गाने प्ले होंगे।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं, और यहाँ पे सबसे पहले मीना जी लिखते हैं यूएस से कि बहुत ही लाजवाब गाना ये सुनने को मुझे मिला, मजा आ गया सुन के इस गाने को। और प्रेरणा अरोरा जी लिखते हैं कि मैं तेरा मैना, बिल्कुल जी जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं। और यहाँ पे मोहम्मद अली के कौशल न्याजी जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। नूर आलम जी लिखते हैं कि वाह वेरी नाइस सॉन्ग, मैं तेरा तोता वाला अच्छा लगा। बाबूलाल जी लिखते हैं कि अशोक जी की पसंद सुपर सुपर सुपर हिट। एंड राधा कृष्ण को लिखते हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। अच्छा, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, ये फीडबैक सुनते हैं।
1: अस्सलामु अलैकुम। अमन सर जी, मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से।
0: जी, वेलकम जी, बोलिए।
1: मैंने फरमाइश की हुई है, फिर भी आप हमारा गाना प्ले नहीं कर रहे। अगर हमारा गाना आपको अच्छा
0: नहीं, नहीं अच्छा की बात नहीं है। देखिए यह एक्चुअली आप ना कोई और भी, इसमें बहुत सारे शब्द हैं। अगर एक मैं आपको बता दिया हूँ, स्टार्टिंग में पहले ही कह चुका हूँ कि जो गाना एक बार मतलब इन शब्दों से गाना प्ले हो जाए तो आप अपना गाना दूसरा भी भेज सकते हैं। मैंने ये थोड़े कहा कि वो गाना ही आपका वही गाना प्ले होगा। इन शब्दों से बहुत सारे गाने आए हुए अभी तक मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। मैं गाने का लिस्ट बता दूं आपको, अभी 66 यहाँ पे 67 गाने हैं मेरे पास, तो 67 गाने तो अभी तो शामिल नहीं हो पाएंगे ना, तो इसमें से जितना पॉसिबल होगा यानी कि 30 गाने तो हर हाल में शामिल होंगे। 33 शायद मेरे ख्याल से 33 गाने शामिल हो जाएंगे एनी हाउ। लेकिन बाकी और जो भी है, एक शर्त पर अगर गाने आपके शामिल नहीं हो पाते हैं तो आप दूसरा गाना भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और MD5 लिखते हैं कि वाह क्या मस्त मस्त गाने सुनने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं। एंड रवि मोड़े जी लिखते हैं कि गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून जी, वेलकम है आपका भी। और लिखते हैं कि मैं भी आ गया हूँ जी, जी वेलकम है आपका। और सुनील कुमार जी लिखते हैं कि ये पाप की दुनिया का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। कुंता जी लिखते हैं कि लाजवाब फरमाइश है, और मैं फिर कहता हूँ कि जो जिस गाने की फरमाइश आई है वो दोबारा ना भेजा करें, और जो जिस इन शब्द से गाने हो चुके हैं उन शब्दों से भी गाने ना भेजें, दूसरा गाना भेज सकते हैं दोबारा। अभी जो बाकी है शब्द वो है आपका, हम, हमारा, तू और मेरा। अभी जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ वो मैं लेने वाला हूँ मेरा शब्द। तो सबसे पहले धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी का गाना एक दिल रुबा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है जी, यही मैं सुनवाने वाला हूँ, तो इंजॉय कीजिए एक दिल रुबा है ये वाला गाना।

वेलकम बैक। और मेरे पास फीडबैक आ चुका है बहुत सारा। रवि मारी जी लिखते हैं कि बहुत अच्छा गाना चल रहा है, थैंक यू सो मच। एंड मोहम्मद कौशल याजी जी लिखते हैं बेहतरीन सॉन्ग है जी। और नाही जी लिखते हैं सुपर हिट पसंद के लिए, थैंक यू सो मच। एक दिल रुबा है धर्मेंद्र जी। बाबूलाल जी लिखते हैं कि मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, ये धर्मेंद्र जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। मीना जी लिखती हैं कि वाह क्या शानदार पसंद चल रही है। एंड अशोक कुमार जी लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और मिराजो जी लिखते हैं कि ओके अब लगता है कि आपको भी शब्द चेंज करना पड़ेगा। ओके जी। और अच्छा ओके ओके ओके ओके अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो गाना है किनका बता दो, मनीषा शर्मा जी का। मनीषा शर्मा जी गाना लेके आई हुई है बहुत ही प्यारा। और मनीषा जी गाना मैं आपका प्ले कर रहा हूँ। और मनीषा यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा मुझे मनीषा। हाँ यानी मेरा महबूब ऐसा मिला जी, यानी कैसे मिला जरूर बताइएगा। वैसे गाना मैंने प्ले कर दिया है।

और जो शब्द बाकी है एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको, वो शब्द है आपका, हम, हमारा, तू। इन शब्दों पे गाने भेजें आप। एक बार फिर बताता हूँ, आपका, हम, हमारा और तू, इन शब्दों पे

0: वेलकम बैक। और मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं बहुत सारे। यहाँ पे क्या कहते हैं हीरामा जी, जरा सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, गुड आफ्टरनून। इस लाइव कार्यक्रम में मैं भी जुड़ गया हूँ
0: जी। बहुत बहुत वेलकम है आपका,
1: और कार्यक्रम भी सुपर से ऊपर हो रहा है।
0: थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद। मैं हीरामन खिराड़े वाशिम महाराष्ट्र से
0: जी। बहुत बहुत वेलकम है हीरामन खिराड़े जी। और MD5 जी लिखते हैं कि वाह एकदम खूबसूरत पसंद है। थैंक यू सो मच मनीषा शर्मा जी। मनीषा शर्मा जी लिखते हैं धन्यवाद अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। सभी का धन्यवाद देती हूँ मेरे गाने को पसंद करने के लिए और फीडबैक देने के लिए। राधाकृष्ण गुप्त जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। मोहम्मद कौशल याजी जी लिखते हैं कि वाओ वेरी नाइस सॉन्ग है। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि वाह कितनी प्यारी गाना नहीं ये लिखते वाह यानी कितनी इनकी प्यारी पसंद है ये। ओके और बहुत ही प्यारा गाना है। बाबूलाल जी लिखते हैं कि मनीषा जी की पसंद सुपर डुपर हिट लगा है। और कुंता जी लिखते हैं कि मनीषा जी की पसंद सुपर लाजवाब। इसी बात पर अगला गाना संदीप सुतार जी का मेरा माही बड़ा सोना है, सुना दिया, एंजॉय कीजिए।

ओके, और मैं बता दूं कि अभी जो जो शब्द बचे हुए हमारे पास वो है आपका, हम, हमारा, तू, इतने सारे शब्द हैं। यानी कि इन आपको चार शब्दों से गाने बहने होंगे क्योंकि बाकी शब्द तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपका, हम, हमारा और तू।

0: वेलकम बैक। और यहाँ पे नाहिद जी लिखते हैं कि सुपर हिट लाजवाब, ऑसम भाई संदीप जी, थैंक यू सो मच। एंड एफडी5 जी लिखते हैं कि एकदम जबरदस्त झकास गाना के सुनने को मिला है, एकदम आनंद आ गया है आज तो। और अकबर खान जी लिखते हैं, अमन जी आपके बिहार में 16 जुलाई को आ रहा हूँ, आइए वेलकम है आपका भी। और कैसे मिल सकता जी, यहाँ आप हमसे फोन पर बात कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ और वो है राधे जी का। राधे जी बहुत ही प्यारा गाना, ओ माय गॉड, तो सुना रहा हूँ। राधे जी धन्नो आपका क्या होगा, जनाबे अली जी कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। इंजॉय कीजिए गाने को।
1: Take it away!

वेलकम बैक। और मेरे पास फीडबैक आ चुके हैं यहाँ पे मुराजुद्दीन लिखते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, देखता हूँ मैं। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि एक्सीलेंट फरमाइश है राधे जी आपका। बाबूलाल जी लिखते हैं कि राधे जी की पसंद मुझे लाजवाब लगी है। और कुंता जी लिखते हैं वाह बहुत ही प्यारा गाना है, सुनने को मिला है, धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा गाने के लिए। रंजीत कुमार लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है अमन सर जी। और यहाँ पे लिखते हैं यानी कि प्रेरणा अरोरा जी के थैंक यू सो मच, वेलकम जी आपका। अंचल जी भी लिखते हैं थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। ओके जी, अगला गाना मैं सुनवा रहा हूँ एमडी फैज आलम जी का। एमडी फैज आलम जी, आपको आपको देखा यानी फिल्म का नाम है यानी कि किशन कन्हैया से। ओके तो सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए आपको देखा वाला गाना, ये वाला। आपको देखकर

मेरी जान, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, सच में मजा आ गया ना गाना सुन के। MD5 जी देते बहुत बहुत शुक्रिया भाई जान, गाना मेरा प्ले कर दिया आपने। मीना जी देते वाओ कितना खूबसूरत फरमाइश है, थैंक यू सो मच। आरजे पंचिका जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और थैंक यू फैज जी, सर्वजीत जी लिखते हैं कि आज का कार्यक्रम बहुत शानदार चल रहा है। अच्छा कब नहीं चलता जरा मुझे बताएंगे। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ओ मेरी जान, भाई साहब की पसंद लाजवाब। अगली पसंद सुनवाता हूँ राजेश कुमार जी का, आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना। ओके जी सुनवा दिया।

0: बिल्कुल आपका आना, दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना और प्यार आ गया, मजा आ गया गाना सुनकर। राजेश कुमार लिखते हैं कि थैंक यू अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। और नाहिद जी लिखते हैं कि सुपर अमेजिंग पसंद आपका आना। और बीके पंच जी लिखते हैं कि अमन सा जी ये वाला गाना सुनकर तो मजा आ गया। और ये क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: आपका आना, दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, आपका आना, दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना,
0: अब अगला जो गाना है वो सुशील कुमार जी इन गया से, वो सुनना चाहते हैं। हम तो तुझसे मोहब्बत करते हैं हमेशा हमेशा हमेशा। अच्छा जी, तो गाना सुनवा रहा हूँ आपका, एंजॉय कीजिएगा। हम तो तुझसे मोहब्बत करते हैं।

वेलकम बैक। और मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं जो यहाँ पे कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल फरमाइश है और प्रोग्राम बहुत ही शानदार चल रहा है। अमन सर जी, आप और सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद है प्रोग्राम को इतना बेहतरीन बनाने के लिए जी। और सभी दोस्तों का भी धन्यवाद है इतना प्यारा प्यारा गाना की फरमाइश करने के लिए। बीके पंच जी लिखते हैं, सर जी बेहतरीन फरमाइश है, हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे। राजेश कुमार लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है। और एमडी फैज जी लिखते हैं कि वाह बहुत ही प्यारा गाना है। और आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे हमेशा, ये वाला गाना बहुत अच्छा लगा। अगली जो फरमाइश है वो सुनीता गोप जी की, हम अपनी तरफ से तुम्हें चाहते हैं, अंश का लाजवाब गाना सुनना चाहते हैं। सुना दिया, इंजॉय कीजिए सुनीता गोप जी।

और अब अगला जो गाना है वो आरजे सोनी जी का हमको हम इसे चुरा लो, ये सुनना चाहती हैं। वैसे फीडबैक भी है, प्रेस फीडबैक शामिल कर लेता हूँ मैं। नाइज लिखते हैं वाओ ब्यूटीफुल फरमाइश है, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता गोप जी, इतना प्यारा गाना आपने सुनवा दिया। बाबूलाल जी लिखते हैं सुनीता गोप जी की पसंद बहुत ही प्यारी लगी है। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि हमारी श्रीमती जी की पसंद के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा मैं उन्हें। और

और यहाँ पे सुनीता गोप जी लिखते हैं, अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। तो इसी बात पर, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो और पास आओ गले से लगा लो।

और फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं, शामिल करता हूँ मैं। और यहाँ पे हमारे नंदनी मालिक हैं कि गाना तो आज के सभी सुपर सुपर सुपर हिट प्ले हुए हैं। और उनके बाद यहाँ पे लिखते हैं सुनील कुमार जी, ये दिल्ली वाले हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे सुनील हैं लेकिन ये दिल्ली वाले हैं। और लिखते हैं कि अच्छा सर जी देखिए, अब जो मेरे पास जो शब्द बचे हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ, हमारा तू, ये दो ही शब्द बचे हुए हैं मेरे पास, हमारा और तू, इन दो शब्द पे गाना प्ले होगा, हमारा और तू। अगर इस पर गाने आएंगे तभी मैं प्ले कर पाऊंगा। ओके जी, राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना, मजा आ गया सुन के। और कुंता जी लिखते हैं कि सुनीता गोप जी की फरमाइश बहुत अच्छी लगी है, और अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, जिसे भेजा हुआ है रोहित।

वेलकम बैक। और दोस्तों आज मैं बता दूं कि आज शाम 6:30 होगा लेटर चॉइस, तो आज का लेटर दिया गया है एम, तो एम अक्षर से गाने की फरमाइश आप कर सकते हैं बिल्कुल। और मेरे पास फीडबैक आ चुका है बहुत सारा। यहाँ पे सर्वजीत जी लिखते हैं कि मोहब्बतें का और मोहरा का दोनों के गाने शानदार लगे हैं। और अनमोल कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और साथ ही साथ मिराजुल जी लिखते हैं कि ये जो शब्द निकल जा रहे हैं उस पर आप भेज रहे हैं तो कैसे गाना प्ले होगा, देर कर दे रहे हैं ना इसीलिए। और सुनील कुमार जी लिखते हैं कि ये तो आया हुआ है मेरे पास, ऑलरेडी आया हुआ है। और बीके पंच जी लिखते हैं कि सर जी तू चीज बढ़िया, मस्त मस्त फरमाइश बहुत मस्त लगी है। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि वाह क्या गाना है, क्या पसंद है, मजा आ गया सुन के इस गाने को। बाबूलाल जी लिखते हैं कि रोहित जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई। और यहाँ पे जुड़ चुकी है, नाम है इनका नताशा, नताशा बहुत बहुत वेलकम है नताशा जी। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग है। अगली पसंद जो है वो हीरामा खिलाड़ी जी की है, तू मेरे दिल में रहती है, बिल्कुल तू मेरे दिल में रहती है। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

वेलकम बैक। और अगला गाना मैं प्ले करूंगा, लेकिन पहले फीडबैक है। रणवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं, ये मुरादाबाद यूपी वाले, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं प्रोग्राम तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। नाही जी लिखती है कि शानदार फरमाइश है, तू मेरे दिल में रहती है। और थैंक यू हीरामन जी। बीके पंच लिखते हैं कि अमन सर जी आज का प्रोग्राम भी मुझे सुपर हिट लगा है, थैंक यू सो मच। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है, इस गाने के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। ये क्या कहते हैं, सुनते हैं हीरामन जी।

0: ये मेरी फरमाइश आपने सुनाया, दिल से धन्यवाद। मैं हीरामन खिराड़े वाशिम महाराष्ट्र से।
1: धन्यवाद देते हैं आपको हीरामन खिराड़े जी। और साथ ही साथ मीना जी से बहुत ही प्यारा गाना है, आई लव दिस सॉन्ग। ओके जी, और अजय भगत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका अजय भगत जी। अगला गाना मैं सुनाऊंगा जाकिर खान जी की, वो है गाना कि तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है ना। और आखिरी शब्द बचा हुआ है हमारा, हमारा पर जो भी गाना मुझे मतलब अच्छा लगेगा वो मैं जरूर प्ले करूंगा।

तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, और मेरे पास एक गाना है हमारा तुम्हारा पर, लेकिन दो गाने और चाहिए। अगर आप हमारा पर गाना भेज सकते हैं तो जल्द से भेज दीजिए, नहीं तो देखूंगा कोई जो यानी पहले के गाने हैं मैं उसमें से शामिल कर लूंगा। रणवीर जी लिखते हैं कि अच्छा वहां पे भेजिए, बिल्कुल आपका गाना अच्छा आया हुआ है, लेकिन आपको सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से भेजना होगा, आप वहां भेज दीजिए मुझे, गाना मैं आपका प्ले करूंगा, जरूर करूंगा। और यहां पे जाकिर जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, और मनीषा जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग, और रंजीत जी लिखते हैं कि आपका गाना पता नहीं हो सकता है कि वो मिस हो गया होगा, और सर्वजीत जी लिखते हैं कि दोनों गाने सुपरहिट लगे हैं, थैंक यू सो मच, और बाबूलाल जी लिखते हैं कि जाकिर जी की पसंद मुझे बहुत ही सुपरहिट पसंद लगी है, अजय भगत जी लिखते हैं कि अमन जी प्रोग्राम तो मस्त चल रहा है, थैंक यू सो मच जी, और सुनील कुमार जी लिखते हैं कि जी तो इस गाने के लिए आपको भेजना होगा सॉन्ग रिक्वेस्ट से। फिलहाल अगला जो गाना मैं प्ले करने जा रहा हूँ वो सर्वजीत सेठी जी का है, सर्वजीत सेठी जी सुनना चाहते हैं जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, जी मैं सुनाऊंगा, शायद इनका ऑडियो भी आया था मेरे ख्याल से, जरा देखना पड़ेगा मुझे नीचे जाके सॉन्ग रिक्वेस्ट में, देख लेता हूँ कहाँ है इनका ऑडियो, कोई बात नहीं चलिए इनका गाना मैं प्ले करता हूँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, प्ले कर दिया, एंजॉय कीजिए।

ओके जी, तो मैं बता दूं कि अभी जो गाने यानी कि आप पर नहीं है, मतलब हमारा पर नहीं आया है, इसलिए अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूं एमडी नाजिम जी का, हम तुमको निगाहों में इस कदर छुपा लेंगे, बिल्कुल छुपा लेंगे। एंजॉय कीजिए इस गाने को नाजिम जी।

0: वेलकम बैक। और यहाँ पे राजेश कुमार लिखते हैं कि सरोजी जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है। और कुंता जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमरी नाजिम जी, इतना प्यारा गाना सुनवाया आपने। एंड बाबूलाल जी लिखते हैं कि सर हमारे अमरी नाजिम जी की पसंद और सरोजी शेट्टी जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है। और नाहिद जी लिखते हैं कि वंडरफुल फरमाइश नाजिम जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड सरोजी जी क्या कहते हैं?
1: धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिया उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सभी गीत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, तो सुनते रहिए रेडियो होस्ट चार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरोजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं औसम औसम औसम फरमाइश है। और दूसरी बात पर अगला जो गाना है

और आखिरी गाना मैं प्ले कर रहा हूँ और देखता हूँ फिर हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, और लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। सुनवा दिया गाना एमडी मिराजुल जी, एंजॉय कीजिए।

और बता दूं कि अगला अब फरमाइश दोपहर 2 से 3 बजे के बीच अगर आप इन्हें करना चाहते हैं तो एम लेटर से, एम अक्षर से गाने भेज सकते हैं। एम अक्षर से, जैसे कि मैंने प्यार तुम्हें से किया है और मेरा दिल जिस दिल पे फिरा, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एम अक्षर से गाने भेज सकते हैं।

और बता दूं कि इस यानी कि प्रोग्राम में हमारे पास आया था 92 गाने, तो 92 गाने में मात्र 32 गाने ही शामिल में कर पाया हूँ और बहुत से दोस्तों गाने शामिल नहीं हो पाए, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।

तो दोस्तों अब आप मुझे दीजिए यहाँ प्रोग्राम से निकलने की इजाजत, मिलते हैं फिर आज ही शाम 6:30 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: रोजी, ए रोजी, रोजी, पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो मुझे नींद नहीं आती थी,
2: मुझे भी नहीं आती,
0: मुझे भूख नहीं लगती थी,
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती,
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है और इस रोग की बस एक ही दवा है।
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। मारिया! रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ यो यो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा।
0: नहीं!
3: देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: By God, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है। तो
3: यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है।
5: अच्छा?
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।
1: नमस्कार।
0: कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका रेडियो गाना पे, बजाते रहो दिल से। स्वागत है आप सभी का रेडियो गाना पे। और आज रेडियो गाना पे मैं पहली बार शिरकत कर रही हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लिस्टर जुड़ चुके हैं मेरे साथ। स्वागत करती हूँ आप सभी का। और यहाँ परमार सर जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ चले गए परमार जी? परमार जी मेरे ख्याल समोसे खाने गए, क्या हुआ है? परमार जी कहाँ है आप?
1: ओ वंशिका जी, वंशिका जी, सॉरी सॉरी वंशिका जी, लेट हो गया। मैं रास्ते में था और आने में थोड़ी देर हो गई मुझे। अरे
0: बहुत जल्दी याद आ गए, जैसे आपको बुलाया वैसे आप प्रकट हो
1: कहाँ
0: गए।
1: पर गोड़ भाग भाग के आया, मुझे रास्ते में फंस गया था मैं। हुआ ऐसे है कि वो हमारे एक मित्र है, वो मेरी ही उम्र के है, तो
0: जी,
1: अपनी मिसिज के साथ जा रहे थे तो मिल गए मुझे। बोला जी परमार जी कहाँ जा रहा हूँ, मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। बोला 1 मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। उनकी मिसिज कहती भाई साहब 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ी सी चीनी परचेज करनी है मुझे, मैं कर लीजिए। तो वो चीनी लेने मैं गई तो मैंने पूछा क्या रेट लेके आए जी। बोले कहाँ लेके आए भैया, 50 रुपए किलो चीनी मिली है मुझे।
0: अच्छा, चीनी के रेट पूछ
1: मैंने
0: रहे
1: पूछा उनसे
0: थे
1: चीनी
0: आप।
1: लेके आए। फिर मेरे दिमाग में बात आई, माँ जी बैजी भी है ये गलत बात है, और हमारे टाइम में 1 पैसे की 2 किलो चीनी आती थी, 1 नए पैसे की। और आपको तो पता ही नहीं होगा आजकल के श्रोताओं को या आजकल के लोगों को कि भाई चीनी के रेट उस टाइम ये हुआ करते। ये बातें आपको मैं अगर बताऊं तो ये बातें हैं 58 59 की है,
0: एक पैसे की
1: जब
0: चीनी
1: 1 पैसे की 2 किलो आती थी मैडम।
0: दो
1: हाँ जी हाँ जी।
0: किलो
1: तो आपको यकीन नहीं होगा आरजे मिश्रा जी, और ये जो आटा आजकल हम लेते हैं गेहूं, जिसको गेहूं, ये गेहूं 1 रुपए की 16 किलो आती थी, 16 किलो गेहूं हमारे टाइम में।
0: सो सो 16 किलो।
1: तो ये बात थी। और तो मशका जी मैं सोच रहा हूँ आज महंगाई पे क्यों ना टॉपिक चलाया जाए और महंगाई पर ही बातें करें आज हम, क्योंकि
0: बिल्कुल,
1: जमाना
0: महंगाई पर
1: का
0: बातचीत करेंगे क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। जो चीजें हम बचपन में पार्ले जी का पैकेट खाया करते थे, पार्ले जी जो 5 रुपए का इतना बड़ा सा आता था, अब उसमें जाके देखिए 4 बिस्कुट मिलते हैं। 4 बिस्कुट में हमारा पेट क्या भरना, मतलब मन की संतुष्टि भी पूरी नहीं हो
1: देखिए
0: पाती है।
1: ऐसे है मशका जी, बात आप तो बिस्कुट की कर रहे हैं। हमारे टाइम में बिस्कुट होते थे लेकिन वो दूसरे बेकरी के बने में बिस्कुट होते थे, और ये पार्ले जी उस टाइम चला नहीं करता।
0: महंगाई की बातचीत की
1: हाँ
0: भाई,
1: वो तो मैं
0: गॉड
1: बता
0: रुमा
1: रहा
0: था।
1: हूँ, उस टाइम आप तो कह रही है ना 5 रुपए का पैकेट आता था, तो
0: जी,
1: हमारे टाइम में बिस्कुट जो होते थे वो 2 नए पैसे का बहुत अच्छे वाला बिस्कुट आता था, डालमिया का बिस्कुट आता था हमारे टाइम में, और डालमिया के मशहूर
0: भूख
1: बिस्कुट
0: लगवा दी
1: बहुत।
0: आपने बिस्कुट का नाम लेके। चलिए चलते हैं, बिस्कुट खाते हैं और जब तक सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को अपनी पसंद की
1: चलो
0: प्यारी सी
1: मेरी
0: गीत
1: पसंद गाना
0: का।
1: सुनेंगे, फिर महंगाई के ऊपर बातें करेंगे। दोस्तों आप भी, आप किसे भी बातें करेंगे हम, आप भी अपनी पसंद का गाना या तो
0: सॉन्ग रिक्वेस्ट के थ्रू भेज दीजिए।
1: या
0: अगर मन, देखिए आपका आज का सिस्टम क्या रहेगा, आज के रेडियो गाना शो का आज का ऐसा रहेगा कि आप अपने फीडबैक्स का अगर चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8404841232 से भेज सकते हैं, और चाहें तो अगर हमारे रेडियो हॉस्टा के एप्लीकेशन से भी भेज सकते हैं। आप दोनों तरीके से अपनी फरमाइश और फीडबैक को भेज सकते हैं, चाहे आप रेडियो हॉस्टा के एप्लीकेशन के नॉर्मल मेथड जो कि आप डेली यूज करते हैं उससे भेजिए, या आप चाहें तो अपने हमारे रेडियो गाना के नंबर 8404841232 से भी भेज सकते हैं। और फरमाइशों का भी सेम रहेगा, अगर फरमाइशें चाहे तो व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं और चाहे तो सॉन्ग रिक्वेस्ट के मेथड से भी भेज सकते हैं। यानी कि आज आपके लिए सारे द्वार ओपन है, आप किसी भी तरीके से अपनी फरमाइश या फीडबैक को हमारे
1: देखिए
0: पास भेज
1: देखिए
0: सकते हैं।
1: दोस्तों, वशिष्ठ जी मैं एक बात बताना चाहूंगा हमारे श्रोताओं को और हमारे दोस्तों को, जो भी जिस तरह का भी मैथड पसंद आता है, चाहे सॉन्ग रिक्वेस्ट के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, कोई भी से भी आप डालते हैं, और फीडबैक आप सॉन्ग रिक्वेस्ट के थ्रू उधर से भी देते हैं एप्लीकेशन से, और या फिर व्हाट्सएप से भी अपना फीडबैक
0: बिल्कुल,
1: देते
0: तो चलिए
1: भेजते हैं।
0: शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की हमारी पसंद के गीत के साथ में, यानी कि परमार जी की पसंद के गीत के साथ में। एंजॉय कीजिए प्यारा सा
1: अरे
0: गाना।
1: वंशिका जी मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा, मुझे मेरी पसंद गाने आपको बताया पुराने ही होते हैं, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मैं पुराने ही गाने ज्यादा पसंद करता हूँ दोस्तों, और
0: कौन सा
1: पुराने
0: गाना
1: गाने
0: सुनवा रहे
1: बहुत।
0: हैं? अब
1: चलो आप सुनाइए, पता लग जाएगा दोस्तों को,
0: सुनवा
1: सुना
0: दिया,
1: दीजिए।
0: एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम वेलकम वेलकम बैक। बहुत ही प्यारा गाना सुनवाया प्रभास सर जी आपने, कहाँ से लेके आए थे गीत?
1: देखिए ऐसा है अविष्कार जी, मैं आपको बताऊं, मेरा जो चॉइस है यानी जो मेरी पसंद है वो है पुराने गाने, क्योंकि पुराना आदमी हो पुराने गाने पसंद होंगे। आप है नए युग की, नई जनरेशन
0: इतनी
1: की,
0: भी नहीं
1: नहीं,
0: नहीं
1: आप है काफी ऊंची नई जनरेशन बिल्कुल की है। आप लोगों की फरमाइश कुछ और टाइप की होती है, मेरी कुछ और टाइप की होती है, और शायद श्रोता को पसंद भी आती है, क्योंकि पुराने गाने सभी को पसंद होते हैं, चाहे वो नए श्रोता हो चाहे वो पुराने श्रोता हो। तो ये बात थी विश्का जी, इसलिए मैंने पुराना गाना अपनी पसंद का सुनाया।
0: बिल्कुल। और
1: बात
0: आपके
1: है
0: गाने को सुन के बहुत सारे लिसनर्स भी जुड़े हैं यहाँ पे।
1: और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं जी, जब बात हो रही है पुरानी बातों की और पुराने गानों की और महंगाई की, तो सबसे पहले मैं महंगाई के बारे में यही कहना चाहूंगा। उस टाइम में, हमारे टाइम में, हमारे पापा जी जो है, आपके दादाजी वंशिका जी,
0: जी बिल्कुल,
1: उन्होंने गाड़ी ली थी, फिएट, फिएट होती थी, फिएट और
0: बहुत
1: रैम्बल।
0: पुरानी कंपनी है यानी।
1: हाँ जी, तो ये फिएट की गाड़ी उस टाइम आती थी कुछ 20,000 रुपए की, तो
0: 20,000 में गाड़ी,
1: हाँ जी, हाँ
0: आजकल
1: जी,
0: 20,000 में
1: तो नई
0: हमारे
1: गाड़ी ली थी तो आपके दादाजी ने, और पेट्रोल का रेट आप सुन के हैरान हो जाएंगी,
0: जी बताइए।
1: और 50 नए पैसे का 1 लीटर पेट्रोल आता था,
0: एक काम
1: पचास
0: कर,
1: नए
0: एक
1: पैसे
0: मेरा
1: का।
0: बस चले तो टाइम मशीन बना के पीछे जाऊं और सारा पेट्रोल वहां से खरीद के ले आऊं,
1: फिर
0: क्योंकि अभी जो बाहर की क्राइसिस
1: आप
0: चल रहा है।
1: पेट्रोल, फिर आप पेट्रोल पंप खोल
0: बिल्कुल यही
1: लीजिएगा।
0: करने का सोच रही हूँ मैं।
1: तो बात हो रही है पुराना टाइम की, तो देखिए किसी दो श्रोता का फीडबैक आया है, कौन कौन से श्रोता जुड़े हैं बताइए आप।
0: बिल्कुल, बहुत सारे लिसनर जुड़ चुके हैं, जैसे कि यहाँ मैं देख सकती हूँ राजेश कुमार जी जुड़े हैं, लिखते हैं आज वंशिका जी नमस्ते। और सरफराज जी जुड़ चुके हैं साउथ अफ्रीका से, स्वागत है आपका भी। शैलेंद्र बिंदेल जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं वंशिका मैम नमस्ते। और सबदीप सेठी जी भी जुड़ चुके हैं, सुनते हैं इनके फीडबैक।
2: वंशिका मैम और परमार सर जी, आप दोनों को नमस्ते।
0: नमस्ते
2: मैं सरोजीत
0: जी,
2: सेठी फाजिलका पंजाब से। कैसे हैं आप परमार सर जी? कैसी हैं आप
1: बहुत
2: वंशिका
1: अच्छे
2: मैम?
1: हैं, बहुत अच्छे हैं सरोजी
2: हम भी
1: जी।
2: अपने स्थान पर ठीक हैं, हम भी आपके कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। आपका ओपनिंग सॉन्ग बहुत ही शानदार लगा परमार सर जी, तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे।
1: देखिए
2: बिल्कुल
1: सबसे पहले सरोजी जी, आपकी तो, आपका जो ये फीडबैक है बहुत ही वैल्यूबल है, और दूसरा मैं बताऊं, या अभी हम रेडियो स्टार पर नहीं बैठे जी,
0: अभी
1: रेडियो
0: हम
1: गाना
0: रेडियो
1: पर बैठे
0: बजाते
1: हुए
0: रहो
1: हैं,
0: दिल से। जी
1: बजाते रहे दिन से रेडियो गाना, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। और सरोजी जी, आपकी पसंद भी लाजवाब होती है और आपके गाने भी लाजवाब होते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाने होते हैं, आपकी चूजिंग बहुत अच्छी है, पसंद बहुत अच्छी है।
0: और यहाँ भी बहुत सी लिसनर्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जैसे कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पे जुड़े
1: और
0: हैं।
1: सरोजी जी, मैं ये कहूंगा कि अपने पसंद का गाना जरूर भेजिए आप, सबसे पहले हम आपका एक गाना सुनवाएंगे, आप भेजिए, देखते हैं जिन
0: जी
1: दोस्तों का, किन किन दोस्तों के गाने आते हैं हमारे पास, सभी के गाने हम प्ले करेंगे आज, और
0: बिल्कुल,
1: बातें भी
0: अपने
1: करेंगे प्यारी प्यारी, और उनका अपनी तरफ से
0: गाने प्ले कर।
1: खूबसूरत खूबसूरत फीडबैक भी दीजिएगा आप जरूर।
0: बिल्कुल। और यहाँ पे राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, राजेश कुमार जी यहाँ भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। अजय भगत जी लिखते हैं, परमार सर जी, वंशिका जी, पहले तो नमस्ते, और आज किस टाइप के सॉन्ग की फरमाइश करनी है? जी आप किसी भी टाइम के टाइप के सॉन्ग्स की फरमाइश कर सकते हैं, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो न्यू हो, आज कोई लिमिट नहीं है। और यहाँ पे हमारे साथ नई लिसनर जुड़ी है, क्या नाम है, नताशा जी जुड़ चुकी है। नताशा जी आपका बहुत बहुत वेलकम है, लिखती है
1: और
0: नमस्ते।
1: नताशा जी का नमस्कार हम स्वीकार करते हैं जी, और नताशा जी सुपर वेलकम देते हैं आपको, आप पहली बार हमारे प्रोग्राम
0: जी
1: में
0: जी
1: जुड़ी।
0: कहाँ से हैं आप प्लीज बताइएगा। और आरिफ जी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम वंशिका जी और प्रमा सर जी, मैं आरिफ सिंधी गांधीनगर गुजरात से, हम भी जुड़ चुके हैं रेडियो गाना पे, स्वागत है आपका।
1: आरिफ सिंधी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और रेडियो गाना पे आपका बहुत ही ज्यादा दिल से हम स्वागत करते हैं, और कोई अपनी सी
0: और
1: मधुर सी
0: सबसे
1: आवाज में कोई फीडबैक भी भेजिए,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल,
1: करिए कोई पसंद अपना गाना।
0: और नताशा जी अगर आप सुन रही हैं तो आप भी भेज सकती हैं, और सरफराज जी आप भी भेज सकते हैं। वॉइस वाले फीडबैक आज जितने ज्यादा आप सभी भेजें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सभी की आवाजें परमार सर जी सुनने को बहुत तरस रहे हैं। ओके जी। और यहाँ पे ओके ठीक है, थैंक यू सो मच जी। और बट सबसे पहला गाना मेरे पास जो यहाँ पहुंचा है राजेश जी का, लिखते हैं, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, लता मंगेशकर जी की आवाज में, गुमनाम मूवी का गाना है,
1: वाह
0: सचिन से
1: वाह
0: बात
1: वाह
0: कर
1: वाह, क्या गाना, पुराना गाना लेके आए, कौन है, कौन से श्रोता है हमारी?
0: राजेश कुमार जी।
1: ओ राजेश कुमार जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना पुराना गुमनाम फिल्म का गाना। और ये गुमनाम फिल्म मनुष्का जी पता किसकी थी? मनोज कुमार और नंदा,
0: हेलन भी थी, जी थी,
1: हेलन भी थी, प्राण भी थे
0: ये वही
1: इनमें।
0: वाली मूवी है क्या?
1: हाँ हाँ
0: गुमनाम है
1: बिल्कुल वही, हाँ जी हाँ
0: कोई,
1: जी, वही वही।
0: बदनाम है
1: वाह वाह,
0: कोई,
1: कितनी सुरीली आवाज है उसका जी,
0: किसी
1: आपकी
0: को नजर होना
1: गले में क्या फिट करवा रखा है आपने।
0: कुछ नहीं फिट किया।
1: ऐसे एक वाक्य याद आ गया मुझे, एक बार की बात आई, जो लता मंगेशकर जी हमारे, जिनकी थे हमारी जो सुपर गायिका थी, तो पर ये गाने गाती थी। और एक बार ये जो बाहर के लिसनर या जो होते थे बाहर की कंट्री वालों को शक हो गया कि भी शायद लता मंगेशकर जी ने अपने गले में कुछ फिट करवा रखा है, तो इसका इनका गला तक ऑपरेशन होने के लिए हो गए तैयार। लेकिन लता जी ने मना कर दिया था। ये बहुत पुरानी बात है, जब जब लता मंगेशकर जी शुरू में भी काफी पॉपुलर हुई है, बहुत ही ज्यादा उम्र की थी वो, और
0: बिल्कुल
1: बेचारी इस टाइम हमारे बीच में नहीं है।
0: बट उनकी आवाज हमारे बीच में अभी भी जिंदा है। उसी बात पे यहाँ पे गाना सुनवा रही हूँ राजेश जी की पसंद का, एंजॉय कीजिए आप सभी।
1: सुनिए सुनिए राजेश जी।

0: ही मेरे पास सुनने को मिली है राजेश कुमार जी, और यहाँ फीडबैक्स मेरे पास आ चुके हैं। यहाँ पे लिखते हैं सरप्राज जी, सुपर ओल्ड इस गोल गाना सुनने को मिला, शुक्रिया देना चाहेंगे इस प्यारे से नगमे के लिए। और यहाँ पे डॉली सिंह जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला है। राजेश कुमार जी लिखते हैं वंशिका जी थैंक यू सो मच, आपने हमारे गाने को प्ले किया। अजय भगत जी लिखते हैं बेहतरीन गाना सुनने को मिला है। और नताशा जी क्या लिखती हैं, लिखती हैं जी मेरे साथ में आरजे परमार सर जी हैं, और आप लखनऊ से हैं जी, मैं हम पंजाब से हैं, है ना।
1: हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया नताशा जी, आप आई तो आपका मोस्ट बहुत बहुत
0: आज आप पहली बार जुड़ी हैं मेरे ख्याल से, स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका नताशा जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़ी, और आपकी जो बातें आपने लिख के भेजी वो भी काफ़ी खूबसूरत थी। और ये रोहित सिंह भी जी भी जुड़ गए हैं इस टाइम में, और ये रमन सिंह जी भी है, और ये कौन है,
0: ये डॉली सिंह जी हैं, मतलब सारे सिंह जी, सिंह जी, सिंह जी यहाँ पे जुड़
1: हाँ
0: चुके
1: जी, हाँ जी, ये कमलेश जी भी जुड़ी हुई
0: जी
1: है।
0: आप सभी का वेलकम करती हूँ। और यहाँ जैसे कि और बताइए महंगाई के ऊपर क्या बातचीत है आपकी।
1: महंगाई के ऊपर वंशिका जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, और बहुत ही अच्छी बात है, हम जब स्कूल जाते थे, मेरी बात सुनिए
0: जी
1: आप,
0: जी
1: तो हमें, आपको यकीन नहीं होगा, हालांकि हमारे पापा जी मेरे साथ थे, लेकिन मुझे वही, अगर मैं ज़्यादा पैसे ना खर्च दूँ तो मुझे पता कितनी खर्ची मिलती थी आपको। हमारे टाइम में एक आना
0: एक
1: होता
0: आना
1: था,
0: मतलब
1: एक
0: जी
1: आना
0: 16 आने
1: यानी,
0: मिला के 1 रुपए होता था।
1: हाँ 16 आने मिलाकर 1 रुपया होता था जी, और 1 रुपये में 16 आने होते थे,
0: देखिए
1: या
0: मैंने
1: ऐसे
0: सही,
1: कहिए 6 पैसे का एक आना होता था, और 1 रुपये में 16 आने यानी 96 पैसे का 1 रुपया होता था जी। और 96 पैसे का उस तरफ लगा दीजिए, या 100 100 पैसे का कह दीजिए, लेकिन एक आने से भी रुपए अकाउंट होता था, अगर 10 10 5 5 पैसे जोड़ते थे उसको, 100 पैसे को भी 1 रुपया कहते थे, ऐसी तरह होता था। तो आपको मैं बता रहा, मुझे अब एक नया पैसा मिलता था, और वो जो एक नया पैसा हमारे टाइम में होता था, उसके बीच में एक लंबा सुराख सा होता जी, गोल टायर में जैसे ट्यूब के
0: मगर रिंग जैसे, जैसे
1: बिना
0: क्रैक्स
1: रिंग,
0: की रिंग आती
1: हाँ
0: है
1: जी,
0: जी
1: हाँ जी, ऐसा होता था, और आपको यकीन नहीं होता, वो 1 पैसे में हम गोलगप्पे भी खा लेते थे, आपको यकीन नहीं होगा,
0: नाम मत लीजिए, मुझे भूख लग जानी है जी
1: 1 पैसे में पता कितने गोलगप्पे आते थे वंशिका जी,
0: जी
1: 1 पैसे के 10 गोलगप्पे आते थे।
0: ये मैं कह रही हूँ मुझे टाइम मशीन में जाना ही पड़ेगा तो
1: और चीजों की बात करें तो बस पूछिए मत, हमारी जो बुक्स होती थी, जो कापी होती थी, वो भी 1 पैसे में सेंट्रल की कापी आती थी, एक नए पैसे की
0: बहुत
1: सेंट्रल की
0: पुरानी
1: कापी
0: कंपनी है, मैं तो
1: आती थी,
0: पहली बार नाम सुन रही हूँ सभी कंपनीज
1: बहुत ही
0: का।
1: पुरानी कंपनी थी ये सेंट्रल, और काफी अच्छी कापियां बनाते थे ये। तो वंशिका जी, बात पुराने जमाने की हो रही है, और पुरानी बातों की हो रही है, और महंगाई की होती है, तो ये तो टॉपिक थोड़ा लंबा ही चलेगा आज, और दोस्तों से भी मैं कहूंगा
0: और
1: कोई फीडबैक दें
0: बिल्कुल
1: महंगाई के बारे में, और अपने टाइम के बारे में,
0: बिल्कुल
1: और इस
0: अगर हो
1: महंगाई
0: सके
1: के
0: तो
1: ऊपर,
0: वॉइस
1: हाँ,
0: फीडबैक जरूर दें।
1: आवाज भी, फीडबैक भी दें, और साथ में थोड़ी सी महंगाई के बारे में रोशनी भी डालिए आप, तो
0: बिल्कुल।
1: बहुत
0: और
1: अच्छा
0: यहाँ पे
1: लगेगा
0: हमारे
1: हमें।
0: साथ जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूबर साहब यानी कि एनालिटिकल एनालिटिकल आनंद जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं हेलो टू संडे, एसएनडी एक्सप्रेस में हम भी जुड़ चुके हैं, शामिल हो गए हैं, नमस्कार। और
1: नमस्कार जी, नमस्कार, लेकिन आनंद जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, कल मैं आपका नाम सुन रहा था प्रोग्राम में वंशिका जी में, लेकिन मैंने सर्च किया यूट्यूब में, लेकिन आपका नाम मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, आनंद के नाम से करा मैंने, और एनालिटिकल आनंद के नाम से भी सर्च किया, मुझे मिला नहीं, तो
0: आप लिंक
1: बताइएगा।
0: सेंड कर दीजिएगा परमार जी को।
1: हाँ जी, हाँ जी, तो आप ये इस पे आप अपना वो लिंक आनंद के नाम से भी सर्च किया, मुझे मिला नहीं, तो
0: आप लिंक
1: बताइएगा।
0: सेंड कर दीजिएगा परमार जी को।
1: हाँ जी, हाँ जी, तो आप ये इस पे आप अपना वो लिंक सेंड करिएगा, जिससे हम आपका यूट्यूब चैनल भी देख सकें।
0: और
1: कल
0: यहाँ
1: मैंने
0: पे
1: काफ़ी ट्राई ट्राई किया था
0: जी
1: वंशिका
0: जी
1: जी,
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: वो चैनल मुझे मिला नहीं इनका, आनंद जी का
0: जी
1: यूट्यूब पे,
0: जरूर
1: कौन सा
0: मिलेगा।
1: चैनल
0: आनंद
1: था।
0: जी अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज प्रमाण जी को बताइएगा, मैंने तो आपका चैनल एक्सप्लोर मेरे ख्याल से किया था एक बार। और यहाँ नताशा जी क्या लिखती हैं, जी हाँ मतलब लगभग बहुत देर समय हो चुका है मुझे यहाँ पे, तो चलिए चलते हैं हम। यहाँ पे जैसे कि देख सकती हूँ बहुत सारी सॉन्ग रिक्वेस्ट आ चुकी हैं और फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास। सवजी सेठी जी लिखते हैं ओके जी, और अजय भगत जी लिखते हैं ये वाला गाना भी बहुत ही प्यारा लगा है। और चलिए सुनवाते हैं हम अगली पसंद को जो कि हमें भेजी है यहाँ पे सरफराज पटेल जी ने, लिखते हैं गाना सुनना है हमें ये वाला गाना, आप सभी को डेडिकेट करते हैं ये प्यारा सा गीत, आरजे प्रमार जी, आरजे वंशिका जी और रेडियो वास्तव के सभी लिस्टनर्स
1: कौन
0: को।
1: कौन, अच्छा
0: ये पसंद है सरफराज पटेल जी साउथ अफ्रीका से, ओ
1: अच्छा
0: यारा
1: बहुत
0: दिलदारा ये गाना सुन रहे हैं।
1: सरफराज पटेल जी, सलाम वालेकुम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में,
0: और
1: और
0: सुनवा
1: दिल
0: दिया
1: से
0: थैंक
1: आपका
0: यू
1: धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आकर जुड़े इतनी दूर से,
0: जी
1: बहुत
0: बिल्कुल।
1: बहुत शुक्रिया सरफराज।
0: जी
1: जी, ये वही तो नहीं है जिन्हें
0: साउथ
1: जिसके
0: अफ्रीका जी
1: जिन्हें अमन आरजे अमन जी सेफू भाई, सेफू भाई
0: जी
1: कहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल वही है आपका।
1: ओहो, बहुत बहुत स्वागत है जी सेफू भाई जी आपका हमारे प्रोग्राम में।
0: तो चलिए सुनवा दिया आपकी पसंद के गाने को, एंजॉय कीजिए।

0: बहुत ही प्यारी पसंद सुनने को मिली है यहाँ पे सरफराज जी की, क्या कहना चाहेंगे आरजे फरमा जी सरफराज जी की पसंद पे?
1: देखिए सरफराज जी, आपकी जो पसंद थी वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब थी और ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया आपका गाना, और कमाल कर दिया आपने इतना खूबसूरत गाना भेज के। सरफराज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरफराज जी एक फीडबैक जरूर चाहूंगा मैं आपसे, एक बढ़िया फीडबैक दीजिए महंगाई के बारे में और अपने बारे में और गाने के बारे में जरूर दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ सरफराज जी, प्लीज प्लीज
0: ओके जी। और यहाँ फीडबैक आ चुके हैं, राजेश कुमार जी लिखते हैं सरफराज जी की पसंद बहुत ही प्यारी लगी है, थैंक यू सो मच। अशोक पाल जी लिखते हैं ब्यूटीफुल पसंद सुनने को मिली है। और नताशा जी लिखती हैं कि हम पहले रेडियो सावन सुनते थे, अभी अभी यहाँ से बहुत पहले से यहाँ सुनते हैं। अच्छा यहाँ भी सुनते हैं, वहाँ भी, वहाँ भी सुनते हैं। ओके जी,
1: लेकिन नताशा जी का नाम तो अब मैंने शायद पहली बार सुना है। नमस्कार
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी पहली बार ही सुन रही हूँ आपका नाम नताशा जी। और सबजीत सेठी जी का फीडबैक है वो भी सुन लेते हैं, क्या कहते हैं?
2: परमार सर जी, पंचिका मैम, नमस्ते।
1: नमस्कार जी, नमस्कार।
2: कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है और महंगाई के बारे में जानकारी दी जा रही है, बहुत ही मजा आ रहा है कार्यक्रम सुनकर। तो सुनते रहिए रेडियो, गाना जो बना दे सबको दीवाना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और सरजीत जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, एक बढ़िया सा खूबसूरत सा फीडबैक दीजिए अपना महंगाई के बारे में, और बताइए थोड़ा कुछ आप भी, तो मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता भी शिरकत करें इसमें और अपने अपने सुंदर सुंदर खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे फीडबैक हमें सुनाएं। क्यों इसका जी?
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है आपने। और महंगाई की बात चल ही रही है तो मुझे एक चीज याद आ रही है, जैसे कि अब पहले आप सभी भी पढ़ते होंगे कॉमिक्स बुक्स, पढ़ी आपने कभी?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, बचपन में मैं कॉमिक्स भी का बहुत शौकीन था, लेकिन हमारे टाइम में ऐसी कॉमिक्स नहीं आती थी।
0: मैं बात करना चाहूंगी पहले कॉमिक्स बुक्स, जैसे कि वो वाली कॉमिक्स होती है जो अखबार में निकलती है, वो वाली पढ़ी आपने जो अखबार में आती है, जैसे कि नंदन चंपक?
1: देखिए जी अखबार में तो बहुत सारी आती है, नंदन भी आती है, चंपक भी आती थी, बाल भारती भी आती थी है, और ये आपका फैंटम भी आती थी जिसे बेताल कहते हैं, जिसमें मैंटक जादूगर होता था, ये गार्थ वगैरह भी होते थे, ये भी आती थी, और इसके साथ साथ और भी वो होती थी क्या कहते हैं आपके ये कॉमिक्स, और कॉमिक्स में ये पिंकी विंकी तो बाद में आई है, चाचा चौधरी,
0: मैं तो पिंकी और चाचा चौधरी
1: ये बहुत बाद में आई है जी, लेकिन
0: तो इस बात पे मैं यही कहना चाहूंगी कि उस समय जब मतलब जब हम छोटे थे तो हमें मिलती थी 30 रुपए की एक किताब, बट अब जब उसी किताब को हम ऑनलाइन देखने जाते हैं तो हमें पड़ती है लगभग 150, 200, 300 रुपए की। तो आपके समय में वो किताब कितने की मिलती थी?
1: हमारे टाइम में कोई भी कॉमिक्स ले लो, कोई भी बुक्स ले लो, 25 पैसे से शुरू होता था, और 25 पैसे का 30 पैसे का बस ही मैक्सिमम रेट होते थे कॉमिक्स के, और एक बड़ी पॉपुलर मैगजीन होती थी जो शायद अब तो बंद हो गई है, चंदा मामा के नाम से आती थी, हिंदी मैगजीन होती थी वो, और वो भी उसका रेट भी सिर्फ 25 पैसे होता था, वो भी मैंने बचपन से काफी पढ़ी है, हमारे पापा जी ने कहा था पढ़ी है, और काफी शिक्षा प्रद कहानियां होती थी उसका जी उसमें, वो मैंने पढ़ी है। तो मैं भी अपने श्रोताओं
0: से, तो महंगाई की बात है कि हर चीज में महंगाई बढ़ी हो, चाहे वो किताब हो चाहे वो कोई चीज हो,
1: हर एक चीज में हर एक वस्तु में महंगाई डेवलप हुई है जी। और मैं अपने सभी श्रोताओं से पूछना चाहूंगा वो कौन सा कॉमिक्स पढ़ते थे और कौन सा पसंद करते थे, उसका प्राइस क्या था, रेट क्या होता था, महंगाई को मद्देनजर रखते हुए आप इस बारे में जरूर फीडबैक दीजिए।
0: बिल्कुल। और यहाँ पे मेरे पास फीडबैक आने लग गए हैं, जैसे कि देख सकते हैं अजय भगत जी लिखते हैं परमार सर जी के शो में हम पहली बार जुड़े हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। और सबजीत सेठी जी कहते हैं कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है। और यहाँ पे जी जरूर पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप जरूर पूछिए, जवाब देंगे हम आपको। और अगले गाने की तरफ नजर डालते हैं, तो अगला गाना मैं सुनवाने वाली हूँ आपको, किसकी पसंद सुनवाने वाली हूँ, ये पसंद हमारे पास संदीप सुतार जी की, लिखते हैं गाना सुनना है, कमाई तो बहुत है फिर भी, फिल्म का नाम है स्वीकार किया मैंने, किशोर जी की आशा जी की आवाज में, महंगाई के टॉपिक पे आपकी, जैसे कि आजकल की रोज की जरूरतें महंगाई की शिकार हो गई हैं, बिल्कुल इस बात पे मियां बीवी के खर्चे पर नोकझोंक वाला गाना भेज दिया है, तो चलिए सुनवा दिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सुतार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपके गाने का भी बहुत ही ज्यादा दिल से मैं स्वागत करता हूँ।
0: महंगाई के टॉपिक पे सोच समझ के लाया।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत गाना भेजने के लिए, और मैं इस गाने को सुनूंगा, और ये प्रसाद मैंने पहले भी सुन रखा है, गाना तो कोई भी नहीं है ऐसा जो मैंने ना सुना हो
0: जी, आप तो डिक्शनरी है गानों के, एंजॉय की।
3: कमाई कमाई

0: बहुत ही प्यारी पसंद सुनने को मिली है, संदीप सितार जी, कमाई के ऊपर ये गाना लेके आए जो आप, नोक झोंक वाला।
1: वंशिका जी, बात ये है कि जो जिस तरह का भी इन्होंने गाना बजाया, संदीप सितार जी ने, बहुत ही प्यार और बहुत ही खूबसूरत गाना था। और आजकल का आज जो टॉपिक चल रहा है महंगाई, उसी पर ही था ये। और ये हमारी श्रोती,
0: फीडबैक आ चुके हैं, पहले वो हम पढ़ लेती
1: हाँ
0: हूँ।
1: चलो पढ़ लीजिए, मतलब फीडबैक
0: अमीना
1: सुन।
0: जी लिखती हैं, अमीना खान जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। लिखती हैं वंशिका जी, सलाम वालेकुम, हम शामिल हो चुके हैं आपके प्रोग्राम में, स्वागत है आपका। और जी हाँ, कोई से भी गाने की रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं, कोई खास वर्ड कुछ भी नहीं है, आप जो सा गाना चाहें भेज सकते हैं। राजेश कुमार जी लिखते हैं सुपर फरमाइश है, दिल से धन्यवाद। आरिफ जी कहते हैं संदीप सुतार जी बहुत ही प्यारा लगवा नगमा लेकर आए हैं, शुक्रिया कहना चाहेंगे आप। और यहाँ पे
1: हाँ, यहाँ पर हमारे से जुड़ी है नताशा जी, और नताशा जी ने एक क्वेश्चन पुट किया है मुझसे, और मैं उनके नताशा जी के उस क्वेश्चन का जवाब सभी श्रोता के सामने देना भी चाहूँगा। तो ये नताशा जी पूछती है, ये अमन जी आपके भाई भाई हैं? ओ हो, क्या बात कही है, वो तो मेरे बेटे की उम्र का है। क्या नाम था नताशा
0: नताशा जी, नताशा
1: जी?
0: जी
1: वो मेरे बेटे की उम्र का, मेरा बेटा ही है वो, और बेटे से भी ज्यादा है, उसे मैं बेटा ही मानता हूँ। और आपका भाई हो सकता है, क्योंकि आपकी उम्र का है वो, आपकी उम्र का, तो आपका भाई ही लगा वो। तो मेरा भाई कहाँ से हो सकता है जी, मेरा तो बेटा है वो। तो बहुत बहुत अजीब सा क्वेश्चन पूछा आपने, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी ऐसा क्वेश्चन पूछेंगी।
0: जी। अशोक पाल
1: तो
0: जी लिखते हैं महंगाई के साथ साथ कमाई भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल ये बात तो सही है, अगर कमाई नहीं करेंगे तो महंगाई को सहेंगे कैसे। और अजय भगत जी लिखते हैं सुपर्ब सॉन्ग सुनने को मिला है, दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे। और चलते हैं हम अगली फरमाइश की तरफ, उससे पहले चलिए बातचीत कर लेते हैं महंगाई के ऊपर, क्या किस्सा लेके आए थे अब।
1: मैं किस्सा ये नहीं कह रहा था, मैं जी बात चल रही है महंगाई की, तो आपको यकीन नहीं होगा। चलो, आप तो आजकल सूट पहनती हैं, जीन पहनती हैं, टॉप पहनती
0: साड़ी
1: हैं, तो आजकल ये हमारे टाइम में ये चीज नहीं होती थी। लड़कियां हमेशा सूट पहनती थी या फ्रॉक पहनती थी, जो छोटी
0: अभी
1: लड़कियां होती
0: भी
1: थी,
0: वो
1: या जो बड़ी लड़कियां होती थी, उन्होंने हमेशा सूट ही पहना। उस टाइम भी ये हमारे टाइम में फैशन आया था जी, वेल बॉटम का। वंशिका जी, वेल बॉटम नीचे से खुली होती थी पैंचे की तरफ से, और ऊपर से वैसी होती है जैसे पैंट होती है। तो ये आया था। तो बात कपड़ों की आती है, तो कपड़े क्या होते थे मेरे पास? रेडीमेड कपड़े कम चलते थे, हमेशा जो भी कपड़े हम लेते थे वो दर्जी से ही सिलवाने पड़ते थे हमें, और उस टाइम सिलाई भी कुछ नहीं होती थी। अगर एक पैंट हम लेते थे, उसको दर्जी के पास सिलवाने जाते थे, दो नए पैसे सिलाई होती थी उसकी, और शर्ट की सिलाई होती थी एक नया पैसा। तो ये हमारी महंगाई के टाइम में उसे सस्ता कहते थे इसे, लेकिन उस टाइम भी कई लोग थे कहते थे बड़ी महंगी हो गई यार, दो पैसे सिलाई हो गई पैंट की, यार बहुत महंगा
0: बहुत
1: रेट बढ़ गया।
0: ज्यादा
1: हाँ,
0: हमारे यहाँ दो पैसे का अब हमारी तरफ
1: तो
0: कोई महत्व ही नहीं रहा है, 2 रुपए में कुछ नहीं हो
1: दो
0: पाता।
1: पैसे भी, क्योंकि इनकम भी उसी हिसाब से होती थी दोस्तों। अब आपको यकीन नहीं होगा, उस टाइम सैलरी क्या मिलती थी? एक बड़ी पोस्ट वाले हमारे फाज साहब मेजर थे, आपको यकीन नहीं होगा, उन्हें भी 350 रुपये उस टाइम सैलरी मिलती थी, और पोस्ट इतनी बड़ी थी। तो जिस तरह इनकम होती थी उसके हिसाब से खर्चे भी होते थे।
0: अब तो साढ़े
1: बिल्कुल
0: 300 रुपए में कुछ भी नहीं आता, 350 रुपए की बिरयानी की कहानी आपने सुनी होगी।
1: बिल्कुल नहीं होती थी। और बात रही खाने पीने की, तो गोलगप्पे का मैंने बताया रेट, एक नए पैसे के 10 गोलगप्पे आते थे।
0: आज तो बजट लेके
1: अगर
0: बैठे हैं प्रभाष जी,
1: अगर
0: आप 1960 का बजट खोल
1: बिल्कुल
0: रहे हैं
1: बिल्कुल और
0: बिल्कुल।
1: आपको मैं बताना चाहूंगा, ये चॉकलेट या टॉफी चॉकलेट जो होती थी, वो भी एक एक नए पैसे की 10 चॉकलेट आती थी, आपको यकीन नहीं होगा। और
0: बहुत अच्छी जानकारी दी है,
1: चलो, और भी जानकारी मैं आपके साथ अभी शेयर करता
0: पर
1: रहूंगा,
0: सबसे
1: आप भी
0: पहले सुनते हैं
1: प्लीज,
0: यहाँ पे।
1: आप भी कोई ना कोई जानकारी हमारे साथ भी शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्त श्रोताओं, सुनाइए आप भी कोई
0: अजय
1: बातें,
0: भगत जी की पसंद
1: और
0: सुना
1: जो
0: देते
1: भी
0: हैं,
1: प्रश्न पूछना है थोड़ा सा ठीक से पूछा कीजिए। अब देखिए,
0: जो
1: इन्होंने
0: जी हाँ ठीक, अब
1: क्या
0: रहने
1: क्या
0: दीजिए,
1: क्या
0: चलिए
1: क्या क्या नाम था?
0: जी जी रहने दीजिए। अब अगला गाना मैं यहाँ पे सुनवा रही हूँ अजय भगत जी की पसंद, एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मुकेश की आवाज ने सुनवा दिया है, एंजॉय कीजिए अपनी पसंद के
1: वाह जी
0: इस गाने
1: वाह,
0: को।
1: अजय भगत जी की फरमाइश, वाह क्या गाना लेके आए हैं जी, दिल को छूने वाला गाना है, और बहुत ही पुराना गाना है जी, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है ये। तो
0: एंजॉय कीजिए।
1: हमारे इन दोस्त की फरमाइश को आप सुनवा दीजिए वंशिका जी।

0: सलाम जी लिखते हैं, लवली सॉन्ग सुनने को मिला है, दिल बग बग हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और नताशा जी लिखती हैं कि ओके ठीक है। और खुशबू कुमार जी लिखती हैं, आज किस तरह के गाने भेज रहे हैं खुशबू जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है खुशबू जी। लिखती हैं, नमस्ते आदरणीय आरजे परमार सर जी और आरजे वंशिका दीदी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू कुमारी जी, बहुत शुक्रिया। और
0: वेलकम
1: आपके
0: आपका।
1: मैं आपका नाम मैं अमन जी के प्रोग्राम में भी सुना करता था, वंशिका जी के में
0: जी
1: भी,
0: बिल्कुल
1: और बहुत ही प्यारी श्रोता है हमारी।
0: जी, हमारी बहना जी हैं
1: और मेरी तो बेटी की उम्र की है,
0: बिल्कुल।
1: तो मैं
0: और
1: बेटा ही
0: आज
1: कहूँगा खुशबू कुमारी को। और खुशबू कुमारी बेटा, कोई अपनी पसंद का बढ़िया सा खूबसूरत सा प्यारा सा गाना भेजिए जो मैं आपको सुनाऊंगा।
0: जी बिल्कुल। और आरिफ जी लिखते हैं, सदाबहार नगमे सुनने को मिल रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया था। राजेश कुमार जी लिखते हैं, अजय भगत जी की पसंद बहुत ही प्यारी लगी है, ओल्ड इज गोल्ड गाना सुनवाया है। और सरफराज पटेल जी लिखते हैं, वंशिका जी थैंक यू सो मच, और परमा सर जी आपको भी थैंक यू सो मच कि आप सभी ने इतने प्यारे प्यारे गाने सुनवाए। और अजय भगत जी लिखते हैं, परमा सर जी दिल से धन्यवाद आपको मेरा सॉन्ग प्ले करने के लिए, ये वाला गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, थैंक यू सो
1: बहुत
0: मच।
1: बहुत शुक्रिया अजय भगत जी, आपने इतना प्यारा और इतना खूबसूरत गाना सुनाया जो सभी श्रोताओं को बहुत ज्यादा पसंद आया। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ इतने खूबसूरत प्यारा गाना सुनाने के लिए।
0: थैंक यू सो मच जी। अगले गाने की तरफ नजर डालते हैं, उससे पहले यहाँ पे फीडबैक आ चुका है सरोजीत सेठी जी का, वो सुन लेते हैं, क्या कहते हैं सरोजीत सेठी।
2: वंशिका मैम और परमार्सा जी, आप दोनों को नमस्ते। कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है और सभी की एक से बढ़कर एक चल रहे हैं। और महंगाई के बारे में जानकारी दी जा रही है परमार सर जी के द्वारा
0: जी
2: और
0: बिल्कुल,
2: वंशिका मैम के द्वारा बताया जा रहा है, सब कुछ तो अच्छा लग रहा है। और महंगाई के बारे में बातचीत और जानकारी बताया जाए तो पुराने समय में सिलेंडर काफ़ी सस्ता रेट में मिलता था, 60-65 में। अब महंगाई काफ़ी हो गई है और सिलेंडर भी काफ़ी महंगा हो गया है, 1000 तक पहुँच गया है। वो भी काफ़ी कम रेटों में मिलता था लेकिन अब काफ़ी महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है। दूध हो और बिस्कुट भुजिया वगैरह हो, और भी चीज़ें हों, खाने पीने की दाल हो,
0: जी बिल्कुल
2: आटा
0: बिल्कुल
2: हो, सब कुछ महंगा हो गया है। और तोशा पंजाब में फाजिल
0: जी, तो शाओ दिन बात हुई थी
2: का, फाजिलका जिले का मशहूर है और काफ़ी कम रेट पर मिलता था पहले, ये 200-250 रुपये का मिलता था, अब ये लगभग 450 के आसपास पहुंच गया है और काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं।
0: बहुत ही
2: तो
0: प्यारा लगा आपका
2: सुनते
0: फीडबैक।
2: रहिए रेडियो गाना जो बना दे सबको दीवाना। मैं सरवजीत सेठी फाजिलका पंजाब से, थैंक
1: बहुत बहुत
2: यू सो
1: शुक्रिया
2: मच,
1: सरोजी
2: थैंक यू सो
1: जयदेव जी,
2: मच।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत फीडबैक दिया आपने। लेकिन मैं एक थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूँगा सरोजी सेठी जी, कि हमारे टाइम में गैस सिलेंडर होता ही नहीं था, हमारे टाइम में सिर्फ चूल्हा चलाते थे या हीटर बिजली वाला। तो उसके बाद हमारे जो खाना बनाने के लिए आया जी स्टोव, याम स्टोव, मिट्टी के तेल वाला,
0: वो
1: मिट्टी
0: जिसे जिसमें पंप पंप लग
1: जिसे हम
0: जिसमें पंप लगाया जाता था।
1: कैरोसिन तेल डाल के चलाते हैं। ये दो तरह के स्टोव होते थे उस टाइम में, एक होता था बत्तियों वाला स्टोव, उसमें बत्तियां होती थी 10-12, उसकी धागे की बत्तियां होती थी और नीचे पेट्रोल या मिट्टी का तेल भर दिया जाता था और उसमें आग लगा दी जाती थी, तो उसमें खाना बनता था। और फिर स्टोव स्टोव जिसके घर होता था उसे बड़ा स्टैंडर्ड का, और अमीर आदमी समझते कि वाह इनके घर तो स्टोव है बड़ी तारीफ होती थी कि बहुत अमीर आदमी है, इनके घर में स्टोव है और स्टोव में गाना बनता है। तो ये गैस का तो नामो निशान नहीं था सरोजी जी उस टाइम, हमारे टाइम में तो ये गैस तो बहुत ज़्यादा बाद में आई है, बहुत टाइम बाद में आई है जी, हमारे टाइम में नहीं होती थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत फीडबैक देने के लिए सरोजी सेठी फाजिलका वाले जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब देखिए वंशिका जी कौन है आगे हमारे लिसनर, क्या फरमाइश भेजिए।
0: बहुत ही प्यारी प्यारी फरमाइश हमारे पास आ रखी है, उससे पहले यहाँ पे मेरे साथ जुड़ चुकी हैं खुशबू कुमार जी, लिखती हैं जी कोशिश कीजिए, हम कोशिश करेंगे प्ले करने की, बिल्कुल आप भेज सकती हैं। और मोहम्मद शहनवाज जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है मोहम्मद शहनवाज जी, कैसे हैं आप। लिखते हैं, आज वंशिका जी आज प्रमा सर जी आप दोनों को सलाम वालेकुम, नमस्ते।
1: बहुत बहुत नमस्ते, सलाम वालेकुम शहनवाज जी, आप आए हमारे प्रोग्राम में, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे और दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं शहनवाज जी।
0: बिल्कुल, तो अगला
1: तो
0: गाना जैसे कि मैंने आप सभी को कहा, ये गाना मैं सुनवाने वाली हूँ आप सभी को, आरिफ सिंधी जी की पसंद, और आरिफ जी की वॉइस माइश है, वो भी सुन लेते हैं।
1: सुनाइए सुनाइए।
3: अस्सलामु अलैकुम,
0: वालेकुम अस्सलाम जी,
3: परमार सर जी, वंशिका जी, मैं आरिफ सिंधी, गुजरात गांधीनगर से।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका आरिफ जी।
3: आज के गाने के बोल है,

0: मैंने पूछा चांद से, मेरा यार सा हसी देखा है कहीं। फिल्म का नाम है अब्दुल्ला।
1: वाह वाह वाह, क्या फरमाइश लेके आए हैं यार
0: डेडिकेट
1: ये आप।
0: रहेगा परमार सर जी आपको, वंशिका जी को, अमन जी को और रेडियो हॉट स्टार के सभी श्रोताओं को। मैं आरिफ सिंधी, गुजरात गांधीनगर से।
1: वाह वाह
0: शुक्रिया।
1: वाह वाह, क्या गाना भेजा जी अब्दुल्ला फिल्म का। ये संजय दत्त, संजय दत्त नहीं, संजय खान, संजय खान को उसमें नाम था इनका संजय। ये
2: जी
1: संजय पता कौन थे आपको मिश्का जी? आपको नहीं पता शायद।
2: जी
1: ये
2: नहीं
1: हमारे
2: पता।
1: जो फिरोज खान एक्टर
2: उनके
1: हुए
2: भैया,
1: हैं उनके छोटे भाई थे
2: अच्छा उनके
1: ये
2: भाई थे।
1: फिरोज खान की फैमिली के चार भाई थे ये, सबसे बड़े थे फिरोज खान, उससे छोटे थे ये संजय, ठीक है, और उससे छोटे थे समीर, और सबसे छोटे थे अकबर खान। इनकी पूरी हिस्ट्री ये थी और बहुत ही अच्छे फिल्म थी ये, जीने दो मार और संजय जी, संजय खान की।
2: और यहाँ फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास। मोहम्मद शाहनवाज जी लिखते हैं बेहतरीन गाना। ओके जी, खुशबू जी आप गाना भेज दीजिए। और नताशा जी लिखती हैं परमार सर जी आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया बेटा नताशा, आपने मुझे इतना इज्जत दी और उसके लिए मैं आपका बहुत ही तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ नताशा बेटे।
2: और सुनवा दिया है यहाँ पे मैंने ये पसंद आरिफ जी की। एंजॉय कीजिए आप सभी भी। मैंने पूछा चांद से।
1: देखिए आरिफ जी कितना प्यारा गाना लेके आए हैं मिश्का जी, है ना। मैंने पूछा अब्दुल्ला फिल्म का हिट गाना था ये,
2: बिल्कुल सुनवा दिया
1: सुनवा
2: एंजॉय।
1: दीजिए, सुनवाइए।

0: बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला है, बेहतरीन फरमाइश लगी है यहाँ पे। और फीडबैक आ चुका है मेरे पास आरिफ सिद्दीकी जी का, यानी कि आरिफ जी की फरमाइश पे आरिफ जी का फीडबैक आ चुका है, वो भी वॉइस वाला, सुन लेते हैं।
1: अस्सलामु अलैकुम वंशिका जी, परमार सर जी, मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और जो दोस्तों ने फीडबैक दिया उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। और जो नया ये प्रोग्राम लेकर आए हो, बहुत ही शानदार और बढ़िया प्रोग्राम है, इसे कंटिन्यू करते रहिए। मैं आरिफ सिंधी, गुजरात गांधीनगर से।
2: देखिए आरिफ जी, आपका गाना ही बहुत खूबसूरत था। देखिए आरिफ जी, आपका गाना ही बहुत ज्यादा खूबसूरत था, तो हमने सुनाया और पसंद भी बहुत आया आरिफ जी आपकी फरमाइश। और बहुत ही ज्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ मैं आपका कि आपने इतना अच्छा और प्यारा गाना लोगों को, श्रोताओं को, सभी को सुनाया। और मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ इस बारे में। तो
0: और यहाँ पे नताशा जी लिखती हैं, बेहतरीन गाना सुनने को मिला है। और जी आप पूछिए जो पूछना चाहती हैं, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी। यहाँ पे जो भी आपको डाउट है उसको सॉल्वेशन जरूर किया जाएगा।
2: देखिए नताशा जी, एक बात सुनिए मेरी बात, ये प्रोग्राम से मुतल्लिक ही आप सवाल पूछिए, बेकार के क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते हमें या और किसी श्रोता को भी नहीं लगते कि आपके भाई लगते हैं, ये लगते हैं, वो लगते हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप के मत पूछिए, सिर्फ जब प्रोग्राम से रिलेटेड ही बातें कीजिए आप। और यही कहना चाहूँगा मैं नताशा जी आपको, तो प्लीज प्लीज प्लीज। और मैं खुशबू कुमारी जो हमारी बेटी की तरह है, उनसे भी कहूँगा, वो भी एक शायरी भेजे अपनी आवाज़ में। उनकी शायरी बहुत ही खूबसूरत होती थी वशिका जी, मैंने आपके प्रोग्राम में और मंच के प्रोग्राम में सुनी है। तो खुशबू कुमारी बेटा जी, आप भी एक गाना भेजिए अपनी पसंद का, कोई भी गाना भेज दीजिए, और एक शायर अपनी आवाज़ से एक शायर भी भेजिए अपनी खूबसूरत आवाज़ में।
0: और अजय भगत जी लिखते हैं, आरिफ सिंधी जी दिल से धन्यवाद बेहतरीन फरमाइश के लिए। सरफराज लिखते हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं, थैंक यू सो सो मच। ओके जी, और मैं ये कहना चाहूंगी, अगर कुछ कुछ लिसनर्स यहाँ पे, जैसे कि मैं जैसे देख सकती हूँ, जुड़ चुके हैं, अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप से फीडबैक दे सकते हैं, वॉइस फीडबैक दे सकते हैं। और नताशा जी, अगर आप सुन रहे हैं शो को, तो प्लीज आप वॉइस वाला फीडबैक हमें भेजिए, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहती हूँ। कैसी है आपकी आवाज, कैसी है आप, बिल्कुल मेरी छोटी बहना की आवाज कैसी है, मैं सुनना चाहूंगी, है ना प्रमा सर जी?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा मैं सुनना चाहूंगा, पहली बार जुड़ी है, अच्छा लग रहा है हमें। और तो अपनी खूबसूरत आवाज में, अपनी प्यारी आवाज में बेटा, अपनी एक बढ़िया सा फीडबैक भेजिए।
0: बिल्कुल जी, अगली फरमाइश की तरफ चलते हैं, जो की हमें भेजी है यहाँ पे, इन्होंने अशोक पाल जी ने, महंगाई मार गई, लता मंगेशकर जी की आवाज में, वंशिका जी आपको, आरजे प्रमार जी को, और रेडियो गाना सुनने वाले सभी श्रोताओं को डेडिकेट है।
2: अशोक पाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा गाना भेजने के लिए, गाना मेरा फेवरेट गाना है आपने जो भेजा अशोक पाल जी, उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे गाने भेजिए जैसे आप भेज रहे हैं, और आप सभी की पसंद, आपकी सबकी फरमाइश बहुत ही अच्छी है।
0: एंजॉय।

0: का फीडबैक दिखाना है पड़ता है।
1: बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला है, बेहतरीन फरमाइश है। और यहाँ पे अजय भगत जी लिखते हैं, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सब कुछ वैसे ही जिंदगी ऐसी चलती है, ऊपर से महंगाई
0: वैसे
1: मार
0: वैसा जी, ये अशोक पाल जी का गाना था, मुझे पसंद का गाना था, बहुत ही खूबसूरत प्यारा गाना था जी, मजा आ गया सुनकर। और ये फीडबैक देख रहा हूँ मैं, और ये अपनी जो
1: रोहित सिंह जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला है, दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे लाजवाब गाने
0: और
1: के
0: ये
1: लिए।
0: नताशा जी लिखती हैं कि हम अपनी आवाज नहीं दिन में नहीं भेज सकते, तो मैं ये कहना
1: आपकी आवाज को क्या
0: चाहूँ,
1: हो बर्बाद
0: मैं
1: जी।
0: मेरे मेरी आवाज में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, तो मैं ये कहना चाहूंगा नताशा जी, हम रेडियो आप सावन सुनती थी, और मैं भी काफी दिनों से सावन ही सुन रहा हूँ, उसमें जो हमारी जो रिया खान है उनकी आवाज बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारा अच्छा प्रोग्राम करती हैं, बहुत ही खूबसूरत प्यार प्रोग्राम करती हैं रिया खान जी, वाह वाह वाह क्या बात है उनकी, और मैं सुनता हूँ। और दूसरी बात रही हमारे अभी दूसरे आरिफ सिंधी जी कहते हैं, बहुत ही लाजवाब फरमाइश सुनवाई आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ सिंधी जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सरोजीत सेठी कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान का बहुत ही महत्वपूर्ण गीत था जी, बहुत ही अच्छा गाना था, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया सरोजीत सेठी जी आपका। और क्या हाल आपके फाजिल का, कैसा मौसम होगा बताइएगा जू।
1: बिल्कुल बताइएगा। और यहाँ पे डॉली सिंह जी कहती हैं, बेहतरीन गाना सुनने को मिला है, महंगाई के ऊपर बात तो चल ही रही है, महंगाई मार गई, तो आपको क्या लगता है महंगाई सच्ची में मार गई है सभी को?
0: देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ मनीषिका जी, बात हो रही है महंगाई की, तो महंगाई के टॉपिक पे मैं एक टॉपिक और उठाना चाहूंगा अभी, और वो ही टॉपिक ये है कि मुझे ये सारे पुराने गाने अच्छे क्यों लगते हैं, क्योंकि मैं पुरानी फिल्में बहुत ज्यादा देखा करता था, और उसमें जो आपको यकीन नहीं होगा मेरे दोस्तों, पुराने थिएटर में हम जाते थे, सिनेमा हॉल कहते थे उन्हें, और टिकट का रेट पता क्या होता था, 50 नए पैसे, 60 नए पैसे, 70 नए पैसे, यानी जो 50 नए पैसे की टिकट थी वो पीछे वाली होती थी, और 60 नए पैसे का होता था बालकोनी, और 70 पैसे में मिलता था हमें बॉक्स, ये रेट होते थे, तो हमें जो भी पॉकेट मनी या खर्ची मिलती थी हमारे मम्मी पापा से, तो उसे मैं ज़्यादातर पिक्चर देखने में बर्बाद किया करता था, और कई बार मार भी खाई है मैंने पिक्चर देखने की वजह से अपने पिताजी से, अपने फादर पापा जी से। तो दोस्तों आप ये तजुर्बा दीजिएगा, और ये सारे पुराने गाने मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि गाने फिल्मों के होते ही बहुत खूबसूरत प्यारे थे। वंशिका जी आप ये जान के, जो आजकल की फिल्में हैं गाने तो उनके भी ठीक होते हैं, लेकिन मतलब होते हैं उनके,
1: बे
0: मतलब
1: मतलब तो नहीं होते। और आजकल के गाने अगर आप सुनना चाहें तो आजकल के गाने बहुत
0: कुछ
1: ही प्यारे
0: गाने को
1: हैं।
0: छोड़कर वंशिका जी, बाकी गानों का तो मेरे को पता ही नहीं।
1: तो चलिए मैं अपनी
0: हाँ
1: पसंद का गाना सुना देती हूँ, उसी पे फिर बताइएगा कैसा लगा आपको।
0: सुनाइए सुनाइए सुनाइए।
1: एंजॉय कीजिए मेरी पसंद की इस प्यारे से गाने को।

0: कैसा लगा गाना प्रभास जी? आप कहते थे ना कि
1: वाह
0: नया गाना
1: वाह
0: अच्छा
1: वाह
0: नहीं
1: वाह
0: होता।
1: वाह वाह वाह, देखो ऐसा मेरी बात सुनिए वंश का जी, इसमें दो राय नहीं उसकी, लेकिन कई गाने अभी भी ऐसे हैं जिनकी वर्डिंग काफी अच्छी है, जिसमें से ये भी एक था। और इसको आपने इस गाने के साथ साथ गाया, ये तो सोने पे सुहागा कर दिया। आरजे अमन और आप दोनों सेम ही होते जा रहे हैं, अब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। आरजे अमन जी भी साथ में गाना गाते हैं और आप भी गाती हैं, और आज बहुत मुझे पता
0: जी,
1: लगा
0: मैं तो कभी कभार गाती हूँ।
1: आपके अंदर ये टैलेंट भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना आरजे वंशिका जी।
0: और यहाँ फीडबैक आ चुकी है मेरे पास। आरिफ सिंह जी लिखते हैं, वंशिका जी बहुत ही प्यारा गाना सुनवाया, तहे दिल से शुक्रिया अदा। और मोहन निवार जी लिखते हैं, बहुत बहुत सुपर हिट पसंद लगी, कार्यक्रम बहुत प्यारा चल रहा है। और फरमाइश आप भेज सकते हैं। खुशबू कुमारी जी लिखती हैं, वाणी में मिठास हो तो पहचान बन जाती है, जान में गहराई हो तो मिसाल बन जाती है, वंशिका दीदी की दिल का शहबाज दिलों को सुकून देती है, आदरणीय आज प्रमा सर जी की सीख हर मंजिल आसान कर जाती है, ऐसे गुरु और प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व को दिल से मेरा शत शत प्रणाम और
1: बहुत
0: सम्मान।
1: बहुत शुक्रिया खुशबू बेटा, मैं काफी इम्प्रेस हो गया बेटा आपसे, आपकी बातों से, आपकी शायरी का तो मैं दीवाना हो गया हूँ। बहुत ही प्यारी आपने शायरी लिख के भेजी है वंशिका जी के लिए और मेरे लिए। बहुत बहुत बेटा धन्यवाद आपका, और आप यूं ही आगे बढ़ती रहें और जिंदगी में सफल हो जाएंगी जरूर, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ में, आप जरूर सफल होंगी। अब बात चल रही थी महंगाई
0: और
1: की,
0: ये भी लिखती हैं कि वंशिका दीदी आपकी आवाज बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच खुशबू कुमारी जी आपके इस प्यारे से वैल्यूएबल फीडबैक के लिए, आपकी आवाज भी काफी अच्छी है, बहुत दिनों से सुनने को नहीं मिली वैसे। और क्या कह रहे थे कुमार जी आप?
1: बात कर रहा था महंगाई की, तो सिनेमा हम देखते होते थे, आपको बताया मैंने, और टिकटों का जो रेट था वो भी मैंने अभी आपको बताया। तो उस टाइम में इतने पैसे भी हमारे पास बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे, हमारी पॉकेट में से बचाकर 60 पैसे, 50 पैसे या 70 पैसे की जो भी टिकट होती थी वो हमें काफी महंगी लगा करती। तो दोस्तों आप भी बताइएगा आपके टाइम में क्या रेट होता था टिकटों का। और बाद में सबसे पहले हमारे जब टीवी लॉन्च हुआ, टीवी ब्लैक एंड व्हाइट होते थे हमारे टाइम में, सबसे पहले रेडियो होते थे, रेडियो के बाद जब टीवी आया, ये बात है 1900 शायद 78 की, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लिया था हमने, और उस टीवी को देखने के लिए मोहल्ले के आसपास के लोग भी आ जाए, बच्चे आ जाते थे, लोग आ जाते थे, क्योंकि टीवी उनके लिए भी एक आश्चर्य चकित करने वाला डिवाइस होता था।
0: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस समय तो
1: तो
0: नई थी ना ये चीज। अब तो बच्चे फोन से भी खुश नहीं हो पाते हैं, उस
1: हाँ
0: समय
1: नहीं,
0: टीवी भी लोगों को नई चीज
1: और
0: लगता
1: टीवी
0: था।
1: देखने के लिए बड़ा हजूम होता था, और ये जो सिर्फ एक चैनल चलता होता था जिस पर उस समय
0: डीडी
1: सिर्फ
0: न्यूज,
1: दूरदर्शन, तो
0: दूरदर्शन,
1: ये DD1 होता था जी, ये DD2 भी चला था लेकिन बाद में आया था। ये DD1 पे एक फिल्म आती थी सिर्फ हफ्ते में एक बार संडे वाले दिन, और बहुत ही खूबसूरत, प्यारी और
0: जैसे
1: पुराने
0: हमारा
1: फिल्म
0: हफ्ते में
1: होती
0: एक बार शो आता
1: थी।
0: है।
1: तो वो फिल्म भी बड़े बड़े दिल से सुना करता था, बहुत ही अच्छी पुरानी फिल्म होती थी
0: और
1: वो।
0: यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं चारू गुप्ता जी। चारू गुप्ता जी आपका भी वेलकम है, स्वागत है आपका। और खुशबू कुमार जी जी बिल्कुल अच्छा जी, पढ़ने में वहाँ मेरे से गलती हो गई थी। जैसे कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पे गाने बहुत सारे आ चुके हैं, तो अगला गाना सुनवा रही हूँ आनंद जी का। आनंद जी हैं यूट्यूब चैनल के यूट्यूबर्स हैं, एनालिटिकल आनंद जी। तो चलिए आपका गाना सुनवा
1: तो
0: दिया है।
1: आनंद जी मैं ये आपसे प्लीज ये कहना चाहूंगा, आप अपने चैनल का लिंक जरूर भेजिएगा, क्योंकि मुझे आपका चैनल नहीं मिला वर्षिका जी, कल आपको
0: जी
1: बताया था मैंने।
0: आप आनंद जी, आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है
1: मैं
0: 8404842322 पे आप मुझे अपने चैनल का लिंक भेज दीजिएगा, तो मैं प्रमाण सर्जरी का एक्सप्लोर करवाऊंगी आपका चैनल, अगर आप शो को सुन रहे हैं तो प्लीज, और आपकी
1: तो
0: पसंद के गाने को
1: वर्षिका जी
0: प्ले
1: पता
0: कर
1: क्या
0: दूंगी।
1: बात है, मैं भी देखना चाहता हूँ हमारे जो आनंद जी हैं यूट्यूबर, किस तरह की वीडियो बनाते हैं और इनका वीडियो बनाने का स्टाइल क्या होता है, कैसे उसे एडिट करते हैं, कैसे बनाते हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: प्लीज आनंद जी अपना लिंक जरूर भेजिएगा वंशिका जी के नंबर पर। तो
0: तो चलिए गाना प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए आनंद जी।
1: किसका गाना है?
0: आनंद जी का
1: अच्छा
0: बिल्कुल।
1: आनंद जी का गाना है ये,
0: तो
1: सुनाइए सुनाइए सुनाइए,
0: चलिए
1: जरूर
0: सुनवा दिया
1: सुनाइए।
0: है, एंजॉय कीजिए, तेरे लिए जानम तेरे लिए, ये वाला गाना सुनना चाहिए, एंजॉय कीजिए।

0: ही प्यारा गाना सुनने को मिला एनालिटिकल आनंद जी, आपकी पसंद बहुत बहुत बहुत ही प्यारी लगी, कैसी
1: काफी
0: लगी आपको?
1: खूबसूरत गाना था जी आनंद जी आपका, और मुझे भी अच्छा लगा ये। और वंशिका जी, अब बातें चल रही हैं पुरानी है, और पुराने दौर की बातें चल रही हैं, तो उसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। देखिए, हमें जो पुराना एक दौर था हमारे टाइम का, जो बात कर रहा हूँ मैं 1960 की, 62-63 की, और उस टाइम आजकल के जो बच्चे हैं हर एक चीज पसंद की उनके माँ बाप लेके देते हैं, जैसे जीन है, टॉप है, जो भी है, जिस तरह की बातें हैं। हमारे टाइम में देखिए जी, मैं हम जब स्कूल जाते थे तो हमें तो ये पैंट पहनने में शर्म आती थी, मैं आपको सही बताऊं।
0: क्यों है, मतलब ऐसे जाने को, ऐसे
1: क्योंकि
0: जाने को
1: हमारे टाइम
0: मतलब
1: में ऐसा होता था अनुष्का जी,
0: जी,
1: जो बच्चा पैंट पहन के आता था उसके स्कूल में बहुत उसे
0: मजाक उड़ाते थे,
1: कहते बुल्ली कहते हैं या मजाक उड़ाते
0: हैं, हाँ, बुरी करा करते थे।
1: हाँ जी, तो हम जिस स्कूल में पढ़ा करते थे उस स्कूल में ऐसे ही कुछ होता था, तो इसलिए
0: क्या नाम था इसकी, आपके स्कूल का?
1: बहुत नाम तो बहुत वैश स्कूल था
0: हमारा। अच्छा जी,
1: तो और
0: वैश स्कूल जी, मैं भी जानती हूँ इस स्कूल को, क्योंकि जी अच्छा जी, उसी स्कूल की बात कर रहे हैं आप जहाँ मेरा मतलब कॉम्पिटिशन में नाम आया था, और मेरे कॉम्पिटिशन के स्कूल्स में से एक था।
1: तो देखिए, हम एक तो पैंट नहीं पहनते थे, पजामा पहन के जाते थे, और आपको यकीन नहीं होगा हमने
0: चप्पलों में
1: 10वीं क्लास तक सिर्फ पजामा ही पहना, पजामा और कमीज पहन के जाते थे।
0: मतलब उस समय महंगाई महंगाई की बात में से रिलेटेड है या
1: महंगाई की बात? कपड़ा भी सस्ता होता था मैडम अनुष्का जी, और कपड़े का रेट भी कुछ नहीं होता था, यानी अगर हम एक पजामा सिलवाते थे वो भी 20-30 पैसे में सिल जाता था। और बात आ रही पैंट की, तो पैंट की मैंने आपको सिलाई बताई थी कि उसकी जो सिलाई होती थी 2 नए पैसे होती थी, और जो शर्ट होती थी उसकी सिलाई होती थी 1 नया पैसा। अब और जो खाने पीने की जो वस्तुएं होती थी, जैसे दूध हम पीते हैं रात को, उसका रेट भी कुछ नहीं था, वो भी 50 पैसे का 1 किलो था, 50 नए पैसे का 1 किलो। एक शेर होता था, किलो तो बाद में चले हैं
0: जी जी जी।
1: तो ये चीजें थी। तो अभी तक किसी भी मेरे प्यारे श्रोता ने या मेरे दोस्त ने कुछ अपना पुरानी बातें सरोजीत सेठी जी को छोड़कर किसी ने भी नहीं शेयर किए, तो प्लीज़ दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है, कुछ ना कुछ फीडबैक दीजिए, अपनी आवाज़ सुनिए, हमें भी सुनाइए, और अच्छी अपनी बातें हमें भी बताइए, आप भी लोगों से भी शेयर कीजिए कि क्या
0: क्या फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास।
1: और एक बात और मैं कहना चाहूँगा अनुष्का जी, हमारे जो उम्र के जो श्रोता है, जैसे वो हमारे करते हैं सर्वेश भगत
0: जी, आज सर्वेश भगत जी मुझे दिख नहीं रहे, कहाँ हैं पता नहीं।
1: सर्वेश भगत जी, मुझे भी उनके बहुत तलाश है,
0: बहुत दिनों से, आजकल थोड़े कम आ रहे हैं।
1: अच्छा लगती है उनकी फीडबैक, और बहुत ही अच्छे और मेरी उम्र के हैं शायद।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपके आसपास के ही हैं, और आजकल मुझे नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे सर्वेश जी। अगर आप सुन रहे हैं शो को तो प्लीज जुड़िए। और मोहन निवास जी लिखते हैं फरमाइश कैसे भेजनी है, तो फरमाइश आपको वैसे ही भेजनी है, अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप से भेज दीजिए, नहीं तो आप सॉन्ग रिक्वेस्ट के मेथड से भेजेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे सर्वजीत सेठी जी का एक और फीडबैक आ चुका है, वो भी सुन लेते हैं।
2: वंशिका मैम, अरमान सर जी,
0: जी
2: आप दोनों को नमस्ते।
0: नमस्ते जी, नमस्ते।
2: वंशिका मैम, आप गीतों के साथ गुनगुना रही हैं, अच्छा लग रहा है।
0: थैंक यू सो मच।
2: फाजिलका में धूप निकली हुई है, मौसम गर्म है
0: जी जी,
2: और 39 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, और परसों रात्रि में आंधी आई थी थोड़ी देर 10 मिनट, उसके बाद सब कुछ बंद हो गया, बादल आते हैं चले जाते हैं।
0: अच्छा।
2: बारिश की कोई चांस नहीं है यहाँ पर फाजिलका में
0: जी, हमारी तरफ भी थोड़ी सी बरसात हो गई, ऐसे बादल भागे है ना स्क्रीन पकड़ के।
1: वंशिका जी, एक बात हो रहा है,
2: तो सुनते हैं रेडियो गाना जो बना दे सबको दीवाना, मैं सरवजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
1: सरवजीत सेठी जी, आपका फीडबैक बहुत अच्छा लगा मुझे, और साथ में ये भी कहना चाहूंगा, ठीक है आप भी पंजाब में रहते हैं, हम भी पंजाब में रहते हैं, तो पंजाब में मौसम में भी काफी फर्क है, आपका जो फाजिलका शायद यहाँ से दूर पड़ता है तो वहाँ और यहाँ में है। आज तो हमारे यहाँ तो कल भी बारिश थी और आज भी बारिश रही है सुबह से, काफी अच्छा सुहाना मौसम और खूबसूरत मौसम है आजकल।
0: खुशबू कुमारी जी लिखती हैं, दीदी आपके यहाँ मौसम कैसा है? हमारे यहाँ बारिश हो गई है जी, अभी तो हमारी तरफ बहुत तगड़ी वाली धूप निकल रही है, सुबह थोड़ा थोड़ा बारिश का मौसम था और कल भी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, बट अभी तो ऐसी धूप निकल रही है क्या कहें, अगर हम खुद बाहर चले जाए पापड़ बन गया हमारा धूप के चलते।
1: नहीं, खुशबू बेटा, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अपनी जगह में मौसम के अलग अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर सुबह रात से बारिश थी और कम से कम 11-12 बजे तक होती रही है। क्यों अनुष्का जी,
0: बिल्कुल सही बात है, रात को बारिश हुई है?
1: रात को थी बारिश, 2-3 बजे के आसपास से शुरू हो गई थी।
0: अच्छा, ये मुझे जानकारी अभी पता लग रही है।
1: आप सो
0: हम घोड़े
1: रही थी,
0: बेच के सो
1: आप
0: रहे
1: घोड़े
0: थे
1: क्या, घोड़ी क्या, पूरा अस्तबल बेच के
0: तबेला
1: सो रहे थे आप लोग।
0: जी। अजय भगत जी लिखते हैं, सभी दोस्तों को ऐसे अनुरोध है जी, आज वैसे कोई से भी गाना भेज सकते हैं ना। और मुन्ना जी जुड़ चुके हैं यहाँ पे, कहते हैं गाना कहाँ भेज रहे हैं जी, गाना आप सॉन्ग लिस्ट में चाहें तो वहां से भेज दीजिए, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8404841238 पे ही भेज सकते हैं। अगली
1: ऐसे
0: पसंद
1: अच्छा
0: सुनवा रही हूँ यहाँ पे एमडी फैज आलम जी की, मुझे रब जो कहे, फिल्म का नाम है उस्ताद। सुनवा दी आपकी पसंद के गीत को, एंजॉय
1: वाह वाह, एमडी
0: कीजिए।
1: क्या नाम है इनका,
0: एमडी फैज आलम जी
1: एमडी फैज आलम जी, बहुत ही खूबसूरत गाना चुन के लाते हैं आप। मैंने आपके पहले भी गाने सुने हैं,
0: एंजॉय
1: बहुत
0: कीजिए।
1: ही प्यारे और बड़े ही खूबसूरत गाने होते हैं, दिल को छूते हैं। तो ये गाना भी आपका काफी खूबसूरत है जो आप सुन के चुन के लाए हैं अभी,
0: एंजॉय कीजिए
1: तो एंजॉय कीजिए और सुनिए आप और आपके सभी
0: सभी श्रोता।
1: दोस्त और सभी श्रोता को सुनाइए आप।

0: कर जन्नत अता।
1: बहुत ही प्यारी पसंद सुनने को मिली है एमटी फैज आलम जी, और यहाँ फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास। निकला जी लिखते हैं वेरी गुड आफ्टरनून आज वंशिका जी, आज प्रमाण जी, जी हमने रेडियो स्टेशन चेंज नहीं करते ये कह रहे कि हम गॉल्फ खेलने गए आपने रेडियो स्टेशन बदल दिया।
2: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है निकला सी, ये रेडियो गाना और रेडियो हॉटस्टार दोनों एक ही है, पार्ट समझ लीजिए, एक पार्ट रेडियो गाना है एक पार्ट रेडियो हॉटस्टार। तो आज हम ये दूसरे पार्ट यानी रेडियो गाना पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हर संडे को इसी पर क्या करेंगे आप सुनिएगा जरूर।
1: और रामू तिवारी लिखते हैं वाह क्या गाना है, मजेदार गाना सुनने को मिला।
2: रामू तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप पहली बार आए हैं मेरे ख्याल में, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ।
1: जी बिल्कुल। ओके जी, मोहन वाजी आपकी फरमाइश मेरे पास पहुंच चुकी है। और खुशबू जी क्या लिखती है, अगर ये बात बिल्कुल सही बात कही, और ये लिखती है कि वंशिका जी अगर बारिश आपकी तरफ बारिश भेज देते हैं हम। जी बिल्कुल भेज दीजिए। और आप सभी को ये बताना चाहूंगी स्पेशल रिक्वेस्ट का मेथड जो कि हमारे रेडियो हॉटस्टार की एप्लीकेशन में है, जिससे आप सभी अपने बर्थडे पे या अपने किसी जानने वाले के बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे या अपनी खुद की एनिवर्सरी पे स्पेशल अपना शो डेडिकेट करवा सकते हैं रेडियो हॉटस्टार पे। आपके लिए स्पेशल शो आपका डेडिकेट करके वहाँ प्ले होगा। आप जो उसमें गाने अपनी प्लेलिस्ट भेजेंगे हमें 20 या 30 गानों की, वो आपकी लगातार प्ले होगी। साथ में आपको वह शो के बीच में विश भी किया जाएगा। ये ऐसे आप स्पेशल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, बस स्पेशल रिक्वेस्ट भेजने के कुछ कुछ नियम रहते हैं। जो आप स्पेशल रिक्वेस्ट भेजें, जैसे कि आपका जन्मदिन 14 अगस्त को है एग्जांपल, तो आपको उसके 3 दिन पहले फरमाइश भेजनी होगी। और अगर आप एक बार 3 दिन पहले फरमाइश भेजनी होगी, और अगर आप एक बार फरमाइश भेज देते हैं और गलत हो जाती है तो उसके बाद दूसरी बार भेज सकते हैं, मतलब मैक्सिममली 3 बार भेज सकते हैं अगर गलती भी होती है तो। और इसके साथ साथ आप अपनी विशेज भी कर सकते हैं, और वो आपको 3 दिन पहले ही भेजनी होगी। अगर आप 3 दिन पहले भेजेंगे, जब भी आपके अप्रूवल होगी वहाँ पे आपका गाना या प्लेलिस्ट जो भी होगा शो आपका प्ले होगा। ये है स्पेशल रिक्वेस्ट का सिस्टम, और ये आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रेडियो हॉटस्टार की एप्लीकेशन में। रेडियो हॉटस्टार की एप्लीकेशन के नीचे का जो फीचर्स होते हैं उसमें मोर में जाके

0: आपको स्पेशल रिक्वेस्ट का फीचर मिलेगा, जहां लॉग इन करने के बाद अपना नाम और जिनका बर्थडे है उनका नाम, उनका आपके क्या रिश्ता है, आपका नंबर वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप वहां पे डाल के गाने फिलअप करके जो सुनना चाहते हैं आप वहां पे भेज सकते हैं। और निकला जी लिखते हैं, मैं नॉर्थ स्विट्जरलैंड में था, इटली से थोड़ा सा पास ही था, और मैं आपके शो को बहुत मिस कर रहा था, सभी श्रोताओं को थैंक यू सो मच, हम भी आपको बहुत मिस कर रहे थे निकला जी। और मुन्ना जी लिखते हैं नमस्कार सेकंड आरजे जी, यानी कि आपके परमार सर जी, शो अच्छा चल रहा
1: बहुत
0: है।
1: बहुत शुक्रिया मुन्ना जी, आपने मुझे कहा और सेकंड आरजे कहा, लेकिन प्लीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मेरा नाम आरजे परमार है मुन्ना जी, और शायद आप मेरे प्रोग्राम में आज पहली बार जुड़ रहे हैं तभी आपको पता नहीं है। तो वैसे जी मैं आपको बताऊं, मैं बात चल रही थी
0: और
1: महंगाई
0: एमडी
1: की।
0: फैज आलम जी का एक बार फीडबैक सुन लेते हैं, फिर बातचीत करते हैं।
2: वंशिका जी और आरजे परमार जी, आप दोनों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा गाना बजा दिए, दिल खुश हो गया। एमडी फैज मोहिउद्दीन नगर।
1: एमडी फैज आलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया, और गाना तो हमने आपका था ही बेहद खूबसूरत और प्यारा, तो हमने तो चलाना ही था, तो बहुत बहुत शुक्रिया एमडी फैज आलम जी। और बात चल रही थी महंगाई की और खाने पीने की चीजों की, तो वर्षा जी मैं आपको बताऊँ अपने टाइम की बातें, आपको तो चलो हम पॉकेट मनी के हिसाब से 100-200 रुपये भी देते थे, लेकिन
0: बिल्कुल
1: हमारे टाइम में हमारे जो पापा जी थे, पता
0: दो
1: कितने,
0: रुपए
1: 10 नए पैसे हमें पॉकेट दे मिलते थे। हम जब स्कूल जाते थे तो रास्ते में एक कुल्फी वाला खड़ा करता होता था, कुल्फी मैं आपको बताऊंगा आपकी
0: कुल्फी
1: भाषा
0: खाते
1: में
0: थे हम भी,
1: आइसक्रीम कहते हैं,
0: हमने भी कुल्फी
1: आइसक्रीम
0: खाई है, वो
1: सुने,
0: दूध
1: हाँ
0: वाली होती है और वो लोहे के खाचों के बीच में लगी होती है, नमक लगा के, हमने भी खाई है।
1: वही कुल्फी, वो पुराने टाइम से चलती थी, और उस टाइम में एक उसमें उन्होंने सिस्टम ऐसा रखा हुआ था उस रेडी के अंदर, उसके अंदर एक मैं ऐसी मशीन लगा रखी थी जिसे हम जो कुल्फी लेते थे उसे जैसे 5 नए पैसे कुल्फी आती थी, 5 नए पैसे दे दिए, तो अगर उसमें मशीन को दबाते थे एक नंबर निकला था एक कुल्फी, 2 नंबर आते दे,
0: उस
1: दो
0: समय
1: तो
0: भी कुल्फी
1: कुल्फी
0: ऐसा
1: आती,
0: होता है, मशीन वाला सिस्टम।
1: 3 में आते 3 5। तो एक बार मैंने 5 पैसे डाले और 5 पैसे डालते ही उसमें कुल्फी आई, 5 5 निकल आई, लॉटरी सिस्टम में 5 कुल्फी। तो
0: बहुत अच्छी बात
1: अब
0: है।
1: 5 खाने मेरे लिए मुश्किल हो गई, तो मेरे जो यार दोस्त और होते थे, जो हमारे डेली दोस्त
0: वैसे
1: मित्र
0: भी
1: होते
0: आइसक्रीम
1: थे,
0: ज्यादा खाई नहीं जाती, वो सर में चुभती
1: नहीं
0: है।
1: नहीं नहीं वो काफी दूध वाली थी, अच्छी आइसक्रीम थी,
0: मेरे
1: मैंने
0: मेरे
1: कुल्फी
0: मे,
1: भी।
0: मे, मेरे में ये दिक्कत है, आप सभी भी बताइएगा कि आप सभी के साथ भी ऐसा होता है, आइसक्रीम ज्यादा आइसक्रीम खाने के बाद सर के ऊपरी ऊपरी हिस्से में दर्द होने लग जाता है, मेरे होता है ऐसा।
1: हो जाता है कि मेरा सा, तो
0: और खुशबू
1: बात तो
0: कुमार,
1: चल रही थी उस कुल्फी की, कुल्फी खाने के बाद फिर भी मेरे पास 5 नए पैसे बच जाते थे उस खर्ची में से।
0: बिल्कुल
1: अब 5 नए पैसे में से मैं क्या करता था, और आपको हंसी भी आएगी, और दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा वो चीजें बहुत ही खूबसूरत थी।
0: और यहाँ पे जैसे
1: आपने गुड़ की खाए बनी हुई पापड़ी खाई होगी, जिससे हमारे टाइम में मुरुंडा कहते हैं, मुरुंडा, तो वो एक पट्टी होती थी गोल सी, उसे आजकल के टाइम में गज्जक कहते हैं, तो वो 5 1 नए पैसे की आती थी, 1 नए पैसा उस पर खर्च दिया, 1 नए पैसे गोलगप्पे खा लिए 10 हैं, और 1 नए पैसे का समोसा ले लिए 2, 1 नए पैसे के 2 समोसे आते थे वंशिका जी उस टाइम, और बढ़िया चाट वाट डाल के, बढ़िया छोले वोले डाल के मिलते थे, तो काफी अच्छे लगते थे हमें। तो हमारे दिनचर्या होती थी ये, 10 पैसे जो होते थे वो जब तक शाम तक खर्च नहीं होते जाते थे तब तक हम उसको खर्चते रहते थे, और 10 पैसे हमारे ऐसे थे जैसे आजकल के टाइम में 500 रुपये
0: बिल्कुल।
1: ऐसा कुछ होता
0: और
1: था।
0: यहाँ मेरे पास एमडी नाजिम जी जुड़ चुके हैं, कहते हैं जबरदस्त प्रोग्राम, जबरदस्त जानकारी मिल रही है। और खुशबू कुमार जी लिखते थैंक यू सो मच दीदी, आपने हमारे को इन्फॉर्मेशन दी है, और जो इन्फॉर्मेशन परमार जी दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छी है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू बेटा।
0: अगले गाने की तरफ नजर डालते हैं, तो गाना सुनवा रही हूँ विष्णु चंद्र जी की पसंद, ओ राधा तेरे बिना श्याम अधूरा है।
1: वाह वाह वाह, विष्णु चंद्र जी क्या गाना लेके आए हैं आप, कमाल कर दिया आपने तो, और ये गाना मेरा भी काफी फेवरेट गाना है, और राधा तेरे बिना शाम है आधा।
0: तेरे बिना तेरा शाम अधूरा है, प्ले कर दिया।

0: बहुत ही प्यारी फरमाइश सुनने को मिली है विष्णु चंद्र जी आपकी, लाजवाब गाना लेके आए हैं और इसके साथ साथ
1: लाजवाब नहीं इसका जी महालाजवाब।
0: अच्छा जी,
1: विष्णु जी की जो ये पसंद है बहुत ही खूबसूरत प्यारी पसंद है, ये गाना मेरा भी काफी फेवरेट है और इस गाने की जो लय है जो इसका सुर है और जो ताल है वो भी बहुत ही प्यारी है, इसलिए मुझे ये गाना बहुत ज्यादा पसंद है।
0: और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी आज है हमारे प्यारे से श्रोता रवि महादेव जी का जन्मदिन, तो उनको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं यहाँ पे गजानन सलुकार जी, उमरा डाली तहसील खामगांव जिला बुलढाणा से लिखते हैं कि रवि महादेव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, तुम जी हजारों साल और दिन हो 50,000। जी बिल्कुल रवि महादेव जी को मैं भी बहुत बधाइयां देना चाहूंगी। रवि महादेव जी अगर आप शो को सुन रहे हैं तो कंग्रेचुलेशन आपको आज की आपके जन्मदिन पे बहुत बहुत बहुत बहुत बधाइयां, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी तरफ से भी, आज ब्रह्मा जी की तरफ से भी, आज अमन जी की तरफ से, हमारी पूरी रेडियो की टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बधाइयां। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी जिंदगी में खुशहाली बिताते रहिए और आपको ये साल भी
1: रवि
0: खुशी से बनाए।
1: ये देखो मेरे से इनकी कभी बात नहीं पसंद नहीं है ना कि मेरे प्रोग्राम में आए ये, लेकिन मैं इनकी आवाज का कायल हूँ, बहुत ही खूबसूरत प्यारी आवाज है और इनकी आवाज में जो जब ये गाना गाते हैं तो इनमें अमन जी की झलक आती है, अमन जी की आवाज से कुछ कुछ मिलती जुलती आवाज है इनकी रवि महोदय जी की, और बहुत बहुत

0: मुझ में जिंदा है वो फिल्म का नाम है एक विवाह ऐसा भी। शान और श्रेया घोषाल जी की आवाज में वंशिका जी आपको, आदरणीय प्रमाण सर जी को, सभी श्रोताओं को डेडिकेट है।
1: वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड खुशबू कुमारी जी, इतना अच्छा गाना सुनाने के लिए
0: एंजॉय।
1: और सुनाइए वंशिका जी खुशबू बेटा का गाना।

0: बहुत ही प्यारी पसंद सुनने को मिली है यहाँ पे खुशबू कुमारी जी। गाना बहुत ही प्यारा लेके आई हैं आप। और कुंता मिनी जी आंश वंशिका जी हम भी जुड़ चुके हैं आपको और प्रमा सर जी को गुड इवनिंग नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार कुंता बेनी जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ी इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हैं और आपका धन्यवाद देते हैं कुंता बेनी जी।
0: एमडी फैजल जी कहते हैं सुपर ब्यूटीफुल पसंद सुनने को मिली है और आरिफ सिद्धि जी का फीडबैक है।
2: फरमाइश आप चला रहे हो और हमें सुना रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और जो बीच बीच में महंगाई की बातें हो रही है वो भी आप हमारे से साथ शेयर कर रहे हो और बहुत ही लाजवाब प्रोग्राम लग रहा है।

0: शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी, गुजरात गांधीनगर से।
1: देखिए आनंद जी, आपका जो फीडबैक है बड़ा ही वैल्यूएबल है और बहुत ही खूबसूरत फीडबैक दिया आपने, तो आप भी कुछ शेयर कीजिए ना हमारे साथ, कोई फीडबैक आप भी दीजिए, कोई महंगाई से मिलता जुलता
2: और बात चल रही है। और यहाँ पे फीडबैक है मेरे पास, वो पढ़ देती हूँ। पहले बाबूलाल जी लिखते हैं, खुशबू जी की पसंद बहुत ही प्यारी लगी है। निकला जी लिखते हैं, आज तो नए नए गाने सुनने को मिल रहे हैं, धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की, थैंक यू सो मच। और जी एक्चुअली ऐसा है कि आज के शो में फरमाइशें, एक शो में एक ही फरमाइश प्ले होगी एनालिटिकल आनंद जी, और अगर आप अमन जी के शो में फरमाइश भेजना चाहते हैं तो जैसे ही हमारा शो एंड होगा उसके बाद भेज पाएंगे आप। सरफराज जी लिखते हैं, हैप्पी बर्थडे अभी महादेव जी, आप जियो हजारों साल और दिन हो 50,000। बिल्कुल। और चलिए यहाँ पे मोहन निवास जी लिखते हैं, सुपर हिट वाले गाने सुनने को मिल रहे हैं, एक से बढ़कर एक, और आप दोनों की आवाज बड़ी अच्छी आ रही है हमारे तरफ। थैंक यू सो मच जी मोहन निवास जी, प्यारे से फीडबैक के लिए।
1: मोहन निवास जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके ने इतना अच्छा फीडबैक दिया और सभी श्रोताओं ने सुना भी, तो मैं भी सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा, प्लीज आप लोग भी एक एक ही फीडबैक दे दीजिए, ज्यादा नहीं तो एक ही फीडबैक दीजिए महंगाई के बारे में, कुछ
2: अपना कोई सा भी किस्सा, कोई सी भी कहानी, कोई भी चीज आपके साथ घटित हुई हो महंगाई से रिलेटेड, कभी आप सामान लेने गए, कुछ भी चीज अगर हुई हो और आपको लगे कि वो हमारे साथ आपको साझा करनी चाहिए, बाकी लोगों को सुन के अच्छा लगेगा, तो आप साझा कर सकते हैं, कोई भी झिझक की बात इसमें।
1: चलो मनीषा जी, एक बार फिर पुराने टाइम में चलते हैं और पुराने समय की एक और बात बताता हूँ मैं आपको
2: जी।
1: तो सुनिए, देखिए ऐसा होता है उस टाइम में सभी के पास कन्विंस नहीं हुआ करती थी, कन्विंस यानी आने जाने का साधन नहीं हुआ करता था, तो हम भी शुरू शुरू में तो पैदल ही स्कूल जाया करते थे, फिर पापा से जिद करके हमने साइकिल ले ली और साइकिल लेके जाते थे, और उस टाइम साइकिल चलाने में मज़ा भी बहुत आता था वर्षिका जी, क्योंकि अगर साइकिल जब एक बार सीखता है बच्चा तो शुरू शुरू में तो उसे मुश्किल होती है साइकिल सीखने में, लेकिन जब साइकिल सीख जाता था उसका दिल बार बार चलाने को करता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो,
2: सही बात की।
1: और इसी बात के को लेकर हमारे पापा जी ने मुझे कई बार थप्पड़ भी मारे कि 24 घंटे साइकिल चलाता रहता है और अच्छा पढ़ाई करता नहीं है, मैं ये वो बातें कई सुनाई, तो बात हुई इसकी, उसके बाद मैंने साइकिल चलानी बिल्कुल बंद कर दी पापा जी की डांट खाने के बाद। और उसके बाद जब मैं 10वीं पास की मैट्रिक पास की तो पापा जी ने को पता लगा कि बेटी ने मैट्रिक की है, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले मोटरसाइकिल दिलवाई जी, रॉयल एनफील्ड, जिसे आप आजकल की भाषा में बुलेट कहते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा वो बात है 69 की, और 69 के अंदर जो बुलेट के जो प्राइसेस थे आपको यकीन नहीं होगा।
2: 69 में आप कितने साल के हो गए थे, मतलब बुलेट चला 18 साल के हो गए थे कंप्लीट आप?
1: 10वीं पास करी थी, उस टाइम में लाइसेंस वाइज कम ही देखते होते थे, इतनी पुलिस की चेकिंग भी नहीं होती थी जी, तो अब मैं कॉलेज में साइकिल तो चला ही रही थी, बुलेट चलाना को मुश्किल था, बात हो रही थी महंगाई की, तो उस टाइम ये जो बुलेट मोटरसाइकिल यानी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल है इसका रेट पता क्या होता था उस टाइम, ली थी सिर्फ 1800 रुपये में नई मोटरसाइकिल बुलेट 1969 के अंदर, और रेट तो अब तो बुलेट के 2-2.5 लाख के आसपास हो चुके हैं इसके रॉयल एनफील्ड के, तो अब महंगाई है। उस टाइम में ये जो थी, उस टाइम मेरे काफ़ी मित्र भी बन गए थे बुलेट के होते हुए कॉलेज में, जब मैं कॉलेज में गया फर्स्ट टाइम मैट्रिक करने के बाद, तो मेरे काफ़ी मित्र भी बने, तो पापा जी को ये भी पसंद नहीं था कि 24 घंटे दोस्तों के साथ घूमता रहता है मोटरसाइकिल पे, तो
2: मतलब ना तो उल्टी लीजा ना तो सीधी लीजा, हर चीज में मतलब थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स
1: तो ये बातें होते हुए दोस्तों ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरी मोटरसाइकिल बिल्कुल चलानी कम कर दी, क्योंकि मेरे अंदर एक थोड़ी सी गंदी आदत थी, मैं दोस्तों का बड़ा दीवान था, दोस्तों की कदर भी बहुत ज्यादा किया करता था, और उसी कदर के करते हुए मेरे दोस्त मुझसे अगर मोटरसाइकिल मांगते तो मैं दे भी देता था, तो एक बार एक मेरा दोस्त मोटरसाइकिल मांग के ले गया था और वो 2 दिन तक आया नहीं, वो अपने गांव में आओ पता नहीं कहाँ चला गया, तो पापा जी को बहुत गुस्सा आया, और उसके बाद जब वो मोटरसाइकिल वापस दे के गया 2 दिन के बाद, तो पापा जी ने वो मोटरसाइकिल भी मुझसे छीन ली और कहने लगे भाई तू अपनी पढ़ाई में ध्यान कर, जब तू ग्रेजुएट हो जाएगा यानी
2: मतलब 12वीं पास कर लेंगे उसके बाद आपको साइकिल या मोटरसाइकिल कुछ भी लेके दी जाएगी।
1: उसके बाद फिर मैं पैदल आ गया जी, पैदल आ गया वही मैं, लेकिन उस टाइम एक थोड़ी सी अच्छी बात ये हो गई थी, पहले मुझे पॉकेट मनी 10 नए पैसे मिलती थी, उसके बाद मुझे 50 नए पैसे मिलने लग गए थे, और 50 पैसे भी खत्म,
2: यानी कि प्रमोशन हो गया था आपका।
1: हाँ जी।
2: और इसी प्रमोशन की बात पे मैं यहाँ पे गाना लेके आई हूँ, जैसे कि आपसे परमा जी ने बताया कि हम पैदल घुमा करते थे साइकिल और मोटरसाइकिल की बात, मतलब कई बार पापा मना करते थे, कुछ भी चीजें थी, तो उसी बात यानी कि सादगी की जिंदगी जी रहे थे, उस पर गाना भेजा है यहाँ पे हमारे पास खान अमीना जी, यानी कि अमीना खान जी ने, सादगी तो हमारी जरा देखिए, काबुल बुखारी जी की आवाज में है, सभी श्रोताओं को डेडिकेट करती हैं। तो चलिए सुनवा दिया आपकी
1: और
2: पसंदीदगी से।
1: रुके बचकर जी, खान अमीना जी का मैं भी तहे दिल से शुक्रगुजार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और शुक्रगुजार भी हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम से जुड़ी हुई है, और इतना खूबसूरत, तो इतना प्यारा और इतना अच्छा गाना उन्होंने भेजा है, जो मुझे
2: जी
1: भी
2: बिल्कुल, मैं
1: पसंद है।
2: पहली
1: और
2: बार सुनने
1: मैंने,
2: वाली हूँ।
1: आप पहली बार सुनी, मैंने 2-3 बार ये गाना सुना है, काफी
2: अच्छा
1: अच्छा
2: सुना
1: गाना है।
2: आपने,
1: हाँ जी, हाँ जी, तो
2: तो चलिए एंजॉय कीजिए।
1: सुनिए अमीना जी की पसंद का गाना, मुझे तो पसंद है ही, और हमारे श्रोताओं को, मेरे दोस्तों को भी ये गाना जरूर पसंद आएगा।

0: बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारी कवाली टाइप का सॉन्ग सुनवाया आपने अमीना खान जी, दिल से शुक्रिया आपको।
1: वाह वाह वाह वाह अमीना खान जी, कमाल कर दिया आपने, मेरे पर उसको बहुत ही खूबसूरत लगा ये गाना और बहुत ही प्यारा लगा इसकी वर्णिंग, तो बहुत बहुत शुक्रिया अमीना खान जी, आपने इतना खूबसूरत गाना भेजा सुनने के लिए। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि एक गाना मैं अभी अपनी पसंद का सुनाऊं, तो वर्षिका जी की सुना दो अगर आप कहें तो।
0: फीडबैक है उससे पहले बाबूलाल जी लिखते हैं अमीना जी की पसंद बहुत ही प्यारी है। खुशबू कुमारी जी ने कुछ कुछ चीजें लिख के भेजी हैं, मैं पढ़ के बताती हूँ। हर लफ्ज में मिठास, हर आवाज में प्यार, वर्षिका दीदी जी आप हैं दिलों की बहार, मुस्कुराहट बांटना आपकी पहचान है, हर सुनने वाले के चेहरे पे आपकी मुस्कान है, अंदाज आपका सबसे निराला है, हर बात में अपनापन और उजाला है। आदरणीय आरजे प्रमाण सर जी यूं ही महफिल सजाते रहिए, आपकी आवाज ही लाखों दिलों का सहारा है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके शेरों का, तो मैं पहले से कायल हूँ और आपकी जो ये शायरी है वो दिल को छू लेती है, और मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम में जुड़े रहिए आप आखिर तक और सुनाते रहिए आपके खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे इतने मदहोश करने वाले शेर।
0: और
1: तो
0: राजेश कुमार जी कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने को मिला है, और निकलस जी का फीडबैक है वो भी सुन लेते हैं, क्या कहते हैं।
2: वेरी गुड इवनिंग आरजे वंशिका जी,
0: थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग
2: आरजे फॉर्मा, थैंक यू सो वेरी मच, इट्स अ रियली गुड प्रोग्राम इज गोइंग ऑन,
1: तो थैंक यू निकलस,
2: थैंक यू इन आरजे वंशिका जी
0: जी,
2: Jai Shri Ram.
0: Jai Shri Ram ji.
2: I send you my request. I hope you're going to play today.
0: Yeah, we are going to play
2: I'm
0: that.
2: I'm waiting for with my friend.
0: Oh, okay.
2: Listen, my own choice.
0: Thank you so much. We know you are.
1: Thank you.
0: We know you are waiting for your farmaish, and we also received a farmaish here, and we will soon play that farmaish of yours, like your request. We will soon play, and just you have to wait for some time. और
1: वंशिका जी, वंशिका जी निकलस जी का जो फीडबैक था वेरी नाइस फीडबैक, थैंक्स, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस योर फीडबैक। तो मैं ये कहना चाहूंगा गाना मैं आपको आप जैसे भी गाना सुना हूँ, मैं भी चाहता हूँ वंशिका जी गाना भेजू, क्या कहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपका गाना आपने भेजा है मेरे पास, तो चलिए सुनवा दूँ।
1: हाँ सुनवाइए सुनवाइए, निकलस जी बताइए कैसा है,
0: एंजॉय कीजिए।

0: बहुत ही प्यारी फरमाइश सुनाई है आज ब्रह्मा जी आपने।
1: जी ऐसा है दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। इसमें आपको शायद ये फीलिंग आई होगी कि जो गाना है किसी मजनू ने किसी आशिक ने अपने महबूब के लिए गाया है कि रुक जाओ जाने वाले, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको पता ही लग गया होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक शराबी ने गाया हुआ गाना है। एक शराबी जो इस फिल्म का मेन हीरो था वो शराब पीता होता है, और वो बोतल जो शराब की वो लुढ़क जाती है, लुढ़कती लुढ़कती दूर जा रही होती है, तब वो उसको रोकने के लिए गाना गाता है। तो दोस्तों ये बात भी पुराने जमाने की है। बात चल रही थी पुराने जमाने की, तो मैं आपसे कुछ
0: हमारे पास अब गाने बहुत सारे बचे हैं तो थोड़ी बातचीत पे विराम डालेंगे थोड़ी देर के लिए। और अभी हम क्या कह रहे हैं, अभी आप बोल सकते हैं,
1: कुछ नहीं, आप सुनाइए गाना, सुनाइए किसका गाना है,
0: यहाँ फीडबैक है मेरे पास आपकी बातचीत के ऊपर।
1: सुना दी।
0: सवजीत सेठी जी का कुछ फीडबैक है, वो भी सुन लेते हैं।
2: रुक जा रुक
0: अच्छा गाना है, आपका गाना पसंद
2: जा
0: आया इन्हें।
2: रुकने वाले रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। परमार सर जी, आपकी पसंद का गीत बहुत ही लाजवाब लगा और सभी गीत सुपरहिट चल रहे हैं। ओल्ड इज गोल्ड जिंदाबाद, तो सुनते रहिए रेडियो गाना जो बना दे सबको दीवाना। मैं
0: बजाते
2: सरबजीत
0: रहो
2: सेठी
0: बस।
2: फाजिल का पंजाब से।
0: थैंक यू सो मच
1: बहुत
0: जी।
1: बहुत शुक्रिया सर जी, इतने अच्छे फीडबैक, अच्छा फीडबैक आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं आपका।
0: और यहाँ खुशबू कुमार जी लिखती हैं।

0: जो शायरी हम एक और लिख के भेजे निकलस जी के लिए, वर्ड्स में भी डिफरेंट बट फीलिंग्स आर द सेम, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस नेवर नीड अ नेम, अक्रॉस एवरी बॉर्डर बॉर्डर अक्रॉस एवरी सी, सेंडिंग आवर बेस्ट विशेस विद लव लव एंड पॉजिटिविटी। बहुत बहुत बहुत ही प्यारी खुशबू जी आपने इंग्लिश वाली शायरी लिखी है, बहुत ही प्यारी शायरी लिखी आपने। एक बार और से फिर से पढ़ लेती हूँ, अगर निकलस जी आप सुन रहे हैं तो सुनिएगा। वर्ड्स में भी डिफरेंट बट फीलिंग्स आर द सेम, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस नेवर नीड अ नेम, अक्रॉस एवरी बॉर्डर अक्रॉस एवरी सी, सेंडिंग आवर बेस्ट विशेस विद लव एंड पॉजिटिविटी। यानी कि शब्द अलग हो सकते हैं पर हमारी जो भावनाएं हैं वो अलग नहीं हो सकती। रिस्पेक्ट और काइंडनेस जो रहती है, जो सम्मान रहता है, वो कोई भी नाम नहीं चाह सुनता, वो कोई उसको किसी नाम की जरूरत नहीं होती है। और कोई सा ही बॉर्डर हो, भले ही वो नदियों के सागरों के पार हो, किसी भी दूसरी सरहद पे हो, हमारी बेस्ट विशेष, हमारी जो भी एक शुभकामना है हमारे प्यार के साथ और पॉजिटिविटी के साथ आपकी तरफ हमेशा पहुँच ही जाएगी।
1: बहुत बहुत बहुत ही खूबसूरत शायर लिखे इन्होंने इंग्लिश में,
0: और बाबू
1: मुझे काफी पसंद आई। खुशबू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही चलाते रहिए, अपने शायरों का शायरी का रिकॉर्ड सुनाते रहिए शायरी। और
0: बाबूलाल जी ने बहुत ही प्यारी सुनने को मिली है, और निकलस जी का फीडबैक है वो भी सुन लेते हैं।
2: वेरी ब्यूटीफुल मिस्टर आरजे परमाल, वंडरफुल चॉइस, इज वेरी ओल्ड, आई डोंट थिंक सो, आई बॉर्न दैट टाइम।
0: No, you.
2: Wow.
0: I think you did.
2: Wow, it's a nice melody. Thank you very much, RJ Parmal, and RJ once again. Good choice.
1: Thanks, El. Thanks a lot, Mr. Nicholas A. for beautiful.
0: निकलेस जी ये भी लिखते हैं, थैंक यू सो मच। मैं नाम नहीं प्रोनाउंस कर सकता, बट आपने इतनी प्यारी प्यारी शायरी हमारे लिए बोली, उसके लिए आई थैंक यू सो मच। और यहाँ पे गाना सुना दूं मैं अगले वाला, जो कि निकलेस जी ने ही भेजा है हमें।
1: सुना दीजिए।
0: निकलेस जी गाना सुनना है, दुनिया मेरा है बड़ा नाम, मूवी का नाम है लोकपत। धर्मेंद्र जी भी फिल्माया गया, गाना सुनना चाहेंगे तो चलिए सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए।

0: बहुत ही प्यारी पसंद सुनने को मिली है, बहुत स्पिरिचुअल गाना सुनवाया है।
1: व्हाट अ नाइस फरमाइश जी।
0: और राजेश कुमार जी का रेडियो हॉस्टल के रेडियो फ्रेंड निकलेश जी को दिल से धन्यवाद इस प्यारे से गाने के लिए। और निकलेश जी लिखते हैं, मैं जो लॉर्ड राम है यानी कि भगवान राम है उनको बहुत प्यार करता हूँ, और थैंक यू सो मच आर्य वंशिका जी आपने मेरे गाने को प्ले किया।
1: थैंक यू वेरी मच निकलेश जी।
0: और खुशबू कुमार जी लिखती है, निकलेश जी की पसंद बहुत ही प्यारी है, सुनकर हृदय गदगद हो गया बिल्कुल। और कुंता बिनी जी लिखती है, वंशिका जी प्रमाण सर जी आपकी पुरानी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब छोटी थी अपनी मम्मी पापा के साथ उनकी पुरानी बातें सुनती थी इस बहाने कि उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती थी। और प्रमाण सर जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ, ग्रुप में वो सबका एंटरटेनमेंट करते हैं, इतनी सारी फनी वीडियोज सेंड करते हैं, उनकी सभी वीडियोज देखती हूँ, उनकी वीडियोज देखकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कुंता बिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मेरी वीडियो की तारीफ की। और वंशिका जी मैं एक अपने वाक्य सुनाना चाहूंगा।
0: बिल्कुल सुनाइए।
1: देखिए ऐसा है, हम पापा जी हमारे, हमें जब हम स्कूल में जाते थे, मैंने आपको बताया कि पजामा पहन के जाते थे, तो वो मुझे नया पजामा सिलवा के दिया उन्होंने कि बोला बेटा कर लिए, मैंने सोचा कल स्कूल में पहन के जाऊंगा।
0: जी,
1: तो स्कूल में पहन के गए, तो उस टाइम वापसी आते समय मेरे साथ दो दोस्त थे, तो रास्ते में एक बेर का पेड़ था, बड़े मोटे मोटे और बढ़िया बेर, मीठे बेर लगते थे उस बेर पर। तो मुझे पता नहीं क्या सूझी, मैंने कहा दोस्तों को भाई आप रुकिए मैं आपको बेर ऊपर से तोड़ कर देता हूँ। तो जब मैं बेर ऊपर तोड़ने लगा तो मैंने काफी बेर तोड़े और नीचे फेंके भी, लेकिन जब मैं उतरने लगा तो मेरा जो वो पजामा था तो नहीं, वो जो बेर में कांटे होते हैं ना, बेर के पेड़ में जो कांटे होते हैं उन्होंने लुझिया, वो फट गया। अब फटा भी काफी, और फटने के बाद मेरा घर आने को दिल ना करेंगे चाहते
0: कहाँ से लेके आते हम कहानियां, कहाँ से लेके आते हैं
1: कहानियां निजी सच्चाई है ऐसा वंशिका जी हुआ था मेरे साथ।
0: बेचारा पजामा शहीद हो गया।
1: तो बेचारा पजामा काफी फट गया, और मैं आगे घर में कपड़े चेंज करे तो पापा जी ने कहा भी आज क्या बात, कपड़े की जल्दी चेंज कर लिए। तो मैंने कहा पापा जी वैसे ही पकड़ लिया स्कूल से आगे। तो दूसरे दिन पापा जी घर में ही थे, तो मैं स्कूल जाने लगा तो पापा जी को कह लगे भाई नया पजामा डाल के जाओ। तो पापा जब मैं नया पजामा डालने लगा तो पापा जी ने देख लिया फटा हुआ है, और मेरे अच्छे से उन्होंने मेरी पूजा की और पिटाई की। तो वो मुझे आज तक याद है, वंशिका जी ऐसा होता था मैं
0: बिल्कुल होता था बचपन में, हमारे साथ भी बहुत सी चीजें ऐसी घटती होती रहती थी।
1: कुछ ऐसे इंसिडेंट हो तो आप भी बताइएगा, शेयर कीजिएगा
0: बिल्कुल।
1: और कुंता जी आप भी बताइएगा कोई ना कोई हो ऐसा इंसिडेंट आपके साथ।
0: बाबूलाल जी लिखते हैं निकलेश जी की पसंद बहुत ही प्यारी लगी है, और सब जी सेठी जी का फीडबैक है वो भी सुन लेते हैं।
2: निकलेश जी की पसंद का गीत बहुत ही शानदार लगा, महेंद्र कपूर जी की आवाज में
0: जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी। अगले गाने की तरफ नजर डालते हैं, तो ये गाना मैं सुनवा रही हूँ आप सभी को, मुन्ना जी की पसंद है हम जुदा हो गई है, ये वाला गाना सुनना चाहेंगे, सभी श्रोताओं को डेडिकेट करते हैं, सिखा दिया है एंजॉय कीजिए।
1: वाह मुन्ना जी वाह जी वाह, मुन्ना जी क्या गाना भेजा आपने, बहुत ही खूबसूरत बड़ा प्यारा गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।

0: ये वाली पसंद भी बेहतरीन लगी मुन्ना जी की, ओरिजिनल वर्जन भी सुनने को मिल गया और ये वाला गाना भी सुनने को मिल गया, दिल से शुक्रिया। और
1: तो वंशिका जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो गाना है ये शायद के
0: ए
1: एआई
0: आई
1: से
0: वर्जन,
1: बनाया हुआ
0: बिल्कुल
1: है। तो
0: बिल्कुल।
1: चलो, जो भी था बहुत ही खूबसूरत गाना था, एआई से बना था, जो भी था
0: थैंक यू
1: बहुत
0: सो मच
1: बहुत।
0: जी।
1: और
0: और खुशबू कुमार जी लिखती है, हम तो रियल वाला गाना बेहतरीन लगा और ये वाला गाना भी बेहतरीन लगा। बाबूलाल जी लिखते हैं, मुन्ना जी आपकी पसंद बहुत ही प्यारी लगी है, और निकलेश जी का फीडबैक है वो भी सुन लेते हैं।
2: थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर आरजे वर्मा और आरजे वंशिका जी।
0: थैंक यू सो मच फॉरवर्ड।
2: थैंक यू सो वेरी मच, यू प्लेड माय सॉन्ग एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर फीडबैक एंड वन मोर वर्ड आई couldn't pronounce, oh, I can't pronounce her name. She written, what a beautiful poetry for
0: yeah,
2: me.
0: Yeah,
2: I love it so much. Thank you very much, my dear. God bless you.
1: Thank you very much, Niklasi. Nice. And her name
0: Is
1: was Khushbu Ji.
0: आरिफ जी कहते हैं, मुन्ना जी की फरमाइश बहुत ही प्यारी लगी, तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे। और चलते हैं फिर अगले गाने की तरफ, जो कि भेजा है हमें यहाँ पे सर्वजीत सेठी जी ने। आज मुझे विवाह मूवी का गाना सुनना है, गीत के बोल हैं। सर्वजीत जी की पसंद पहले प्ले हो गई थी क्या? एक सेकंड में देख लेती हूँ। सर्वजीत सेठी जी जी नहीं, तो सर्वजीत सेठी जी का गाना मैं यहाँ प्ले कर रही हूँ। लिखते हैं, गाना सुनना है मुझे हक है, बहुत ही प्यारा गाना है। तुझे जी भाई कि मैं देखूं, मुझे हक है बस तुझे देखता जाऊं, मुझे हक है, बहुत ही प्यारा गाना है।

0: बहुत ही प्यारी फरमाइश सुनने को मिली है सवजी जी आपकी। और कुंता मेरी जी लिखते हैं, शानदार प्रोग्राम चल रहा है, एक से बढ़कर एक गाने, सभी दोस्तों की फरमाइशें बेहतरीन, और आप दोनों को दिल से धन्यवाद प्रोग्राम को इतना खूबसूरत बनाने के लिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कुंता बहनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत फीडबैक देने के लिए आपका। और ये जो गाना था सरोजी सेठी का, नंबर वन गाना था जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। सरोजी सेठी जी धन्यवाद इतना खूबसूरत गाना सुनाने के लिए।
0: और यहाँ पे लिखती है खुशबू जी, विवाह मूवी का बहुत ही प्यारा मधुर गाना सुनने को मिला है, आई लाइक दिस सॉन्ग वेरी वेरी मच। और ये मतलब क्या क्या दिक्कत आ रही है, प्लीज मुझे समझाइए खुशबू जी, क्या मतलब क्या मैसेज इसमें नहीं आ रहा है। निकले जी लिखते हैं, मैंने इस गाने को पहले ही प्रोग्राम में सुना है, बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला और बहुत ही प्यारी फरमाइश है। और यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं, सबजी सेठी जी आपकी पसंद बहुत बहुत प्यारी है। आरिफ जी कहते हैं, ऑल टाइम सुपर हिट गाना सुनने को मिला, दिल से शुक्रिया देना चाहेंगे। अगली पसंद की तरफ चलते हैं, जो कि हम भेजे हमें रामू तिवारी जी ने, मेरा जीवन कुछ काम का ना आया, यहाँ गाना सुनना चाहेंगे। सुना दिया है रामू जी आपकी पसंद के गीत को, एंजॉय
1: रामू
0: कीजिए,
1: जी की पसंद भी काफी खूबसूरत है, गाना भी बहुत अच्छा है, तो सुनिए सभी श्रोताओं को सुनाइए बच्चा जी।
0: एंजॉय।

0: बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला है, सैड सॉन्ग की फरमाइश लाजवाब। और मोहन निवास जी लिखते हैं, धन्यवाद वंशिका जी, सविजी सेठी जी, इतना प्यारा गाना सुनवाया, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे सविजी सेठी जी लिखते हैं, वंशिका जी मैंने अच्छा जी, एक कंफ्यूजन हो जाती है ना, क्या करें हम इस बारे में, क्योंकि दोनों फरमाइशें आपने इस तरफ भेज दी थी, तो उनमें से एक मैंने रख ली, एक बार एक नहीं रख पाई मैं। कोई बात नहीं, ये वाला गाना अब यहाँ प्ले हो चुका है, वहाँ आप भेज दीजिएगा, जैसे कि वहाँ पे ऑप्शन ओपन होगा 6 बजे के बाद में, वहाँ से आप भेज सकते हैं। और यहाँ फीडबैक आ चुका है मेरे पास, अजय भगत जी लिखते हैं, रामू जी की पसंद बहुत ही प्यारी लगी है। सवरजीत सेठी जी यहाँ भी कहते हैं कि ये वाला गाना अमीना जी का पहली बार सुनने को मिला। और शैलेंद्र बुंदेल जी का फीडबैक है, सुनते हैं।
1: जबरदस्त चल रही है जी, वर्मा जी का क्या कहना ही क्या है गाने का, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं बारिश में भी।
0: थैंक यू सो मच जय
2: बहुत बहुत
0: शैलेंद्र
2: शुक्रिया,
0: जी।
2: बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत ही ज्यादा धन्यवाद आपको।
0: शैलेंद्र मुंदेल जी बीड महाराष्ट्र से आपका बहुत बहुत स्वागत है, और क्या कहना चाहेंगे मास्टर जी?
2: कुछ नहीं रहा सब, देखिए दोस्तों, ऐसा बात चल रही थी महंगाई की, और महंगाई के बारे में भी आपने अभी तक एक भी फीडबैक नहीं दिया,
0: दिया
2: सिर्फ
0: है
2: सरोजीत
0: सरोजीत
2: जी
0: जी ने
2: से
0: दिया है,
2: दिया।
0: और यहाँ
2: और
0: पे एक आध लिस्नर्स और हैं, जैसे आरिफ जी हैं उन्होंने दिया, और खुशबू जी उन्होंने दिया, कुंता बेनी जी ने भी दे दिया।
2: और कोई फीडबैक हो तो बताइएगा, बाकी आप ये बात जरूर बताइएगा, आपको आजकल के महंगाई के जमाने में क्या चीज आपको परेशान कर रही है जो महंगी मिल रही है, और पहले सस्ती मिला करती थी, आप उन चीजों के नाम लिख के भेजिएगा। तो श्रोता जी, मैं सुनना चाहूंगा और श्रोता को सुनाना चाहूंगा कि आप महंगाई के जमाने में कौन सी महंगी चीज की वजह से परेशान है, तो सुनाइए, बताइएगा, जरूर बताइएगा।
0: जी बिल्कुल, जब तक मैं सुनवा रही हूँ यहाँ पे, किन की पसंद, मोहन निवारे जी की पसंद सुनवा रही हूँ, डेडिकेट करते हैं विशाल निवारे जी, पद्मा निवारे जी, डोंगर गांव कोला से। तो चलिए सुनवा दिया आपकी पसंद के गीत को, बेताब मूवी का गाना है, बादल यूं गरजता है, बिल्कुल गरजता है, और बारिश भी बरसाता है। इंजॉय कीजिए अपनी पसंद को, इंजॉय।

0: बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला है। और आज के लीडरबोर्ड पर नजर डालते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे है नताशा जी, सेकंड पे है बाबूलाल अंजना जी, थर्ड पे है खुशबू कुमारी जी, फोर्थ पे है एमडी फैज आलम जी, फिफ्थ पे है नाहिद अंसारी जी, सिक्स्थ पे है कुंता बेनी जी, सेवंथ पे है आरिफ सिंधी जी, एट्थ पे है राजेश कुमार जी, नाइन्थ पे है निकलेस जी, टेंथ पे है राधा कृष्ण गोप जी। और यहाँ पे लकी ड्रॉ मैंने अभी अभी निकाला है तो लकी ड्रॉ के विजेता बने हैं आरिफ जी। आरिफ जी अगर आप शो को सुन रहे हैं तो प्लीज अपनी पसंद के गीत मुझे हमारे रेडियो हॉटस्टार की एप्लीकेशन पे लिख के भेजिए, हम आपके गाने को प्ले करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और बाबूलाल जी लिखते हैं हमारे इधर वंशिका जी बारिश हो रही है, इस गाने की वजह जैसे जैसे बारिश हो रही है। अच्छा जी, गाने जैसे इनके गाने में बारिश हो रही है वैसे ही उनकी तरफ भी बारिश हो
1: वाकई
0: रही है।
1: लकी गाना, काफी कूल लकी गाना जी आपके लिए
0: बिल्कुल।
1: तो।
0: मोहन निवार जी लिखते हैं वंशिका जी थैंक यू सो मच, आपने मेरे गाने को प्ले किया। और राजेश कुमार जी लिखते हैं बहुत ही लाजवाब सॉन्ग सुनने को मिला है। निकला जी लिखते हैं थैंक यू सो मच खुशबू कुमारी जी, आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें हमारे लिए कही, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे। और आरिफ जी शो को सुन रहे हैं तो प्लीज प्लीज प्लीज अपनी पसंद के गीत को लिख के हमें रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन पे भेज दीजिए, क्योंकि आज के लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं आप। और जो भी 10 टॉप लिसनर्स हैं आप सभी को भी हमारी तरफ से बधाइयां। कुंता बेनी जी लिखती है मोहन निवार जी की फरमाइश बहुत ही अच्छी है और हमारे यहाँ भी ऐसा ही मौसम हो रहा है। अच्छा जी, सभी की तरफ ऐसे मौसम हो रहा है मेरे ख्याल से, है ना परमार जी?
1: मौसम ऐसा बरसात के मौसम शुरू हो गए ना जी, बारिश का मौसम शुरू हो गया तो ऐसा मौसम रहेगा ही।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है। और चलिए जैसे कि परमार सर जी का एक और गाना है मेरे पास, वो भी प्ले कर देती हूँ, एंजॉय कीजिएगा। जब तक आरिफ जी अपनी पसंद के आप गीत को लिख के भेज दीजिए। नशे बचा के चले गए वो वरना
1: तो दोस्तों ये गाना मेरी पसंद का गाना है और मुझे
0: घायल
1: काफी पसंद है, इसलिए मैंने अपनी पसंद वंशिका जी को बताई और वो इस गाने को प्ले करेंगी अब।
0: एंजॉय कीजिए।

0: बहुत ही प्यारी फरमाइश सुनने को मिली है। फरमाइश सर जी आपकी कैसी लगी आपको अपनी फरमाइश?
1: देखिए मेरी जो फरमाइश होती है वो मुझे तो पसंद आती ही है मुश्किल जी, साथ में मेरे दोस्तों को भी आती है, क्योंकि गाने कुछ ऐसे ही मीनिंगफुल होते हैं जो सभी को पसंद आ जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों अभी बताइएगा, अभी आज तक आपका कोई फीडबैक नहीं आया है, और ये मैं ये पूछना चाहूंगा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा।
0: और यहाँ फीडबैक है, मोहन निवास जी लिखते, प्रमाण सर जी आपकी पसंद बहुत ही प्यारी है, सुपर हिट गाना, और आरिफ जी का गाना मेरे पास आ चुका है, थैंक यू सो मच, अभी प्ले करते हैं। और कुंता विनेश लिखते हैं बहुत ही प्यारी फरमाइश है आज वंशिका जी, आज प्रमाण जी, थैंक यू सो मच इतना प्यारा गाना सुनाने के लिए। और निकले जी लिखते हैं, वॉइस डेक है निकले जी का, सुनते हैं क्या कहते हैं।
2: माय डियर पंच कच्ची,

0: लिखती हैं, क्या लिखती हैं, क्या लिखती हैं, क्या लिखती हैं। दीदी जी, आज का प्रोग्राम आपके साथ अदिन्य बनवास जी का शो सुन के ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में ही चली गई। दिल करता है ऐसे शो रोजाना सुनने को मन करता रहता है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू जी। और मैं, आप मेरे बच्चे की उम्र को इसलिए मैं आपको बेटा कहता हूँ, माइंड मत कीजिएगा। तो अच्छा लगा, आपकी शायरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और बहुत ही खूबसूरत और प्यारी शायरी करती है आप खुशबू बेटा। और मैं चाहूँगा कि आप जिंदगी में खूब आगे बढ़ें और खूब तरक्की करें, मैं ये चाह रहा हूँ। और मेरी तरफ से आपको ये सभी दुआएं एक साथ लग जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे फिर भी कक्षा रोहित सिंह जी लिखते हैं, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा है। और जैसे कि बताया था, आज के लीडर बोर्ड के जो लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं आरिफ जी, तो आरिफ जी का गाना सुनाते ही इजहार लेना चाहेंगे हम, है ना प्रमाण सर जी?
1: हाँ जी, हाँ जी, आरिफ जी की फरमाइश आ गई है क्या?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास आ चुकी
1: है।
0: लिखते हैं, गाना सुनना है वंशिका जी, ये वाला गाना आपको, अमन सर जी को और प्रमाण सर जी को, सबको डेडिकेट है। गाने के बोल है, तुमने पुकारा
1: देखिए राजकुमार फिल्म का गाना है, ये काफी पुरानी फिल्म थी, राजकुमार और राजकुमार फिल्म पे शम्मी कपूर जी हुआ करते थे और साधना जी भी थी, तो इन दोनों पे फिल्माया गया गाना है। और मैं ये कहना चाहूँगा सभी दोस्तों को, आज का प्रोग्राम तो चलो हम खत्म हो ही रहा है, और साथ साथ मैं भी कहना चाहूँगा कि अगले संडे को हम कोई और नया टॉपिक लेके आएंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे और बातचीत होगी आपकी और हमारी। और बस इतना ख्याल रखिएगा, आज आपने कोई कमी फीडबैक दी है, मैं चाहूंगा कि अगली बार आपको हम मेंशन भी कर दें टॉपिक, और पहले ही वंशिका जी जो पोस्टर बनाएंगे उसमें
0: जी आपको
1: मेंशन
0: टॉपिक
1: कर
0: बता
1: दें
0: दिया जाएगा कि क्या टॉपिक क्या रहेगा, ताकि आप सभी प्रिपेयर रहें और इस पे प्यारे प्यारे गाने और प्यारी प्यारी बातचीत पहले ही सोच लें कौन सी बातचीत आप सभी को करनी है।
1: तो मुझे इंतजार है आपके फीडबैक्स का, और अगले प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे मैं और वंशिका जी। तो और आज का जो महंगा का टॉपिक था वो आपको कैसा लगा बताइएगा सभी, और बताइएगा प्रोग्राम कैसा लगा। और मैं आपको यही कहूंगा कि अगली बार जुड़िए और उस टॉपिक को बचकर जी आप पोस्टर में शो कर
0: बिल्कुल
1: दीजिएगा।
0: बिल्कुल कर देंगे और आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। खुशबू कुमार जी लिखती है, वंशिका जी और प्रमाण सर जी, आपकी दुआओं की बहुत बहुत धन्यवाद आपकी दुआओं के लिए। और निकलस जी लिखते हैं, व्हाट अ वंडरफुल प्रोग्राम आज है वंशिका जी, आज प्रमाण जी, वेरी वेरी गुड प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच निकलस जी, यू आर क्विट मैन, यू आर
0: सो ग्रेटफुल मैन
1: योर
0: एंड सो केयरिंग।
1: नहीं योर योर फीडबैक इज वेरी नाइस एंड लविंग, आई लव योर फीडबैक्स।
0: अब बस इजहार लेना चाहेंगे आरिफ जी की पसंद के साथ में, जो कि आज के विजेता बने हैं लीडर बोर्ड में, जो टॉप है उन सभी का एक बार और बता देती हूँ नाम। फर्स्ट है नताशा जी, बाबूलाल जी, खुशबू कुमारी जी, कुंता बेनी जी, एमडी फैज आलम जी, नाहिद जी, आरिफ जी, निकलेस जी, राजेश जी, राधा किशन गोप जी, आप सभी लिसनर्स को बहुत बहुत बहुत बधाइयाँ रहे आज के टॉप लिसनर्स बने रहने के लिए, और साथ में आरिफ जी को डबल बधाइयाँ क्योंकि वो आज के लकी ड्रॉ के भी विजेता रहे हैं। तो आरिफ जी के गाने की इजाजत लेना चाहेंगे।
1: आरिफ जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप फर्स्ट आए उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ जी। और सुनिए आप अपनी पसंद का गाना जो
0: बस
1: आपने
0: यही
1: भेजा
0: कहूंगी,
1: है।
0: खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना और अपनों ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो गाना जो जो दीवाना बना दे, बजाते रहो दिल से।
1: बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो गाना आप सुनिएगा, और मिलेंगे अगली बार भी रेडियो गाना पर, होता है बीच में भी कोई प्रोग्राम करूँ मैं, हो सकता है, पक्का नहीं कहता मैं आपको, लेकिन अगर मुझे टाइम मिला तो कोई ना कोई प्रोग्राम आपके लिए मैं रेडियो गाना पर जरूर लेके आऊँगा, तो उसे भी सुनिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों मेरा साथ निभाने के लिए, मेरे और वंशिका जी का जो साथ आपने दिया उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले प्रोग्राम में, अगले संडे को, रोस्ता बीच में भी आपसे मिलूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय
0: बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनिए आरिफ जी की पसंद को,
1: बाय
0: बाय
1: बाय माय ऑल फ्रेंड्स,
0: बाय
1: निकलेस जी यू आर वेरी क्यूट लिसनर,
0: बाय।

0: आरिफ जी लिखते हैं, वंशिका जी शानदार प्रोग्राम रहा, आप दोनों को तहे दिल से शुक्रिया। आज के सभी श्रोताओं ने एक से बढ़कर गाने सुनवाए, आपने हमारे गाने को भी सुनवाया और आज के विनर बने हम, उसके लिए धन्यवाद। बस यही कहना चाहूंगी, खुश रहिए। और मैं आरिफ सिंधी, गांधीनगर गुजरात से,
1: बहुत बहुत
0: शुक्रिया।
1: शुक्रिया इस फीडबैक के लिए आरिफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद भी देता हूँ मैं आपको। मिलते रहिएगा हमसे और मिलते जुड़ते रहेगा हमारे प्रोग्राम पर,
0: बाय
1: रेडियो पर।
0: बाय बाय।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं स्टार लेटर्स चॉइस आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल में सुनिए 1960 से लेकर 1985 तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का स्टार लेटर चॉइस। और आज का लेटर का जो अक्षर दिया गया है आपको वो है एम। एम लेटर से आपको गाने भेजने हैं, तो जल्दी जल्दी से आप शुरू हो जाइए। फिलहाल मेरे पसंद के गाने को एंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

बिल्कुल मेरे मन का मौसम बदलने लगा है और मैं ना एक्चुअली अपना मैसेज आने वाला एप्लीकेशन को ऑन ही नहीं किया था और मैं भूल गया था उसको ऑन करना। कोई बात नहीं है, फिलहाल मैं काम करता हूँ। सबसे पहले आज का जो मैं फरमाइश लेने वाला हूँ वो है यानी कि कायनात जी का। ओ माय गॉड, कल उनसे बात हुई थी मेरी, वो क्या खूबसूरत उनकी आवाज है, बहुत ही खूबसूरत आवाज की मलिका है वो, और ऐसा लगता है कि उनकी एक आवाज एक आरजे के लिए बनी हुई है। लेकिन उन्हीं का गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, और मैं तेरे मन की मैना होती तू जो मेरा तोता, एंजॉय कीजिए इस गाने को, यानी कायनात जी।

वेलकम बैक। और दोस्त जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, सभी का वेलकम करते हैं हम। सरफराज जी सबसे पहले जुड़े हुए साउथ अफ्रीका से और लिखते हैं कि गुड इवनिंग सभी दोस्तों को और अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। नहीं जी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। और अभी जुड़ गए वेलकम है अशोक देशमुख जी, जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अशोक देशमुख जी आपका भी। और अमीना खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम आपका भी वेलकम है। और आरिफ सिंधे जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और लिखते हैं कि कायना जी की फरमाइश मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी है, थैंक यू सो मच, इतना गाना, इतना बेहतरीन गाना सुनाने के लिए शुक्रिया। एंड प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। अगला गाना सुनवाते हैं बिना देर के हुए, और ये गाना तो है सरफराज जी का साउथ अफ्रीका से, मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर किधर ले गई जी, सामने आ जाओ।

0: वेलकम बैक। और फीडबैक मेरे पास आ रहे हैं, ये क्या कहते हैं सुनते हैं। सर्वजीत जी,
1: अमन सर जी, नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: मैं सर्वजीत सेठी फाजिलका पंजाब से। कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम भी अपने स्थान पर ठीक हैं, हम भी आपके कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं, तो सुनते रहिए रेडियो होस्ट चाहो जो सबको दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद सर्वजीत सेठी जी। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि शानदार फरमाइश चल रहा है जी, बिल्कुल नहीं जी। लिखते हैं कि लाजवाब गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सरफराज जी को। और आरिफ सिंधी जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि सरफराज जी की फरमाइश मुझे बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं उनका। और ये क्या कहते हैं सुन लेते हैं सुरेश भगत जी।
2: आरजे अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी, हम भी जुड़े हुए हैं, हमारा भी आज ही लगा दीजिए।
0: जी जी बिल्कुल लगा दिया गया।
2: और आपका ओपनिंग सॉन्ग और सभी अच्छा लगता है गाना, थैंक यू सर,
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और अगला जो गाना मैं प्ले कर रहा हूँ वो संदीप सुतार जी का गाना प्ले कर रहा हूँ, मैं तो हूँ पागल मुंडा और तू है मेरी सोनी कुड़ी। बिल्कुल मैं तो हूँ पागल मुंडा, एंजॉय कीजिए इस गाने को। और गाना तो बहुत अच्छा लगता है ना।

अच्छा ऐसा नहीं है जी, मैं तो हूँ पागल मुंडा, तू है मेरी सोनी कुड़िया।

मैं तो हूँ पागल मुंडा, तू है मेरी सोनी कुड़ी, और बहुत सारे फीडबैक आने शुरू हो गए हैं। अनिल कश्यप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और यहाँ पे संध्या पटेल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है संध्या पटेल जी आपका भी। और सुनीता गोप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और इनके साथ में सुन रही है अनामिका जी, वेलकम है आपका भी। नाहिद अंसारी जी लिखते हैं कि सुपरहिट राजवाफ हमारी चल रही है, संदीप सुतार जी का। और सरफराज लिखते हैं थैंक यू सो मच भाईजान, आपने गाना प्ले कर दिया, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और कुंता बेनर्जी जी लिखते हैं कि आरजेवान सर जी मैं भी जुड़ गई, जी जी बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और एम डी फैज लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत वेलकम है। और बी के पंत जी लिखते हैं कि बेहतरीन फरमाइश है, मैं तो हूँ पागल मुंडा। और आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि संदीप सुतार जी की फरमाइश मुझे बहुत अच्छा लगा है। और जाकिर खान जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, जी जी वेलकम है आपका भी जाकिर खान जी। राजेश कुमार जी लिखते हैं कि सुपर रोमांटिक फरमाइश, डांसिंग सॉन्ग सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ और बेहतरीन गाना चल रहा है, जी वेलकम है आपका भी बिट्टू जी। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जी। और हमारे आनंद जी जुड़ चुके हैं यूट्यूबर, बहुत बहुत वेलकम है। और अब सुनाते हैं अगली पसंद, अभिषेक तिवारी जी का मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, जी दीवाना तो होगा ही क्योंकि गोरा रंग है ना।

0: वेलकम बैक। सच में भाई, अब गोरा रंग होगा तो दीवाना होगा ही ना, है कि नहीं? वैसे फीडबैक आ चुका है और बलराम जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम है, ये पूर्णिया बिहार से है। बहुत बहुत वेलकम है बलराम जमदार जी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
1: जय मोहन सर जी, अभिषेक तिवारी जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं जी।
0: वेलकम है। और उनके बाद से ये क्या कहते हैं, नाही जी लिखते हैं, वाह वाह वाह क्या फरमाइश रहा, मजा आ गया सुनकर। किशन पाल जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं जी। बहुत बहुत वेलकम है किशन पाल साक्या जी। और संध्या पटेल जी लिखती हैं कि सुपर सॉन्ग, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, बिल्कुल। और बीके पंच जी लिखते हैं कि सर जी हम भी जुड़ गए हैं, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, मजा आ गया गाना सुनकर। फैज लिखते हैं कि वाह वाह वाह क्या लाजवाब गाना है, बहुत अच्छा लगा इस गाने को सुनकर। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि वाह सुपर औसम फरमाइश। और गोविंदा खंडाते जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी गोविंदा खंडाते जी। और अगला गाना मैं सुनवा रहा हूँ, और ये गाना यानी किन की पसंद है, शायद बाबूलाल अंजाना जी का है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है ओ मेरे यार, ओ मेरे यार। तो सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए शायद इस गाने को। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती। एंजॉय कीजिए।

चलते। वेलकम बैक और फीडबैक मेरे पास आ चुका है यहाँ पे नाहिद जी लिखते हैं कि सुपर ऑसम फरमाइश बाबूलाल अनजान जी, थैंक यू सो मच आपने डेडिकेट किया है मुझे। और कुंता जी लिखते हैं कि ये सुपर फरमाइश अभिषेक तिवारी जी की भी पसंद मुझे अच्छी लगी है। और सर्वजीत जी लिखते हैं कार्यक्रम शानदार चल रहा है, अच्छा। और राम कुमार मिस्त्री जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि अमन सर जी नमस्कार, और एक शिकायत मैं करना चाहता हूँ कि मेरा नाम फीडबैक में 15-20 नंबर पे बोला जाता है, तो क्या मैं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, आप जब मेरे पास मैसेज करेंगे, जब आपका नंबर आएगा मैं तब आपका नाम बोल दूंगा। जो लोग पहले मैसेज करते हैं उनका पहले नाम लिया जाता है, जो लोग बाद में मैसेज करते हैं उनका बाद में नाम लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सबसे पहले मैसेज करेंगे मैं आपका सबसे पहले नाम लूंगा, नो टेंशन, है ना, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए सभी बराबर है, ओके। और बिट्टू जी लिखते हैं कि शानदार शानदार शानदार गाना चल रहा है। और मोहन ने जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग चल रहा है, अमन सर जी मैं भी जुड़ गया हूँ, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त बाबूलाल अंजाना जी का पसंद मुझे बहुत अच्छा लगा, ओके जी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब पसंद है ये भी। और साथ ही साथ संध्या पटेल जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है, अगली पसंद में सुनाता हूँ रोहित जी के, मैंने अपना दिल दे दिया किस पागल दीवाने को। और सर सवाल ये है कि किस पागल दिया था, अच्छा जी, ये इस सवाल का जवाब तो आप ही को पता होगा। फिलहाल मैं आपके पसंद के गाने को प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए, है ना।

वेलकम बैक। और मेरे पास फीडबैक आ चुका है और राधा कृष्ण गोप जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं अमन जी मैं भी जुड़ गया हूँ, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार कह दीजिए और सभी सुनने वाले को गाना लाजवाब प्ले हो रहा है। अच्छा जी, सर्वजीत जी लिखते हैं कि बहुत ही लवली सॉन्ग है ये, और नाहिद जी लिखते हैं कि वाओ सुपर अमेजिंग पसंद है, रोहित जी आपकी थैंक यू सो मच आपका, और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड मस्त गाने चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि रोहित जी के पसंद सुपर, थैंक यू सो मच, और उनके पास है बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही शानदार बेहतरीन गाना है ये, और नाजिम जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं और टाइप ब्लॉकबस्टर सुपर हिट पसंद चल रहा है, रोहित जी थैंक यू सो मच, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, इतना प्यारा गाना सुनाया आपने, और मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग चल रहा है मन जी, और राम कुमार मिस्त्री जी लिखते हैं कि मैंने तुमको दिल दे दिया, मैंने अपना दिल दिया किसी पागल दीवाने को, जी एकदम लाजवाब गाना सुनकर अमन जी मजा आ गया है, और मैंने भी आपका रिक्वेस्ट तो मुझे मिला नहीं है, पता ना कहाँ आपने रिक्वेस्ट भेजा है, मुझे तो दिख नहीं रहा है। वैसे सरफराज जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब बेहतरीन पसंद है, बहुत अच्छा लगा ये गाना, कुंता बेनी लिखते हैं कि वाह वाह वाह रोहित जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है, थैंक यू रोहित जी, एंड यहाँ पे जुड़ चुके हैं प्रकाश जी, बहुत बहुत वेलकम है प्रकाश कुमार जी, कपूर चंद जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है कपूर चंद जी, गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त रोहित जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई, धन्यवाद है तो उनको इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। अगली पसंद मैं सुनवा रहा हूँ सुभाष तिवारी जी का, मुझे कंबल मंगा दे, लग रहा है कि इनको ठंड लग रही है। अच्छा जी,

वेलकम बैक। और यहाँ पे बलराम जी लिखते हैं कि मुझे कंबल मंगा दे। अच्छा, और तो देखिए आज का जो लेटर है वो है एम। एम लेटर से गाने भेजने हैं, सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से आप गाने भेज सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपके गाने को प्ले करने की कोशिश करूंगा। और जाकिर खान जी लिखते हैं कि हमारे तरफ गर्मी है। हाँ भाई, गर्मी हर जगह है, यहाँ भी गर्मी है। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना, बहुत ही शानदार पसंद चल रहा है, थैंक यू सो मच। और संजय पटेल जी लिखते हैं कि लाजवाब लाजवाब सॉन्ग प्ले हो रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है सभी गाने को सुन सुन के। अगला जो गाना है वो मुझे दिख रहा है राजेश कुमार जी का। राजेश कुमार जी सुनना चाहते हैं कौन सा गाना। लिखते हैं कि मेरा कंगना। अच्छा, ये गाना सुनना चाहते हैं, तो सुनवा दिया आपको ये गाना, एंजॉय कीजिए। मेरा कंगना झांझर चूड़ी खनखन करती है, एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक। और मेरे पास फीडबैक आ चुका है बहुत सारा। अभिषेक तिवारी जी लिखते हैं, अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे सुभाष जी का गाना आपने प्ले किया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। और उनके बाद ये लिखते हैं दत्तक्रम जी, कि मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम है दत्तक्रम जी। और मिसाल अंगद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी मिसाल अंगद जी। आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब फरमाइश है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। गजानंद जी लिखते हैं कि मेरा कंगना झांझर चूड़ी खनखन करती है, बहुत अच्छा गीत लगा सुनकर, मजा आया है। कुंता बेनी जी लिखते हैं कि शानदार फरमाइश है राजेश कुमार जी की। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और साथ ही साथ राजेश कुमार लिखते हैं कि थैंक यू अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले किया। एंड मनीषा शर्मा लिखते हैं कि बेहतरीन सॉन्ग चल रहा है। और रवि मोहड़े जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और हाँ, आज रवि मोहड़े जी का जन्मदिन है, तो रवि मोहड़े जी आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत बहुत वेलकम है, लेकिन देर कर दिया हुजूर आते आते, क्योंकि आपका गाना निकल चुका है। और मैं बता दूं कि शॉर्ट आउट में हमारे सुशील कुमार जी ने नहीं, मुझे लगा कि यहाँ पे आपको फीडबैक नहीं देना है, यहाँ पे बधाइयाँ देनी है। अगर किसी का मैरिज एनिवर्सरी है या अगर यानी बर्थडे है, जन्मदिन है, तो वहाँ पे शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो कोई बात नहीं भाई, रवि मोहड़े जी आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, आप जियो हजारों साल। और अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, जिसे जिसे सुनना चाहते हैं, क्या नाम है इनका, ये राम कुमार जी। तो भाई राम कुमार जी मतलब राम कुमार मिस्त्री जी, ये सुनना चाहते हैं मुझे 9 लाख मंगा दे रे, सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक। और सच में माय गॉड क्या गाना था, सच में मजा आएगा ना गाना सुन के। बहुत सारे फीडबैक आए, ओ माय गॉड इतने सारे फीडबैक, ओ माय गॉड। चलिए एक एक करके शामिल करते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन शामिल करता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे संतोष कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है संतोष जी। और लिखते हैं, वाह क्या गाने बज रहे हैं अमन जी, मजा आ रहा है। मैं संतोष कुमार हूँ, मैं हूँ गया बिहार से, और आज का थीम एम है ना जी, बिल्कुल आज एम अक्षर से गाने भेजने हैं। तो और मैं बता दूँ कि अशोक देशमुख जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि राजेश जी की पसंद मुझे बहुत ही सुपरहिट लगी है, और ये क्या कहते हैं सुनते हैं इनकी।
1: गुड इवनिंग अमन सर जी, गुड इवनिंग। मैं अम्बाड़ा से राहुल, आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है।
0: धन्यवाद देते हैं राहुल जी, राहुल पासी जी। और साथ ही साथ दत्तक्रम जी लिखते हैं कि ये राजकुमार मिस्त्री जी के पसंद का गाना मुझे बहुत पसंद आया, मुझे नौलखा मंगा दे रहे। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है जी, बिल्कुल शानदार गाना तो ये है। और यहाँ नाजिम जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और रूपचंद गोयल जी लिखते हैं कि मस्त मस्त मस्त गाना है ये, एकदम दिल खुश कर दिया भाई आपने इस गाने को सुनाकर। किशन पाल जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन गाना है जी, बिल्कुल। और नंदनी माँ जी जुड़ चुकी हैं, लिखते हैं कि बहुत ही सुपरहिट पसंद सुनने को मिल रहा है बाबू जी। माँ जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। संध्या पटेल जी लिखते हैं कि अब ना मिलेंगे गोल्ड, अच्छा हाँ बिल्कुल, यानी महंगा हो गया है, बिल्कुल अब तो गोल्ड महंगा हो गया है, बिल्कुल आपने सही कहा। और इतना अच्छा गाना प्ले करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ तो अगर आपको 9 लाख लेना होगा तो वो तो कोई बात नहीं है। सुरेश भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: जय मान सर जी, राम कुमार मिस्त्री जी अपने गाने में शामिल किए, उनको धन्यवाद देते हैं। और रवि मोहाले जी का आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू, ईश्वर उनको खूब खुश रखे, आवाज रखे।
0: अच्छा,
2: ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं।
0: ओके जी, धन्यवाद आपका भी। और साथ ही साथ सर्वजीत जी लिखते हैं कि सभी गाने सुपर हिट पसंद चल रहे हैं। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब फरमाइश, मजा आ गया सुन के इस गाने को। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार फरमाइश है, थैंक यू सो मच इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमन सर जी ये पसंद मुझे बहुत पसंद आई, धन्यवाद देते हैं उनको। और हमारे यूट्यूबर अनंत जी लिखते हैं कि आहा आशा जी क्या ये शानदार आवाज, क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना लगा है। राजेश कुमार लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर सॉन्ग, मुझे 9 लाख मंगा दे रहे। मोहन निवारी जी लिखते हैं कि अमन सर जी ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे 9 लाख मंगा दे। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दोस्त ने सुनाया है। मिसालंग जी क्या कहते हैं इनकी सुन लेते हैं।
3: हेलो अमन सर
0: जी, जी जी,
3: मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से फिर एक बार आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ। और अमन सर जी आज के कार्यक्रम जो दोपहर का कार्यक्रम था वो बहुत बेहतरीन कार्यक्रम था।
0: अच्छा,
3: मैंने कार्यक्रम पूरा सुना 11 बजे से। अच्छा, लेकिन गाना नहीं भेज पाया अमन सर जी, लेकिन अभी कार्यक्रम भी मैं सुन रहा हूँ, लेकिन सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से मैंने मेरा गाना भेज दिया है अमन सर जी।
0: अच्छा,
3: और अभी तक जितने भी गाने आपने सुनवाए बहुत लाजवाब और बहुत बेहतरीन गाने आपने अभी तक सुनवाए।
0: अच्छा,
3: जो एम अक्षर से गाने अभी बॉलीवुड में बने हैं ये बहुत अच्छे और बहुत सुपरहिट गाने सुनने को मिल रहे हैं अमन सर जी। आज का संडे सुपर संडे आपने बना दिया है, हमको बहुत खुशी है, आज हमको बहुत अच्छे कार्यक्रम सुनने को मिले सभी। तो अमन सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ओके जी, धन्यवाद आपका इतना प्यारा फीडबैक देने के लिए। साथ ही साथ रविंदर गोरखपुरी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी गोरखपुर से। और चारू गुप्ता दीदी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और साथ ही साथ नाही जी लिखते हैं, वाह एकदम झक्कास फरमाइश, दिल खुश हो गया इस गाने को सुनकर। राम कुमार मिस्त्री जी लिखते हैं, अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा गाना सुनवा दिया है। और दोस्तों का भी धन्यवाद देते हैं फीडबैक देने के लिए। बलराम जी लिखते हैं कि जाम तो बस एक बहाना है, जाम तो बस एक बहाना है, असल में तो दिल का दर्द छुपाना है। जो ना समझ सके वो कहते हैं शराबी, जो ना समझ सके वो कहते हैं शराबी, और जो समझ गए उसे महफिल सजाना है। अच्छा ये बात है, ओके जी। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त रवि महाराज जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और रवि महाराज जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
4: नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा।
0: अच्छा जी,
4: नशे

0: होता मैं कदे झूमते पैमानों में होती हलचल, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। बहुत लंबा फीडबैक हो जाएगा अमन सर जी,
1: हाँ,
0: बहुत ही बढ़िया लाजवाब सॉन्ग, मजा आ गया,
1: जी
0: सुपर सॉन्ग, इसलिए
1: बिल्कुल
0: गुनगुना दिया मैंने भी।
1: कोई बात नहीं, चलिए अच्छा किया आपने भी गुनगुना दिया। अकबर खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अकबर खान जी। साथ ही साथ बीके पंच जी लिखते हैं कि सर जी मुझे 9 लाख मंगा दे, इस गाने को सुनकर तो दिल खुश हो गया। किशन पाल जी लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर सॉन्ग लगा है। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि अति सुंदर फरमाइश है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात पर अगला जो गाना है वो मैं सुनवाने वाला हूँ, किनका किनका किनका, MD नाजिम जी का। चूंकि जब जब 9 लाख पहनेंगे तो कैसे लगेंगे, है कि नहीं? तो इस गाने के लिए वो लेकर आए हुए हैं MD नाजिम जी। मैं अगर कहूँ तुम साहसी कायनात में होगा नहीं, बिल्कुल।

0: बता सकूं।
1: वेलकम बैक। मैं अगर कहूं तुम सा हंसी कायनात में, वाह क्या बात है। ये फिर बैक
2: जय मां सर जी, एमडी नाजिम जी अपने गाने में शामिल किए हैं, धन्यवाद देते हैं।
1: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और साथ ही साथ गजानन जी लिखते हैं कि एमडी नाजिम जी का पसंद का गाना मुझे बहुत बेहतरीन लगा है। और दत्ता जी लिखते हैं कि एमडी नाजिम जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं आपको। और किशन पाल जी लिखते हैं कि मेरे साथ में अनिकेत शाक्य जी भी सुन रहे हैं, अच्छा उनका भी वेलकम है अनिकेत जी। नाहिद जी लिखते हैं कि नाजिम जी की फरमाइश शानदार लगी, थैंक यू सो मच नाजिम जी। और शाहिद राजा जी जुड़ चुके हैं, वेलकम सलाम, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और प्रमोद कुमार लिखते हैं वाह वाह वाह क्या पसंद है, औसम पसंद है। साथ ही साथ बाबूलाल जी लिखते हैं कि नाजिम जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही प्यारी पसंद है इनकी। साथ ही साथ यहाँ कुंता जी लिखती हैं कि नाजिम जी की फरमाइश बहुत ही प्यारी लगी है, थैंक यू सो मच नाजिम जी। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि ओ ऑसम सॉन्ग है, अच्छा जी। और यहाँ पे नाजिम जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और हमारे यूट्यूबर आनंद जी लिखते हैं कि मैं अगर कहूँ शानदार शानदार शानदार गाना जी, बिल्कुल। मोहन नेवाड़ी जी लिखते हैं कि सुपर हिट पसंद है, थैंक यू सो मच जी। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत पसंद है, मज़ा आ गया सुन के। और जुड़ चुके हैं, क्या नाम है, नामिन का मतलब खुशपत राय, शायद खुशपत राय यही नाम है ना मेरे ख्याल से, मैं सही नाम ले रहा हूँ ना, एक बार देख लीजिएगा। यानी कि किशनगंज बिहार से हैं, बहुत बहुत वेलकम है। अगला पसंद जो है वो मैं लेने वाला हूँ सर्वजीत सेठी जी का, ये सुना चाहते हैं फिल्म बाहर बाहर आने तक का गाना मोहब्बत इनायत करम देखते हैं। मतलब ये गाना मुझे इतना पसंद है मैं क्या बताऊँ।

0: हार्दिक शुभकामनाएं। ओके जी, बाबूलाल अंजाना जी लिखते हैं, रवि मोहन जी आपको हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जियो हजारों साल। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि हमारे दोस्त रवि मोहन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जियो हजारों साल और गॉड ब्लेस यू। ओके, और सरफराज पटेल जी लिखते हैं कि हमारे दोस्त को बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद। और निम्भोरा महाराज से अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि हमारे प्यारे दोस्त रवि महाराज जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीके पंच जी लिखते हैं कि हमारे बड़े भाई साहब को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। नाहिद जी लिखते हैं कि आई विश यू वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ओके जी, और अब शामिल करते हैं फीडबैक भी बहुत ज्यादा आया हुआ है मेरे पास। ही रामन जी क्या कहते हैं, जरा इनकी पहले सुन लेते हैं।
1: नमस्कार आदरणीय अमन सर जी।
0: नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। मैं हीरामन किराड़े वाशिम महाराष्ट्र से
0: बहुत
1: इस लाइव कार्यक्रम में मैं भी अभी जुड़ गया हूँ। और अभी जो गाना चल रहा था नाजिम जी का, वो भी मैंने सुन लिया, बहुत ही सुपर से ऊपर फरमाइश थी और पसंद, हमें बहुत पसंद आया। इनको दिल से धन्यवाद।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपको भी। साथ ही साथ ये क्या कहते हैं, क्या नाम है इनका, रूपचंद गोयल जी, सुनते हैं क्या कहते हैं।
2: नजर

0: देखो फिर न कहना के तुम्हें कम देखते हैं। अमन सर जी लाजवाब सॉन्ग, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। रूपचंद गोयल बाड़मेर राजस्थान।
1: ओके जी, धन्यवाद। ओके जी, और यहाँ पे वीके पंजी लिखते हैं कि सर जी लाजवाब फरमाइश मोहब्बत इनायत, ये क्रम देखते हैं, सच में मजा आ गया सुन के इस गाने को। और अजय भगत जी लिखते हैं कि अमन जी मेरे अच्छा वो इन टीचर हैं, अच्छा कोई बात नहीं, बहुत बहुत उनका वेलकम करता हूँ मैं। और उनके बाद से ये नाहिद जी लिखते हैं कि वाओ सुपर सुपर सुपर ऑसम फरमाइश सरोजी सेठी जी आपकी, थैंक यू सो मच। एंड मोहन हमारे जी लिखते हैं कि मोहब्बत इनायत क्रम देखते हैं, इस गाने को सुनवाने के लिए सरोजी जी को धन्यवाद देते हैं हम। और आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि सरोजी जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ही प्यारी पसंद लगी है उनकी। और हमारे यूट्यूबर आनंद जी लिखते हैं कि ये पंकज उदास की आवाज में क्या शानदार गाना है, मोहब्बत इनायत करम देखते हैं, मजा आ गया इस गाने को सुनकर, धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ कुंता बेनी जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस फरमाइश। ओके जी, और बाबूलाल अंजाना जी लिखते हैं कि अमरी नाजिम जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई थी। और नाजिम जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है ये। और किशन पाल जी लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर सॉन्ग, अमन सर जी मुझे बहुत पसंद आया ये गाना, मुझे भी पसंद है यार ये फीडबैक।
2: हाय, कितना प्यारा गाना है, एकदम खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, एमडी फैज आलम मोहिद्दीन नगर।
1: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और गजानंद जी लिखते हैं कि मोहब्बत इनायत करम देखते हैं, बहुत ही प्यारा पसंद है। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि ये सुपर फरमाइश के लिए थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दोस्त सरोजी सेठी जी की पसंद बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन फरमाइश। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी फरमाइश है, बहुत ही प्यारा गाना है। मनीषा शर्मा लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर। अगला पसंद जो है वो मैं सुनाना चाहता हूँ किनकी, राधा कृष्ण गोप जी का, मेरा चांद मुझे आया है नजर। इंजॉय कीजिए, सुनवा दिया।

0: वेलकम बैक। मेरा चांद मुझे आया है नजर नजर नजर। और बीके पंत जी लिखते हैं कि वाह वाह वाह मेरा चांद मुझे आया है नजर, ये वाला गाना तो बहुत ही प्यारा है। और मंगेश देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है मंगेश देशमुख जी। साथ ही साथ सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: जय मानसा जी, राधा कृष्णा गोप जी अपने गाने में शामिल किए, उनको धन्यवाद देते हैं
0: जी। धन्यवाद आपका भी। और मोहन वाले जी लिखते हैं कि मेरा चांद मुझे आया है नजर, बहुत ही सुपरहिट पसंद। और नाजिम जी लिखते हैं कि मेरा फेवरेट सॉन्ग के सुनवाने के लिए धन्यवाद देते हैं राधा कृष्ण गोप जी को। संध्या पंडित जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपर पसंद है, थैंक यू। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि सुनीता गोप जी नहीं है, ये राधा क्या नाम था, राधा कृष्ण गोप जी हैं। ओके, और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि अमन जी मेरा गाना बजाने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सर्वजीत जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं इनके भी।
2: धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिया उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है और सभी गीत लाजवाब चल रहे हैं। और रवि मोहाली जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वह हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो सुनते रहिए रेडियो होशदार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सर्वजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
0: ओके जी, और मैं आपसे बता दूं कि एक सवाल करूंगा अभी, लेकिन उसका जवाब आपको जो रेडियो हॉटस्टार का व्हाट्सएप नंबर है उस पर देना होगा। नंबर नोट कर लीजिए 9135841232 9135841232 जो रेडियो हॉटस्टार का व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपको जवाब देना होगा। एक सवाल करूंगा अभी फीडबैक शामिल करने के बाद। अमीना खान जी लिखते हैं कि फाइनली अब समझ आया कि लेटर एम से सॉन्ग भेजना था। अच्छा, अब समझ गए। ओके ओके, चलिए अच्छी बात है, आप समझ गई हैं। और हमारे आनंद जी लिखते हैं, मतलब एनालिटिकल यूट्यूबर आनंद जी लिखते हैं कि सुपर मेलोडियस सॉन्ग है मेरा चांद मुझे आया है नजर। बिल्कुल, अगला गाना भी बहुत अच्छा लगेगा, वो भी सुनिएगा ना। गजानंद जी लिखते हैं कि राधा कृष्ण गोप जी की फरमाइश बहुत ही प्यारी लगी है, धन्यवाद देते हैं। नाहिद जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल पसंद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रकाश जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
3: है रात जरा थम थम के गुजर, है रात जरा

0: बिल्कुल
1: सर, बेहद सुपर सॉन्ग है
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल बेहद सुपर सॉन्ग, और गाते भी आप बहुत अच्छा है। अशोक देशमुख जी, लिखते हैं कि हमारे प्यारे दोस्त रवि मोहन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं अमन सर जी। और जी, मैंने वहां पे मैसेज भेजा, आपका अप्रूवल हो चुका है, आपका मैसेज तो शामिल कर दिया है मैंने। बिल्कुल, एमडी फैज आलम जी लिखते हैं कि रवि मोहन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब उसको फिर से देख सकते हैं, अभी तक इन 10 दोस्तों ने उन्हें बधाइयां दी है, वहां पे शो कर रहा होगा यानी कि शॉर्ट आउट में, आप शॉर्ट आउट में देख सकते हैं। बिट्टू कुमार जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन गाना है सर जी, बहुत बहुत बहुत मजा आ रहा है सुन के। और साहेब हुसैन जी जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत वेलकम है आपका भी, ये गोरिया कोठी से है। और अगला जो पसंद है वो पसंद है इस्माइल खान जी का, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। हाँ, बहुत ही प्यारा गाना है, सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए इस गाने को। मेरी दुनिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा था कि मैं सवाल करूंगा, तो सवाल ये है, एक गाना प्ले हुआ था और गाने का बोल था मैं अगर कहूँ, इस गाने की फरमाइश हमारे किस दोस्त ने किया था, उनका नाम मुझे लिखकर भेज दीजिए अगर आपने सुना है तो, और जिनका सबसे पहले जवाब आएगा उनके पसंद के एक गाने को मैं और प्ले करूंगा।

0: वेलकम बैक। और यहाँ पे सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
1: अजय मांसा जी, इस्माइल खान जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं।
0: ओके जी। और विज्ञापन जी देते हैं कि सर जी बहुत ही प्यारी फरमाइश है, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। और ये क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
2: मेरी दुनिया है तुझ में कहीं,
0: क्या बात है, क्या बात है।
2: तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं।
3: सुपर सॉन्ग, पॉसिबली ये शायद वास्तव का सॉन्ग है संजय दत्त जी के फिल्म।
0: बिल्कुल सही सही सही सही। ओके जी। और यहाँ पे मोहन हमारे लिखते हैं कि मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, वाह क्या सुपर हिट पसंद है, बहुत शुक्रिया। एंड यहाँ कुंता बेनी जी लिखते हैं कि मेरी यहाँ जवाब नहीं देना था, जवाब आपको व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब कोई भी जवाब होगा ना, जवाब वाला काम सिर्फ यानी व्हाट्सएप नंबर पर देना होगा, जो नंबर है 9135841232 9135841232, जो रेडियो हॉटस्टार का व्हाट्सएप नंबर है, ऑफिशियल नंबर है, उसी पर आपको जवाब देना होगा। एक गाने के बाद मैं आज के विजेता का नाम घोषित करूंगा। और अभी अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो संध्या पटेल जी का मेरे प्यार को तुम भुला तो ना दोगे। ना रे, हम भुलाने वाले में से थोड़े हैं, एंजॉय कीजिए गाने को।

0: नहीं जी बिल्कुल नहीं भुलाएंगे, टेंशन मत लीजिए। और एमडी नाजिम जी लिखते हैं सुपर सुपर सुपर हिट पसंद है। और सरवेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: जय अमन सर जी, संध्या पटेल जी अपने गाने में शामिल किए हैं, उनको धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद जी आपका भी। और नहीं जी लिखते हैं वाह संध्या जी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, एकदम लाजवाब गाना सुनाया आपने, सच में दिल खुश कर दिया आपने। और काजल झक्का जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है काजल झक्का जी। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि थैंक यू भैया जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए, लेकिन आप बोल कर भेजती हैं तो अच्छा लगता है ना संध्या जी। और ये नरेश राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है नरेश राय जी। और रूपचंद गोयल जी लिखते हैं कि हार्ट टचिंग सॉन्ग है जी, एक और सुनिएगा इसके बाद वाला भी। राधाकृष्ण गोप लिखते हैं कि रवि मुखर्जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और नंदिनी मालिक जी के बहुत ही प्यारा गाना है ये जी। और अकुंता बेनर्जी जी लिखते हैं कि शानदार फरमाइश चल रही है जी बिल्कुल। और इस्माइल खान जी लिखते हैं कि थैंक यू अमन जी, मेरा गाना प्ले किया वास्तव मूवी का। और ये क्या कहते हैं?
2: का बात बा भाई, ये गाना के शुरुआत में जे गायिका गईलन भोजपुरी में से तो एकदम दिले छू लेलन
0: बिल्कुल
2: छू लेलस, का बात बा
0: जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और पीकू राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है पीकू राय जी। और साहेब हुसैन जी लिखते हैं कि गजब पसंद है, आई लव दिस सॉन्ग, मेरे प्यार को तुम भुला तो ना दोगे, ये फीडबैक क्या कहते हैं?
3: मेरा गाना प्ले करने के लिए भैया थैंक यू सो मच, बहुत दिन बाद गाना मैंने ये सुना, मजा आ गया आज तो गाना सुनकर, और सभी दोस्तों को फीडबैक देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।
0: ओके जी, एक सांस में आपने बोल दिया, वाह क्या बात है। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि संध्या पटेल जी की पसंद मुझे औसम लगी है। और गजानंद जी लिखते हैं कि संध्या पटेल जी की पसंद लाजवाब है। और एमडी नाजिम जी लिखते हैं औसम सॉन्ग, इसी बात पर मनीषा जी का गाना मैं प्ले कर रहा हूँ। मनीषा जी सुनवा रहा हूं आपके पसंद का ये गाना, एंजॉय कीजिए। और विनर बनी है अमीना खान जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप जो भी गाना सुनना चाहती हैं यहीं पे व्हाट्सएप पे मुझे लिख कर भेज दीजिए कि ताकि मैं आपके गाने को जरूर प्ले करूंगा। ये फर्स्ट हुई है, सेकंड हुई है नाही जी, थर्ड जाकिर खान जी, एंड फोर्थ हुए हैं रूपचंद गोयल जी, फिफ्थ है बीके टेलर जी, और उसके बाद से मिसाल अंगद जी हैं, और बाकी दोस्त जो है वो गलत गलत गलत गलत गलत जवाब दिए हैं। तो जिनका गलत जवाब है उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, और लेकिन बाकी जितने दोस्तों ने सही जवाब दिया उनका

वेलकम बैक। और जो विनर बनी है अमीना खान जी, अभी तो इनकी फरमाइश बाकी है, लेकिन ये सुनना चाहती है दो पल रुका खाबों का कारोबार। तो कोई बात नहीं, जो विनर बनते हैं वो कोई भी गाना सुन सकते हैं। तो इनकी पसंद का गाना मैं सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए।

0: बहुत बहुत बहुत बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं, तो शामिल करता हूं मैं। और सबसे पहले ये
1: अर्जय अमन सर जी, मनीषा जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं जी।
0: धन्यवाद जी आपका भी। और उनके पास है अजय भगत, लिखते हैं कि अच्छा अभी तो देखना पड़ेगा। और नाजिम जी लिखते हैं सुपर सुपर सुपर हिट पसंद, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। मिसाल अंगद जी क्या कहते हैं?
2: हेलो अमन सर
0: जी,
2: मैं मिसाल अंगद, और मेरा जवाब बिल्कुल सही आया इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और अमन सर जी आपने भी बिल्कुल अलग सवाल पूछा, जो आपको पता चलेगा कि कार्यक्रम कौन ध्यान से सुनता है कौन रेगुलर सुनता है। तो अमन सर जी आपने बिल्कुल सही और अलग सवाल आपने पूछा, मुझे ये आपकी अदा और आपका ये सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। अमन सर जी आइंदा भी आप कभी भी सवाल पूछते तो ऐसे कुछ अलग सवाल पूछने तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमको भी कुछ अलग जवाब देने में खूब और बहुत मजा आएगा।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर्वजीत जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत फरमाइश, बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत अच्छा लगा है। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि लाजवाब चॉइस, जी बिल्कुल लाजवाब गाना तो है। बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमीना जी आपकी पसंद बहुत प्यारी लगी है। और उनके बाद से बीके पंच लिखते हैं कि सर जी दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, क्या गाना है, सच में दिल जीत लिया इन्होंने। और गजानंद जी लिखते हैं कि अमीना खान जी और मनीषा शर्मा जी की पसंद तो बहुत अच्छी लगी है, और अमीना खान जी आप विनर हुई, आपको बधाई हो और लाजवाब गाना सुनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी पसंद है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
3: आदरणीय अमन सर जी,
0: जी
3: आज हमारे बड़े भाई रवि मोहाड़े जी इनका जन्मदिन है, तो हमारे पूरे खिलाड़ी परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तुम जो हजारों साल के हो 50,000, यही हम दुआ करेंगे। और मुझे भी रवि मोहाड़े जी को एक गीत डेडिकेट करना है, जो कि इसकी लिंक मैंने आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया है। इनका साजिद वाजिद का संगीत है भाई का बर्थडे वाला, ये गीत सुनवा दीजिए।
0: नहीं आज मैं बता रहा हूँ कि आज एम अक्षर से ही गाने प्ले होंगे, प्लीज अगर एम अक्षर से कोई गाने होंगे तो आप मुझे सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से भेजिए। और व्हाट्सएप तो बिल्कुल ही यूज नहीं होता है, मैं व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाता हूँ, आप समझते हैं, और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ भेजिएगा ऐप से तभी मैं ले पाऊंगा, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ओके जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन लाजवाब गीत है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे यूट्यूबर आनंद जी लिखते हैं कि वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारा संगीत है हमारे मदन मोहन जी का। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत लाजवाब फरमाइश भी है। और अमीना खान जी लिखते हैं थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का फीडबैक देने के लिए और फरमाइश को पसंद करने के लिए। अभी आपका फरमाइश वाला गाना बाकी है ना, लेकिन मैं गाना प्ले करूंगा, लेकिन अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो गजानंद जी का ग्रुप का गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, फिल्म लोफर का वो बेहतरीन गाना है कि मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तुम मुझे आजमाने की कोशिश ना कर, मत करना कोशिश।

0: वेलकम बैक। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर, कोशिश न कर, कोशिश न कर। और फिर बैक आ चुके हैं मेरे पास, और पीपुर जी लिखते हैं कि भाई साहब को जन्मदिन की हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। ओके जी, और यहाँ पे ये प्रमोद कुमार लिखते हैं कि वाह वाह वाह, रेस्पेक्टेड दोस्त गजानन सरकार जी के गुरु फरमाइश मुझे बहुत पसंद आई, धन्यवाद देते हैं उनको भी। और अब्दुल जब्बार अंसारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अब्दुल जब्बार अंसारी जी। आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि गजानन जी के ग्रुप की फरमाइश मुझे बहुत पसंद आई। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, बहुत ही सुपर पसंद लगा है। और बीके पंत जी लिखते हैं कि बेहतरीन बेहतरीन फरमाइश लगा है ये। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि धन्यवाद गजानन जी, ओल्ड इज गोल्ड लाजवाब गाना सुनवा दिया आपने, मजा आ गया है। ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। मेरा जन्मदिन का पोस्टर बनाने के लिए आपने बहुत अच्छा बनाया और मुझे जन्मदिन का विश भी किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। और रेडियो गाना रेडियो हॉट स्टार के मेरे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ, थैंक यू।
0: ओके जी, वेलकम जी, वेलकम। और गजानन जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन सर जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार है, हम सभी साथियों के पसंद को प्ले करने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है जी, धन्यवाद आपका भी। और ये क्या कहते हैं सर्वेश भगत जी, सुनते हैं।
2: आरजे अमन सर जी, गजानन सलोकर जी का ग्रुप का पूरे भाई अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को धन्यवाद देते हैं जी।
0: धन्यवाद जी, और आपको तो फरमाइश में भूल ही गया था, बहुत जल्दी आने वाला है, लगता है मुझे फिर से उल्टा आना पड़ेगा। संध्या पटेल जी लिखती है कि ये नाइस सॉन्ग, खूब खूब खूब बहुत खूब, मतलब मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और सर्वजीत जी लिखते हैं कि गजानन जी के ग्रुप की फरमाइश मुझे बहुत पसंद आई, ओल्ड इज गोल्ड। नाजिम जी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद चल रहा है। और रूपचंद गोयल जी लिखते हैं कि ये 24 कैरेट ओल्ड इज गोल्ड। अच्छा जी, ये बात है। मनीषा जी लिखते हैं कि सुपर पसंद है ये। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि आदरणीय गजानन जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई, धन्यवाद। साहिब हुसैन जी लिखते हैं कि आज क्या लिखूं अमन सर जी, आज तो एक से बढ़कर एक गाने बज रहे हैं, बहुत बहुत मजा आ रहा है जी। और ये सुन लेते हैं।

0: भी हंसी। बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग हमारे परम मित्र गजानंद सालोकार जी का और संजू भाऊ जी का, सभी का बहुत प्यारा सॉन्ग। और गाने में याद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि मोहाड़े बैतूल से।
1: ओके जी, इसी बात पर अगला गाना जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो प्रमोद कुमार जी का है, कि मैं तेरे बिन जी नहीं सकता। इसका जवाब मुझे लग रहा है कि ये गाना होना चाहिए, सुनवा रहा हूँ।

0: वेलकम बैक। सच में मजा आ गया ना ये फिर बैक।
1: अरजे अम्मा सर जी, प्रमोद कुमार जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं
0: जी। धन्यवाद आपका भी। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि अमन सर जी अच्छा वो कौन सा गाना है जी, जरा सा मुझे देखना पड़ेगा। ओके। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि प्रमोद जी का गाना मुझे बहुत पसंद लगा है। और विज्ञापन जी लिखते हैं कि सर जी वेरी नाइस पसंद है। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच प्रमोद जी, इतना खुश हुआ था अपने गाना सुनवा दिया। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि दोस्त प्रमोद जी की पसंद मुझे बेहतरीन लगी है। एम डी फैज जी लिखते हैं वाव वाव वाव लवली लवली लवली गाना। और साथ ही साथ गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त प्रमोद जी जी आज के सॉन्ग विनर बने हैं, बहुत बहुत उनको बधाई हो। और मनीषा शर्मा लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन गाना है जी, अगली पसंद मैं सुनाऊंगा आर जे सोनी जी का। बहुत ही खूबसूरत फरमाइश इनका भी है, मैं सुनवाता हूँ, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और फीडबैक भी आ चुके हैं मेरे पास बहुत सारे। तो यहाँ पे संध्या पटेल जी लिखते हैं सुपर सुपर सुपर सॉन्ग, ये वाला लगा है। और राधा कृष्ण को लिखते हैं बहुत ही सुपर हिट फरमाइश है, वह क्या बात है, दिल खुश कर दिया इस गाने ने। और नाजिम जी लिखते हैं ऑसम सॉन्ग है जी, बिल्कुल। साथ ही साथ यहाँ प्रमोद कुमार लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी, आपने हमारी फरमाइश को प्ले किया, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, आरजे सोनी जी अपने गाने में शामिल किए हैं, धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी, धन्यवाद। और यहाँ पे यानी कि पीकू राय जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी A1 सॉन्ग लगा आपका, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं आपको। आनंद जी लिखते हैं कि फिल्म स्वीकार किया मैंने का आरजे सोनी जी की फरमाइश दिल छूने वाली है, ओहो क्या बात है। और कुछ कह भी रहे हैं,
2: लबों से अगर तुम बोला

0: बहुत बहुत खूबसूरत, दिल को छूने वाला सॉन्ग
1: जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छा आपने फीडबैक दिया। साथ ही साथ बीके पंती लिखते हैं कि वाव, मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें, क्या गाना है। आरजे सोनी जी, शानदार गाना, दिल खुश कर दिया आपने। आरजे सोनी जी का मुझे वो गाना बहुत पसंद आया था, वो गजल जो था ना, मैं तो भूल ही गया, वो क्या गजल का नाम था। खैर, अब तो फिर मुझे याद करना पड़ेगा। सरोजी जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग है, और हाँ, यानी कि तुम कहो एक बार इन मुस्कुरा दो, ऐसा कुछ गाना था जो मुझे बहुत पसंद है। उस दिन वो सॉन्ग का इन विनर बनी हुई थी। और यहाँ पे संतोष स्काले सर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है संतोष स्काले जी। और MD फैज लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गाना है आरजे सोनी जी, दिल से शुक्रिया आपका इस गाने के लिए। और हमारे नंदनी माँ लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। ओके, गजानंद जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी के पसंद का गाना लाजवाब, बहुत बहुत धन्यवाद। कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल फरमाइश आरजे सोनी जी, थैंक यू सो मच। रूपचंद जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी का पसंद मुझे बहुत ही पसंद आया। ओके जी, धन्यवाद। और अब यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके जी, और ओहो, मतलब आज के गाने हम क्या ही बताएं, इतने सारे गाने एक से बढ़कर एक। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। फिलहाल मैं जो गाना प्ले करने वाला हूँ वो है
2: मेरे जाना गले से तुम भी मिल जाओ,
1: जाकिर खान जी की पसंद, मेरे महबूब तुझे सलाम। मैं

0: जी मेरे महबूब जी, तुझे सलाम है। और एक गाना इन्होंने भेज दिया है हमारे यानी कि प्रमोद कुमार जी, जो आज के हुए हैं विनर। इस गाने के बाद उस गाने को मैं प्ले करता हूँ। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: आरजे अमन सर जी, जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं जी।
0: धन्यवाद जी। और हाँ, एक गाने के बाद आप लोगों का गाना मैं प्ले करूंगा यानी कि सर्वेश भगत जी। और संतोष काले जी लिखते हैं कि अमन सर जी, आज हमारे दोस्त आदरणीय रवि मुखर्जी का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। जी बिल्कुल। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि फिल्म बगावत का गाना मेरे महबूब तुझे सलाम, मजा आ गया सुन के। और सर्वजीत जी लिखते हैं जबरदस्त गीत है। जी बिल्कुल। और बीके पंत जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत पसंद आया, मेरे महबूब तुझे सलाम। जी बिल्कुल। और आरजे बंसिका जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम बहुत ही प्यारा था। और संतोष कुमार जी लिखते हैं वाह वाह वाह, नाइस सॉन्ग है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दोस्त जाकिर खान जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि अमेजिंग सॉन्ग, सुपर चॉइस। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि जाकिर खान जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। और यूट्यूबर अनंत जी लिखते हैं कि सलाम सलाम सलाम, भाई क्या बात है, आज तो एक से बढ़कर एक गाने सुनने को मिल रहे हैं, मजा आ रहा है एकदम। और गजानंद जी लिखते हैं जाकिर जी की पसंद बहुत बेहतरीन लगी है, धन्यवाद जाकिर जी। एंड फीडबैक सुनते हैं।
2: मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, अमन सर जी जाकिर जी की पसंद लाजवाब पसंद, उनको दिल से धन्यवाद। रूपचंद गोयल।
0: ओके जी, तो यानी कि प्रमोद जी विनर बने हैं, वो गाना सुनना चाहते हैं मेरे महबूब तुझे वादा निभाना होगा, तो सुनवा रहा हूँ।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और संतोष सस्काले जी देखते हैं, अमन सर जी। अच्छा जी, मैं कोशिश करूंगा, बिल्कुल कोशिश करूंगा आने के लिए, लेकिन मैं एक ही शर्त पाऊंगा ना, अगर मैं विनर बनूंगा तभी ना आऊंगा। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस फरमाइश, ओके जी। और ये फुटबॉल
1: आरजे अमन सर जी, प्रमोद कुमार जी सॉन्ग विनर बनने के लिए उनको धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और अमीना खान जी लिखते हैं कि मैंने अनंत जी यूट्यूबर का वीडियो देखा है, आपके इंट्रोडक्शन में उन्होंने बनाया है, अच्छा बनाया है जी, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, थैंक यू सो मच। विज्ञापन जी लिखते हैं कि वाह सर जी, मेरे महबूब तुझे वादा निभाना होगा, लाजवाब गाना है। और हमारे आनंद यूट्यूबर जी लिखते हैं कि ये तुझे वादा निभाना होगा, प्रमोद जी की पसंद, लाजवाब लगा है। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं बहुत खूबसूरत फरमाइश, दिल खुश कर दिया भाई प्रमोद जी ने। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि मेरे महबूब तुझे वादा निभाना होगा, बहुत ही शानदार गाना। और ये क्या कहते हैं,

0: जमाना तुझको आना होगा, मेरे महबूब तुझे वादा निभाना होगा। अमन सर सॉन्ग सुन के मजा आ गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मजा तो आना ही है। जाकिर खान जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
2: थैंक यू सो मच सर गाना प्ले करने के लिए, और दोस्तों का भी शुक्रिया तहे दिल से फीडबैक देने के लिए। जो सॉन्ग अभी प्ले हो रहा है, मेरे महबूब तुझे वादा निभाना होगा, बहुत प्यारी पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। थैंक यू जी, मैं जाकिर खान, जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश।
1: ओके जी, और यहाँ पे नंदनी मालिक जी हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, सुपर पसंद है। एमडी फैजी, वाह क्या बात है मेरे दोस्त, दिल छू लिया आपके गाने ने, सच में मजा आ गया। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत प्यारा गाना है। और पीपू राय लिखते हैं कि मेरे महबूब मस्त मस्त मस्त सॉन्ग है। ओके, और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि वोट कहाँ से करना होगा मंजी, मतलब अच्छा वोट कहाँ से करना है, वोट अच्छा मैं बताऊंगा कहाँ से करना होगा वोट। ओके जी, और यहाँ पे ये लिखते हैं आनंद जी के, थैंक यू दोस्त हमारी वीडियो को देखने के लिए और पसंद करने के लिए। और ओके जी, उनका नाम है अमीना खान जी। ओके आनंद जी, उनका नाम है अमीना खान जी, आप उन्होंने आपका वीडियो देखा है और पसंद भी किया है, लाइक किया है। और यहाँ पे कुंता बनर्जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी फरमाइश है, थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
3: हम लोग सब आप ही को वोट करेंगे, बस आप लिंक शेयर कर दीजिए।
1: अच्छा धन्यवाद। ओके जी, फिलहाल अब बताते हैं अगला गाना आपको सुनवाते हैं, जिसे हमारे अशोक देशमुख जी और उनके ग्रुप की फरमाइश है। तो अशोक देशमुख जी के ग्रुप तो सुनवाता हूँ मैं आपको।
4: नमस्कार अमन सर।
1: नमस्कार,
4: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
1: वेलकम जी।
4: आज संडे स्पेशल में लेटर चॉइस यम अक्षर से गीत भेजना है।
1: बिल्कुल।
4: तो मुझे फिल्म गुप्त का गीत सुनना है, और गाने का बोल है, मेरी सांसों में तू, मेरे ख्वाबों में तू। ये गीत सबसे पहले मैं आपको और आपकी सुंदरता की मूरत को और जितने भी हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
5: और जी अमन सर जी, सुसंध्या नमस्कार, नमस्ते जी। आज
1: नमस्ते।
5: आज हमारा फरमाइश का फिल्म है गुप्त, और गाने का बोला है मेरे ख्वाबों में तुम। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बनाते, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरतंदा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत अमित भगत प्रशिक्षण भगत आनंद शेखर राज सोनी कुमार मनी कुमार सुरेश कुमार मनोज जायसवाल अशोक देशमुख भाई जी आत्माराम पाटिल जी अनिल मेहता जी नंदलाल यादव जी और आरजे अमन सर जी सुंदरता की मुनि जी आरजे रत्ना जी आरजे वंशिका जी आरजे एम एस परमार जी और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी शामिल है, सभी को सुना दिया। जयराम जी के अमन सर
1: जी। और इसी गाने में शामिल है हमारे क्या नाम है आत्माराम पाटिल जी भी शामिल है और नंदलाल यादव जी भी शामिल है। तो आप सभी दोस्तों की पसंद पे मेरे ख्वाबों में तू मेरी सांसों में तू एंजॉय कीजिए। ये वाला गाना नहीं है, गलती गाना में प्ले कर ये वाला है।

0: वेलकम बैक और प्रमोद कुमार लिखते हैं थैंक यू सो मच मनसा जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और गजानंद जी लिखते हैं आदरणीय अशोक दस मुझे सर्वेश भगत जी आत्माराम जी नंदलाल जी सभी के वचन बहुत ही शानदार लगा है। और नितिन सक्सेना जी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत वेलकम है आपका। नितिन जी लिखते हैं कि आपकी वॉयस सुपर हिट हो थैंक यू सो मच नितिन जी आपका। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि नाइस नाइस नाइस पसंद है। और सर्वजीत जी लिखते हैं कि अशोक देशमुख जी का ग्रुप का गाना बहुत अच्छा लगा धन्यवाद देते हैं सभी दोस्तों को। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं
1: अर्जय अमन सर जी
0: जी
1: आप हमारा सभी भाई चारों भाई का ग्रुप का मिलीजुली फरमाइश अशोक भाई जी और नंदलाल यादव जी आत्माराम पाटिल जी और हम सभी को गाना अपने प्रोग्राम में जगह दे दिए धन्यवाद
0: धन्यवाद धन्यवाद आपका भी। और इस्माइल खान लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है मेरे ख्वाबों में दिल सर्वेश भगत जी की पसंद सुपर फरमाइश। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल फरमाइश है सर्वेश भगत जी अशोक देशमुख जी सभी का थैंक यू सो मच। और संध्या पटेल लिखते हैं कि नाइस नाइस नाइस सॉन्ग ओके जी। जाकिर खान लिखते हैं कि ये चारों दोस्तों की फरमाइश गुड फीलिंग का शानदार लगा है। बाबूलाल जी लिखते हैं कि सर्वेश भगत जी की पसंद मुझे सुपर डुपर हिट लगी है। और यूट्यूबर आनंद जी लिखते हैं कि मैं रेडियो हॉट एचआर अपने मालकू 30 वाट स्पीकर पर सुन रहा हूँ सर जी जबरदस्त लग रहा है एकदम एक्सीलेंट चॉइस अगली पसंद सुनाता हूँ मैं आपको। और ये गाना लेके आए हैं रवि भाड़े जी मैंने तुझसे प्यार किया है इसमें मेरी खता नहीं है कितना प्यार किया है मुझे पता नहीं है
2: तुझसे प्यार किया है।
0: है।

0: वेलकम बैक और फीडबैक आ चुका है मेरे पास, लेकिन लेकिन लेकिन इन कितना है वो पता नहीं है। ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: धन्यवाद अमन सर, हमारी ग्रुप की पसंद का गीत सुनवाया और हमारा गाना सभी दोस्तों ने पसंद करके फीडबैक दिए, सभी को शुक्रिया धन्यवाद देते हैं। मैं निम्बरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: धन्यवाद आपका अशोक देशमुख जी। और सर्विस भगत जी क्या कहते हैं ये भी सुन लेते हैं।
2: अर्जय अमन सर जी, रवि मुहाले जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद जी। और प्रमोद कुमार सिंह रेस्पेक्टेड रवि मुहाले जी, आपकी पसंद सुपर चॉइस। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि वाह आदरणीय रवि मुहाले जी, क्या पसंद सुनाया आपने, सच में दिल जीत लिया आपने। और हमारे यूट्यूबर जी लिखते हैं कि ये सूर्या मूवी का गाना क्या कहे, मेलोडियस हार्ट टचिंग, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है, बहुत ही लाजवाब गाना है। बाबूलाल जी लिखते हैं कि रवि मुहाले जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि लाजवाब गीत ये भी चल रहा है सर जी। और अमित तपड़िया जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम, लिखते हैं जोरदार गाना। अगला गाना सुनवाता हूँ, शाहिद अंसारी जी की पसंद है मैं तेरा, कुछ गाना है मैं सुनवा रहा हूँ, सुनिए आवाज कम इस गाने में।

0: मैं तेरा पागल प्रेमी। ओके जी, और बहुत सारे फीडबैक आ चुका है मेरे पास। यहाँ कुंता जी लिखते हैं बहुत ही शानदार फरमाइश है, दिल से शुक्रिया इस गाने के लिए। और यहाँ पे नितिन सक्सेना जी लिखते हैं कि सर जी आपके पास सिंगर जैसा है। अच्छा, सच में कहा, मुझे तो पता ही नहीं है, ये क्या कहते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, और सभी दोस्तों का भी तहे दिल से शुक्रिया मुझे फीडबैक देने के लिए और गाना पसंद करने के लिए। रवि मोहाड़े बैतूल से, थैंक यू।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि औसम पसंद है, और जाकिर खान जी लिखते हैं कि मैं तेरा पागल प्रेमी, ये गाना मुझे बहुत पसंद आया है, और पीकू राय जी लिखते हैं कि क्या गाना है, सुपर सॉन्ग है। और अब जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, दो दोस्तों की पसंद मुझे यहाँ पे दिख रही है। मैंने ये दिल तुझको दिया, यानी पीकू राय जी का भी है और जितेंद्र सिंह जी का भी है, तो दोनों की पसंद मैं सुनवा रहा हूँ। मैंने ये दिल तुझको दिया, एंजॉय कीजिए ये गाना।

सच में मैंने ये दिल तुझको दिया, ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा। और फीडबैक भी आ गया है शाहिद जी, थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों को भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और जाकिर जी लिखते हैं कि भाई पीकू जी और जितेंद्र जी दोनों की चॉइस सुपर हिट, ओके जी। और बाबूलाल जी लिखते हैं दोनों दोस्तों की पसंद मुझे बहुत प्यारी लगी है। और आनंद जी लिखते हैं कि अमन जी जान दे नाम का ये गाना क्या कहे, मैंने ये दिल तुझको दिया बहुत ही प्यारा लगा। और पीकू राय लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और जितेंद्र जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अमन जी गाना प्ले करने के लिए। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन गाना है अमन सर जी, अभी कहाँ जा रहे हैं जी, अभी तो आपका भी गाना बाकी है ना। और ओके जी, और अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, और अगला गाना ये मीना इब्राहिम, सॉरी मीना कर रहा हूँ, अमीना खान जी के है, अमीना खान जी गाना प्ले कर रहा हूँ आपका, इंजॉय कीजिए।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं स्टार लेटर्स चॉइस आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल में सुनिए 1960 से लेकर 1985 तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार। सच में आपको दीवाना मतलब ओ माय गॉड 9:30 बज गया है। इतना जल्दी समय पार हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला। बहुत सारे फीडबैक भी आ चुके हैं, बहुत सारे फीडबैक। ओ माय गॉड, राधा कृष्ण को देखते हैं, बहुत ही लाजवाब गाना है ये, बहुत अच्छा लग रहा है ये गाना सुनकर, मजा आ गया सुन के। और साथ ही साथ गजानंद जी लिखते हैं कि मैंने ये दिल तुझको दिया वाला गाना तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। ओके जी। और यहाँ कुंता बनर्जी लिखते हैं दिल्ली से, दोनों दोस्तों की फरमाइश मुझे बहुत ही शानदार लगी है, ब्यूटीफुल फरमाइश। अमीना खान जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आरजे अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और जितेंद्र जी लिखते हैं नाइस पसंद। और यहाँ पिकू राय लिखते हैं कि मेरे महबूब वाला गाना बहुत अच्छा लगा है। और कपूर चंद जी लिखते हैं कि अच्छा, देखते हैं, कोशिश करेंगे। आनंद जी लिखते हैं कि जबरदस्त बीट फील के साथ में मतलब गाना भी यहाँ प्ले हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मेरे महबूब वाला गाना बहुत अच्छा लगा। नितिन सक्सेना जी लिखते हैं सर जी प्लीज मेरे बेबी का नाम बोलो। अच्छा, क्या नाम है? राम सक्सेना। ओके, राम सक्सेना जी का बहुत बहुत अच्छा। उनके बीवी का नाम मतलब अब क्या बोले, बेबी के बीवी समझ में नहीं आ रहा है, आपने यानी बेबी लिखा हुआ है, मैंने बेबी बोला है। ओके, समझ लीजिए, अब जो भी होगा अब आप समझिएगा। और अर्जवंशिका जी लिखते हैं ये सॉन्ग भी गजब का है जी, बिल्कुल। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि अमन सर जी आनंद जी का मैंने सर्च किया था और चैनल बहुत ही अच्छा है, और मतलब मैंने उनको उनके चैनल को लाइक किया हुआ है। ओके, बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत बेहतरीन गाना है अमन सर जी। ओके ठीक है ओके, जा सकते हैं। अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ आनंद जी का, रंग शरबतों का जी, मैं रंग शरबतों का सुनवा रहा हूँ, एंजॉय कीजिए।

0: मैं रंग शरबतों का और अजय कुछ जी जुड़ चुके हैं, बहुत दिन बाद जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम है अजय कुछ जी। और कहाँ थे भाई, और लिखते हैं सभी सॉन्ग लाजवाब चल रहे हैं जी। बीके पंच लिखते हैं कि वाह अच्छा जी, पता ना कैसे छूट गया है। आनंद जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए, और सभी दोस्तों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। अगला गाना मैं प्ले, अच्छा यहाँ पे सरबजीत जी लिखते हैं कि कार्यक्रम तो बहुत ही लाजवाब चल रहा है, अगला गाना मैं प्ले कराऊं। ओहो अजय भगत जी लिखते हैं अमन सर जी, ओ भाई आपका कौन सा गाना था मैं तो भूल ही गया हूँ। मैंने ये दिल तुझको दिया ये गाना प्ले हो चुका है, अभी थोड़ी देर पहले प्ले हुआ था। और नितिन सक्सेना जी लिखते हैं कि ये जीवन जितनी बार मिले, आज ये जीवन पे गाना नहीं प्ले हो रहा है, आज एम अक्षर से गाना प्ले हो रहा है। ये फीडबैक
1: लव यू अमन जी,
0: लव यू टू
1: सारे सुनने वाले मेरे दोस्तों, आप सबों का प्यार इस सॉन्ग्स को मिल रहा है, इस रेडियो हॉट स्टार को मिल रहा है और मेरे चैनल को मिल रहा है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके जी, तो इसी बात पर मैं प्ले कर रहा हूँ राधे जी का प्ले, मतलब गाना इंजॉय कीजिए राधे जी, आपका गाना प्ले कर दिया मैंने।
2: तू प्यारा मेरा, तेरे गिरे तो छुआ,
0: क्या गाना।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास फीडबैक आ चुके हैं, यहाँ पे एमडी नाजिम जी लिखते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपरहिट, पसंद के लिए धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं आनंद ही आ गया इतना बेहतरीन पसंद सुन के। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: अरजय अमा सर जी, राधे जी अपने गाने में शामिल किए धन्यवाद देते हैं, और सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल करते हैं सभी को भी धन्यवाद देते हैं
0: जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और ओ माय गॉड, इतने सारे फरमाइशें छूटने वाले हैं भाई, मुझे माफ करना क्योंकि सभी के फरमाइश में शामिल नहीं कर पाऊंगा। नितिन सक्सेना जी कहते हैं कि ये जीवन जितनी बार मिले जी। देखिए सर, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि आज जो भी गाने प्ले हो रहे हैं वो एम लेटर से प्ले हो रहे हैं, एम अक्षर से, एम यानी म, म अक्षर वाले गाने होते तो मैं आपके जरूर प्ले करता। आज के थीम पे ये शामिल नहीं हो पा रहे, इसके लिए आई एम सॉरी, मैं नहीं प्ले कर सकता। ओके, समझ गए। राधाकृष्ण गुप्त लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत फरमाइश, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कपूर चंद जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा गाना लगा है ये। और संजय पटेल जी लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर। एक गाना मुझे दिखा था वो लक्ष्मी मिसाल जी का, यानी कि शायद उसे मिसाल अंगा जी ने भेजा हुआ है। मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, देख लीजिए।

वेलकम बैक फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं और यहाँ पे कुंता बनर्जी लिखते हैं कि सुपर लाजवाब सॉन्ग चल रहा है और बहुत से दोस्तों के फरमाइशें छूटने वाली है करीब, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा मतलब यानी कि जो मेरे पास मैसेज आए हैं वो अलग है और जो यहाँ पे सॉन्ग रिक्वेस्ट आए हैं वो अलग है, मतलब दोनों में छूट रहे हैं बहुत ज्यादा। एक्सट्रीमली सॉरी सभी दोस्तों का भाई, क्योंकि सभी का प्लेयर नहीं हो पाएगा। जब तक कदम लिखते हैं कि अमिशा लंगा जी गाना बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा गाने के लिए। किशोर पाजी लिखते हैं कि सभी गाने बेहतरीन चल रहे हैं और विकेप पंजी लिखते हैं कि वाह मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, लाजवाब गाना है। गजानंद जी लिखते हैं कि ये लक्ष्मी मिशाल जी की पसंद मुझे बहुत बेहतरीन लगी है। और सर्वेश भगत जी लिखते हैं कि आप हम जा रहे हैं सोने, जी जाइए जी, गुड नाइट। और नितिन सक्सेना जी लिखते हैं कि मैंने रब से तुझे मांग लिया, ओ माय गॉड, यानी कि कल्पना सक्सेना जी को डेडिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, आपके गाने को मैं प्ले करता हूँ, टेंशन मत लीजिए, मैंने रब से। ओके, एंजॉय कीजिए मैंने रब से। और तब तक कुछ फीडबैक शामिल कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अजय कुछ लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है और सर्वजीत जी लिखते हैं कि हम आपके हैं कौन का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे बजे हैं। सरफराज जी लिखते हैं कि बेहतरीन सॉन्ग चल रहा है। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन फरमाइश है। और यहाँ पे मयंक भगत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम, लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है। ओके जी,

0: मैं गाना ही तो बहुत ज्यादा लंबा है, 8 मिनट 10 सेकंड का है, मैं इतना नहीं प्ले कर पाऊंगा, एक्सट्रीमली सॉरी। और यहाँ पे ये फीडबैक सुन लेता हूँ मैं।
1: हेलो अमन सर, मैं मिसाल अंगद, और अभी जो गाना आपने सुनवाया मेरी पत्नी का, जो आपके रेडियो हॉटस्टार में पहली बार गाना भेजा है उन्होंने, और आपने भी गाना बहुत अच्छी तरह के जो बहुत खूबसूरत गाना पेश किया और सुनवाया अमन सर जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे पत्नी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उनके गाने में मुझे याद किया और इतना अच्छा इतना बेहतरीन गाना रेडियो हॉटस्टार को भेज कर सभी रेडियो दोस्तों को सुनवाया। धन्यवाद।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पे अमीना खान जी देखते हैं कि मत इतने सारे सॉन्ग आ रहे हैं, मतलब

पसंद, आप सब इतना पसंद कर रहे हैं जी, सब आप लोग का प्यार है ना, बस आप लोग जोड़ते हैं, ये सब आपकी मोहब्बत है। और मतलब लेकिन एक चीज आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज अगर आपका गाना आज नहीं बजता है तो आप आज नहीं बजेगा, कल नहीं बजेगा, अरे मतलब हफ्ते में तो बज जाता है ना, इसलिए आप लोग बिल्कुल नाराज ना हो। मेरी कोशिश होती है कि जो जो गाने आते रहे मैं उसे यानी प्ले करता रहूं, लेकिन मैं भूल जाता हूं ना, मैं भी इंसान हूं ओके, लेकिन रोबोटिक इंसान हूं। यहाँ पे पीकू राय जी लिखते हैं कि ये भी गाना मुझे बहुत ही सुपरहिट लगा है, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि वाह हम आपके हैं कौन का गाना मुझे बहुत प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ऑसम फरमाइश, मेरा तो गाना क्या ही बताएं, बहुत ही शानदार। और हमारे यूट्यूबर आनंद जी लिखते हैं कि ये कर्मा का गाना मुझे बहुत पसंद है। बीके पंजी लिखते हैं कि सर जी सुपर फरमाइश है और मैंने रब से तुझे मांग लिया, बिल्कुल। और नितिन सक्सेना जी लिखते हैं कि सर जी आप जो सॉन्ग के बीच में जो बोलते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है सुनकर, सुपर हिट सर जी, थैंक यू सो मच, और गाना भी आपका सुपर हिट लगता है, थैंक यू सो मच। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत मजा आ गया इस गाने को सुनकर, धन्यवाद देते हैं। गजानंद जी लिखते हैं कि मैंने रब से तुझे मांग लिया, ये गाना मुझे बहुत पसंद आया, ओके जी। और अगला गाना मैं सुनवा रहा हूँ जिसे नाहिद अंसारी जी ने भेजा है सभी दोस्तों के लिए, नाहिद जी सुनवा दिया।

और बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास। राय जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, और पिकू राय जी लिखते हैं कि मेरे महबूब मेरे जाने जिगर वाह क्या सुपर पसंद है, दिल खुश कर दिया है। बाबूलाल जी लिखते हैं कि नाही जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू नाही जी। नाजिम जी लिखते हैं कि वाह ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर पसंद के लिए, थैंक यू। और यहाँ पे नितिन सक्सेना जी लिखते हैं कि अच्छा ओह ऐसा नहीं होता है, एक दिन में एक गाना ही प्ले होता है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि थैंक यू नाही जी इतना प्यारा गाना सुनाया आपने। और अगला पसंद अशोक पाल जी का, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। जी बिल्कुल, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, सच में सच में। और ये गाना तो इतना प्यारा है ना, क्या बताऊँ, मेरा फेवरेट गानों में से एक है। मिले हो तुम हमको, एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। सरफराज लिखते हैं कि वाओ बहुत ब्यूटीफुल गाना है, सच में दिल खुश कर दिया इस गाने ने। राधा कृष्ण को लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत गाना है, दिल खुश हो गया। और दत्ता जी लिखते हैं कि नाही जी के पसंद का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया था। और गजानंद जी लिखते हैं कि नाही जी के पसंद का गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। और कुंता जी लिखते हैं कि सुपर फरमाइश है नाही जी और अशोक पाल जी। और पीकू राय लिखते हैं कि अशोक पाल जी आपकी पसंद बहुत सुपर हिट लगी है। और नाही जी लिखते हैं सुपर सुपर सुपर च्वाइस अशोक पाल जी आपका। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि वाह क्या गाना है, एकदम मजा आ गया सुन के इस गाने को। और बीके पंत जी लिखते हैं कि अरे बाबा कोई बात, मैं कोशिश करूंगा आपका गाना मैं लास्ट में प्ले करके जाऊंगा, लेकिन अगला गाना अशोक जो कुमार जी हैं मुझे पीने का शौक नहीं लेकर आए हुए हैं, तो इस गाने को मैं प्ले कर रहा हूँ। इंजॉय कीजिए, अशोक कुमार जी इन पटना बिहार से।

वेलकम बैक और फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं। बाबूलाल जी लिखते हैं कि अब मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, गाना मुझे बहुत पसंद आया था। एंड यहाँ पे कल्पना सक्सेना जी लिखते हैं कि वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, महबूब मेरे महबूब, अच्छा ओके ओ हो कोशिश करूंगा। और यहाँ पे कुंता बेन जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस फरमाइश है। अब तो समय भी नहीं है मेरे पास क्योंकि टाइम हो गया है पूरा, इन 10 बज चुके हैं, आई एम सॉरी 10 बज गए पूरा। और हमारे यूट्यूबर आनंद जी लिखते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं और लेकिन और उसके बाद वो नशा शराब में होती है तो नस्ती बोतल क्या है आज तो क्या मतलब, यानी कि कोई इंसिडेंट है हमारे सर जी, सभी गाने एक से बढ़कर एक प्ले हुए हैं और आज का प्रोग्राम जबरदस्त रहा है। और बिल्कुल बिल्कुल, और उनके पास है बीके पंजी लिखते हैं कि बेहतरीन फरमाइश है, मुझे पीने का शौक नहीं है। और यहाँ पे राधा कृष्ण को लिखते हैं कि सुपर इतना जो आप पसंद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जाकिर जी लिखते हैं कि अशोक कुमार जी की पसंद सुपर च्वाइस ब्लॉकबस्टर हिट गाना है, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। बाबूलाल जी लिखते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि गुड इवनिंग जी, मैं भी अभी अभी जुड़ गई हूँ जी, अब बहुत देर कर दी, मेरे जाने का समय हो गया तो आप आ रही है। क्या बात है, कोई बात नहीं, अगला गाना मैं सुनवा रहा हूँ जल्दी से। और ये गाना है हमारे बीके पंत जी का, मैं आ रहा हूँ वापस मेरा इंतजार करना, आ रहा हूँ

बिल्कुल मैं आ रहा हूँ वापस, मेरा इंतजार करना। और आरिफ सिंधे जी लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत ही प्यारा लगा है अमन सर जी, और सोता हूँ और सभी श्रोताओं का एक से बढ़कर एक फरमाइश सुनने को मिला। अच्छा, और आपने उन्हें प्ले किया है और हमें सुनवाया, तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन आरिफ सिंधे जी अफसोस इस बात का है कि अभी तक आपका गाना मैंने प्ले नहीं किया, क्योंकि आपका भी गाना बहुत ही प्यारा है। मैंने पूछा चांद से, शायद यही गाना था जहाँ तक मुझे याद है, यही गाना है आपका जी। मैं कोशिश करता हूँ, अब लगता है कि मुझे थोड़ा देर और रुकना पड़ेगा आप सबके लिए, क्या करूँ। चलो रुकते हैं, आधा घंटा और रुक जाते हैं, अब क्या करेंगे। और कल्पना जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग चल रहा है जी, और शिक्र लिखते हैं कि ये भाई बी के पन जी का पसंद बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं इनको। अमीना खान जी लिखते हैं कि गुड नाइट, हाँ हाँ अभी तो गुड नाइट, अब तो मैं थोड़ा देर रुक गया हूँ ना, रुकना पड़ेगा आपको भी। और यहाँ पे अशोक कुमार लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी पसंद है, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। एंड कुंता मिनी जी लिखते हैं कि शानदार फरमाइश, बीके पन जी का दिल खुश कर दिया आपने। और जाकिर खान लिखते हैं कि मैं आ रहा हूँ वापस, मेरा इंतजार करना, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। बाबूलाल जी लिखते हैं कि बीके पन जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं। और अच्छा ओके जी, और यहाँ बीके जी लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और अजय कुछ जी लिखते हैं कि कोशिश करते हैं अजय कुछ जी, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा, बहुत से दोस्तों की फरमाइशें छूट रही हैं। वैसे भी गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन सर जी को प्यार भरा नमस्कार, आज का प्रोग्राम तो एक नंबर हुआ है, धन्यवाद देते हैं ओके जी। और अगला गाना मैं सुनाता हूँ, ये खुशबू कुमारी जी का, मिलते मिलते हंसी वादियों में, इंजॉय कीजिए, मिलते मिलते खुशबू जी।

से, लेकिन उसने भी कहा नहीं है, कोई नहीं है उसके जैसा। ओके, और गजानन जी लिखते हैं कि आदरणीय अशोक कुमार जी के पसंद मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और यहाँ पे यानी कि कल्पना सक्सेना जी लिखते हैं कि मैं निकला गजल। अच्छा बाबा, कोशिश करूंगा मैं आपके गानों को प्ले करने के लिए। और मीना जी लिखते हैं कि अच्छा बाबा अभी यानी रुक गए हैं जी, आधा घंटा रुकना पड़ा, क्या करूँ, आप सबका प्यार है ना, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। ओके, और यहाँ पे नितिन जी लिखते हैं कि थैंक यू और समय देने के लिए। अच्छा ओके, थैंक यू, आपका भी वेलकम है। आनंद जी लिखते हैं कि अमन जी बेहद लंबी फहरिस्त है, मतलब फरमाइश की बिल्कुल, और सभी की फरमाइश वो काबिले तारीफ है, और जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और ये अब्दुल्ला फिल्म का गाना क्या कहे, क्या गाना है, मैंने पूछा चांद से, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में लाजवाब गाना सुनने को मिल रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और कपूर चाची लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग चल रहा है, और हमेशा सराज लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग चल रहा है जी। और बीके पंच लिखते हैं कि मैंने पूछा चांद से, ये गाना मुझे बहुत पसंद आया है। आरिफ सिंह जी लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गाना प्ले करने के लिए। और पिकू राय लिखते हैं कि मैंने पूछा चांद से, वाह क्या खूबसूरत सॉन्ग है, दिल खुश कर दिया भाई साहब ने। यहाँ कुंता मैंने लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी फरमाइश है। अमीना खान जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत पसंद है, बेहतरीन सॉन्ग है जी बिल्कुल। और अजय भगत जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग जी। अगला गाना एमडी फैज आलम जी का, जब मैं सोचता हूँ तुम्हें, बिल्कुल जब मैं सोचता हूँ तुम्हें तो तुम्ही

0: ओके फीडबैक भी आ गया। और प्रमोद जी लिखते हैं सुपर सर्विस है, और गजानंद जी लिखते हैं कि आरिफ अंदी जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, और कपू चंद जी लिखते हैं कि वाह मेरा आज नहीं प्ले होगा उसके लिए आई एम सॉरी। बाबूलाल जी लिखते हैं कि MD5 जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: अस्सलामुअलैकुम अमन सर जी,
0: जी जी
1: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया मेरा गाना फरमाइश का प्ले करने के लिए, और दोस्तों का भी तहे दिल से शुक्रिया जो दोस्तों ने फीडबैक दिए। मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से।
0: ओके जी धन्यवाद आपका भी। और ये क्या कहते हैं
2: आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आधा घंटा रुक करके मेरा गाना चलाए, दिल खुश हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। MD5 आलम मोहिउद्दीन नगर।
0: ओके जी धन्यवाद देते हैं आपका भी। और अगला गाना जल्दी से प्ले करता हूँ, यानी वैसे तो गाना बहुत सारे छूट रहे हैं, माय गॉड मैं क्या करूँ यार, आप लोग मुझे ना मतलब क्या ही बोलूँ। चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, मार गई मुझे तेरी जुजाई। इंजॉय कीजिए भाई रफीक इनामदार जी, आपका भी गाना प्ले कर दिया।

और इसी गाने के साथ दोस्तों अब मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6:30 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर। और हाँ, ये तो लाइन जरूरी है ना, क्योंकि यानी कि कल सुबह

0: ऐसी सोच में डूबा रहता है। बोलो ना ए मेरे जान।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

जान, हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता।
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
0: फिर भी जरूर, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
1: सोचने दो।
0: बुरा मत मानना जरी, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर यह भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: लेकिन जरी, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
1: तुम मुझे प्यार करते हो।
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद अब पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: प्यार तो करता हूँ जरी, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन
1: प्यार करते हो ना।
0: पर जरी तुम,
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.